मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, सक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 3 सेकंड हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपके साथ हूँ, आपके रेडियो मित्र रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय

हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सामूहिक स्वर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें अभी आपने सुना सामूहिक स्वर में देशगान। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़वाते हैं और अब आपको सुनाते हैं अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल व साथियों के स्वरों में कार्यक्रम का ये पहला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल व साथियों के स्वरों में ये श्री गणेश का भजन। तो आइए, जब हमने श्री गणेश कर ही लिया है तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं किशोरी अमोनकर की मधुर आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला भजन मन्ना डे व साथियों की आवाज़ों में।

जय जय राम सिया राम। इस प्यारे से भजन को अभी आपने सुना मन्ना डे और साथियों के स्वरों में। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र के द्वारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में ये प्यारा सा भजन।

0: श्रोताओं, इसी अंतिम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं तो रिजे प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के इस कार्यक्रम में आज सुनिए सद्भावना, इस विषय पर डॉक्टर KL राठौर का आलेख, वाचक स्वर है राजेंद्र कुमार का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: सदाचरण मानव का वो सर्वोत्कृष्ट एवं दुर्लभ गुण है जो उसे सद्मार्ग की राह दिखाता है, जिसका समाज पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। बच्चा भी अपने माता पिता से स्वभाव तथा आचार्य से आचरण ग्रहण करता है। सदाचरण का बीजारोपण बाल्यकाल में ही सुसंस्कारों के रूप में किया जाता है, जिसका प्रतिफल आजीवन मिलता रहता है। जो प्राणी सामान्य परिवार में उत्पन्न हुआ हो, सत्पुरुषों का सानिध्य सुलभ हो, महान विभूतियों के चित्र भी घर में लगे हों, तो इस अनुकरणीय परिवेश का बालक पर अमिट प्रभाव पड़ता है। बालक तो एक कोरे कागज की भांति होता है। बिखरे संस्कारों को आचार्य जब एक कुंभकार की तरह अपनी शिक्षा रूपी चाक पर ढालता है तो बालक में सदाचार का जन्म होता है। सदाचारी मानव जिह्वा से कम, जीवन से अधिक बोलता है। तुलसी, कबीर, मीरा, बुद्ध आदि ने सत्प्रेरणा देकर पतितों को उठाया, पथभ्रष्टों को सतपथ दिखाया। मानव का सर्वाधिक महत्व का गुण है मृदुभाषी होना। कड़वे बोलने वाले का मधु भी कड़वा होता है और मीठा बोलने वाले की कड़वी वस्तु भी मधुर होती है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुं ओर। सद्व्यवहार करने का कोई व्यय नहीं होता, किंतु मिलता बहुत कुछ है। कोयल की मधुर वाणी सबको भरी लगती है और कौवे की कटु वाणी कर्ण कटु लगती है। महान व्यक्ति के संग का रंग अवश्य चढ़ता है। दुराचारी भी दुर्गुण त्याग कर सदाचारी बन जाता है, जैसे प्रह्लाद के सानिध्य में आकर राक्षस भी सुधर गए। दस्यु रत्नाकर भी सदाचारी संतों के सानिध्य से वाल्मीकि कहलाए, जिनकी आज भी पूजा होती है। महात्मा बुद्ध ने भी अंगुलीमाल की वृत्ति बदल दी और वो सदाचारी मानव बन गया। सदाचरण से ही जीवन की वृत्तियों का परिमार्जन होता है। सदाचरण भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है। सदाचरण को पनपाने में खान पान की भी भागीदारी है। अन्न ब्रह्म है। जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा प्रभाव मन पर पड़ेगा। कृष्ण ने दुर्योधन का राजसी भोजन त्याग कर विदुर के घर साग रोटी खाई, जो प्रसाद बन गई। सदाचरण से मन बलिष्ठ बनता है और इच्छा शक्ति का संचार होता है, जिसके बल पर वो घोर परिश्रम द्वारा गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत सदाचार यदि गया मनुष्य का तो सब कुछ लुट जाता है। सदाचरण एक सुगंध है जो पुष्प रूपी मानव में निहित रहती है। पुष्प को छिपाकर रखा जा सकता है, पर सुगंध को नहीं। सदाचरण की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, जिसके बल पर वो वज्र से भी कठोर हृदयों को द्रवित कर कोमल बना देता है। सदाचार व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है। ईर्ष्या द्वेष को त्यागने और सद्व्यवहार की राह दिखाने में सदाचार की महान भूमिका होती है। जो भी संपर्क में आया महान बन गया। गांधी जी के सानिध्य में आकर लोग आज भी समाज को आलोकित कर रहे हैं और उनकी वाणी कोटि कंठों की वाणी बन गई, जो समष्टि के लिए व्यष्टि निछावर कर देने को तैयार हैं। सदाचारी व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। उसकी सत्संगति जीवन की लोहता को स्वर्णता प्रदान करती है। पर पीड़ा से पीड़ित रहकर सदा शुभ चिंतन करता है, वो सच्चे अर्थों में सदाचारी है। सम्राट अशोक ने जब पर पीड़ा को अपनी पीड़ा मानी तो वो पीर बन गया, महान बन गया। विजय ने उसे सम्राट से संत बना दिया। सिद्धार्थ व्यक्तिगत दुखानुभूति से ऊपर उठकर पर दुख से कातर होकर एक दिन भगवान बुद्ध बन गए। आचरण में सुधार का अवसर मिले तभी मानवता के तत्वों को बल मिलेगा और तब हम कुतर्कों और चिंताओं से मुक्त होकर स्वस्थ चिंतन द्वारा मानव जीवन में

0: में एक नया सवेरा ला सकेंगे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सदाचरण पर डॉक्टर के एल राठौर का आलेख। वाचक स्वर था राजेंद्र कुमार का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं तो लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बायोगैस की उपयोगिता और जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह। तो आइए सुनते हैं कृषि चर्चा।
1: किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन यापन कृषि, पशुपालन, फलोत्पादन, मछली पालन और कुटीर उद्योगों पर आधारित है। देश में ऊर्जा आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा अंतर रहता है। सिंचाई और उद्योगों में बिजली की हमेशा कमी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से मिलने वाले गोबर, कृषि अवशेषों का उपयोग यदि बायोगैस उत्पन्न करने में किया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर खाना बनाने का कार्य पशु द्वारा परित्याग किए गए गोबर या जंगलों से लकड़ी चुनकर ही पूरा किया जाता है। लकड़ी काटने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और गोबर से उपले बनाकर प्रयोग करने से खेतों में खाद की मात्रा में कमी आ रही है। साथ ही खाना बनाते समय निकले धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक कण मकानों में कालिक फैलाने के साथ साथ आँखों और फेफड़ों को भी प्रभावित करते हैं। बायोगैस संयंत्र ऐसी जगह बनाएं जहां पर पानी एकत्रित न होता हो, जल निकास का उचित प्रबंध हो, खुली जगह हो जहां पर हर समय धूप आती जाती रहती हो। संयंत्र आकार का चयन उपलब्ध पशुओं के आधार पर करना चाहिए। यदि 50 किलोग्राम गोबर प्राप्त हो रहा है तो 2 घन मीटर का संयंत्र तैयार करना चाहिए और अधिक गोबर प्राप्त हो रहा है तो उसी के आधार पर संयंत्र का आकार बढ़ाना चाहिए। बायोगैस से खाना बनाने के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था भी की जा सकती है। बायोगैस संयंत्र उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद तैयार करता है जिसे तुरंत निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस से तैयार खाद खेतों में प्रयोग करने से खरपतवारों की मात्रा में कमी आती है। जैविक खादों के प्रयोग करने से फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। साथ ही बायोगैस संयंत्र में पाचन के बाद जो खाद बाहर निकलती है उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जिससे अनाज, फल, सब्जियाँ पौष्टिक दृष्टि से अधिक समृद्ध होती हैं। बायो खाद के उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की संतुलित रूप से बढ़ोतरी होती है, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन रहता है। भूमि की जलधारण क्षमता विकसित होती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। अल्प वर्षा और अतिवर्षा की स्थिति में फसलों को लाभ पहुंचता है। बायो खाद के उपयोग से फसलों उत्पादन में 15-20% की वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद बनाने में 3-6 माह लग जाते हैं, जबकि बायो खाद तुरंत तैयार होती है। बायो खाद से फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खाद तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। गोबर की खाद सीधे खेत में खाद के रूप में प्रयोग करने पर दीमक लगने की संभावना रहती है, जबकि बायो खाद के प्रयोग से दीमक जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। फसलें स्वस्थ रहती हैं, अधिकतर कीटनाशक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बायोगैस संयंत्र में मलमूत्र खाद पदार्थ डालते रहने से घर के आसपास साफ सफाई वातावरण भी स्वच्छ रहता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां भी नहीं फैल पाती हैं। बायोगैस संयंत्र स्थापित करें, जिससे वनों पर बढ़ता हुआ अनावश्यक दबाव घटेगा। भूमि क्षरण जैसी समस्याओं को रोक सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति संतुलित रहेगी। उर्वरकों द्वारा होने वाले भूमि और जल प्रदूषण कम करने और स्वच्छ वातावरण के लिए बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बायोगैस बनवाएं और उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण में बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ फसलों से उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना बायोगैस की उपयोगिता और जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: ए भाई,
3: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
2: ए भाई।

0: याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।

0: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में जिस गतिविधि की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो अब रोजमर्रा की वास्तविक बन गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। कनाडा ने अमेरिका के 600 से ज्यादा वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात भी शामिल है। अमेरिका के लगभग 700 उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और क्वाइन ऑपरेटेड आर्किड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल हैं। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉ. मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सामालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एरिना सामालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशलिनसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में

सुबह के 7:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कहानी वो सांवली लड़की डॉक्टर नीरजा वर्मा के द्वारा। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे। 7:30 पर व्हाट्सएप फरमाइश के अंतर्गत 10:05 पर दोपहर 2 बजे और 2:30 पर सुगम संगीत का आप कार्यक्रम सुन सकेंगे 8:30 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वैशाली मोघे के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे 9:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर संगीता शंकर द्वारा वायलिन पर राग मियाँ की तोड़ी। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे 10:00, जो कि हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप तक हम लेकर आएंगे। फोन करें गीत सुने यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 11:00। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आर चर्चा के विषय होंगे सुचारू जीवन के लिए टाइम मैनेजमेंट और ब्रांडेड के भ्रम जाल से बचें। इसी के साथ इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मसालों में स्वाद ही नहीं सेहत भी। इस कार्यक्रम में चर्चाओं के अंतर्गत आप सुनेंगे एक वार्ता भी डॉक्टर अनुभा पांडे के द्वारा भारतेंद्र के निबंधों में भारतीय चिंतन। लोक संगीत का कार्यक्रम आज आप सुनेंगे 1:30 पर बलराम सिंह दांगी के द्वारा। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 1:45 पर, जिसे आप सुन सकेंगे स्वाति पारासर के द्वारा। यह तीनों ही कार्यक्रम हमारे ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे और आप तक हम इन्हें लेकर आएंगे मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा। तो श्रोताओं, यदि जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में, तो आइए अब जानकारी ले लेते हैं हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, शाम 5:02 पर होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चर्चा के विषय होंगे डिग्री बनाम हुनर और माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका। ये दोनों ही चर्चाएं आप सुन सकेंगे हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम के अंतर्गत। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर, रात्रि 9:15 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे शाम 6:00। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम चौपाल सुन सकेंगे 7:20 पर, जिसके अंतर्गत चर्चा के विषय होंगे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, अपने घर के आसपास स्वच्छता रखें। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में फोन आउट कार्यक्रम भी आप सुन सकेंगे। कृषक प्रेरणा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामायिक सलाह। 9:30 पर होगा चर्चा का विषय, 10:00 आप सुन सकेंगे नाटक और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारी हमारे द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा और द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की, यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे में प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है इसकी थीम। और प्रदेश में मानसून ने फिर लिया ब्रेक, मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकेनाइजेशन और क्वांटम जैसी तकनीकें नई संभावनाएं लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और फिनटेक क्षेत्र में मजबूत नियामक, नवाचार तथा उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए और भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: दुबई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कल तीसरे दिन के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। AIM इन्वेस्टमेंट अवार्ड्स 2026 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को विनर एशिया सम्मान भी मिला। मुख्यमंत्री ने विभिन्न निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ 1-to-1 बैठकें की। इनमें ग्रीन एनर्जी, AI, डेटा सेंटर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश इंटरेक्टिव सेशन में निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अगले महीने से शारजाह के लिए मध्य प्रदेश से सीधी उड़ान शुरू होगी।
2: भारत की सबसे अच्छी राज्य स्तर की एविएशन पॉलिसी हमारे राज्य मध्य प्रदेश की। मुझे नहीं मालूम कि कोई और राज्य से सीधी फ्लाइट यहाँ आ रही है और 15 लाख रुपए प्रति फ्लाइट वो VGF दे रहा है। वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य से जुड़ने के लिए आपको दिल्ली, बम्बई और कई जगह से उतर करके आने की जरूरत नहीं। सीधे अबू धाबी से तो यात्रा प्रारंभ करते हुए हमारे सीधे राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आप उतरोगे और अगले ही महीने शारजाह के लिए भी हम सीधी फ्लाइट चालू कर रहे हैं।
0: विश्व ईवी दिवस के अवसर पर आज भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली निकाली जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मैनिट भोपाल के तकनीकी सहयोग से आयोजित ये रैली सुबह 8 बजे गोविंदपुरा दशहरा मैदान से रवाना होगी। रैली चेतक ब्रिज, MP नगर, लिंक रोड नंबर 1, TT नगर तिराहा और माता मंदिर होते हुए मैनिट परिसर में संपन्न होगी। इसमें E2-व्हीलर, E-रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार और E-बसें शामिल होंगी। धार जिले में आज़ादी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन सेवा शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के वडोदरा से टांडा रोड और प्रतापनगर वडोदरा के बीच नई 12 कोच वाली मेमू ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। टांडा रोड स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर मौजूद रहीं। जोबट टांडा रोड के बीच करीब 28 किलोमीटर लंबे नए रेलखंड का भी शुभारंभ हुआ। करीब 18 साल 7 महीने बाद इस परियोजना के एक हिस्से पर यात्री रेल सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई रेल कनेक्टिविटी से आवागमन, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या

0: अमेजॉन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में नौवां राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो रहा है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष इसकी थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया आज इंदौर से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगी। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों, पर्याप्त प्रोटीन, आहार विविधता और बच्चों के पोषण पर विशेष जोर दिया जाएगा। पंचायतों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों में पोषण मेले और रेसिपी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 11 सितंबर से 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन और लंबाई और ऊंचाई मापी जाएगी। कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। सरला साहित्य संसद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को कटक में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार में देवी सरस्वती की चांदी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि मनुष्य जीवन में भले ही कितनी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन उसकी जन्मभूमि की मिट्टी उसकी स्मृति, पहचान और सांस्कृतिक विरासत को आकार देती है। राज्य बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ी माही लामा का चयन प्री एशियन गेम्स ट्रेनिंग कैंप के लिए हुआ है। वे 60 किलोग्राम भार वर्ग में जापान के निशियो सिटी में 9 से 17 सितंबर तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने माही लामा के चयन पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर के लिए माही का चयन मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। शिविर में माही को अपनी तकनीकी फिटनेस और प्रदर्शन निखारने का अवसर मिलेगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर ब्रेक लिया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक प्रदेश में कहीं भी भारी या अति भारी बारिश का अनुमान नहीं है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर 12 सितंबर से प्रदेश में दिखाई दे सकता है। इस बीच प्रदेश में अब तक 31.2 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से करीब 6% कम है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई बारिश से स्थिति में सुधार हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन लगातार जारी है। झाबुआ के जिला चिकित्सालय में कल आयोजित किए गए बाल हृदय शिविर में 18 बच्चे सर्जरी के लिए चिन्हित किए गए। खंडवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद पद के लिए उपनिर्वाचन को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आगरमालवा में कल आयोजित कार्यशाला में सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने सेवा संकल्प अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सेवा कार्यों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। अशोकनगर जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नर्मदापुरम जिले में यातायात नियमों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कल मोबाइल कोर्ट लगाए गए। सतना जिले में 17 से 19 सितंबर तक विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के 3 दिवसीय आनंदम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल शोध संस्थान में किया जाएगा। पन्ना में ऑनलाइन वर्क का झांसा देकर लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने राजस्थान के दौसा से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिंडौरी में युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के 6वें दिन यातायात प्रभारी सुभाष उइके ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी। सागर जिले में अवैध एवं अमानक जहरीली शराब की बिक्री व सेवन पर पूर्णतः अंकुश लगाने कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व एवं ग्रामीण विकास अमले को क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। गुना में जहरीली शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 56,000 रुपये की अवैध शराब जब्त की है। बालाघाट में IIT कानपुर की पहल साथी और HCL मलाजखंड के संयुक्त तत्वावधान में DAV स्कूल मलाजखंड में एक दिवसीय करियर काउंसिलिंग एवं जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। अलीराजपुर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कल से चौमासे के जनजाति एवं लोक अनुष्ठान, सांस्कृतिक स्मृति और अभिप्राय विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का शुभारंभ हुआ। और ग्वालियर के शिवाजी पार्क के समीप सिटी सेंटर क्षेत्र में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक कला संकुल भवन में गीता भवन की स्थापना होने जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की, UPI इसका सबसे बड़ा उदाहरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे में प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह। इसकी थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। और प्रदेश में मानसून ने फिर ब्रेक लिया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना नहीं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी वो सांवली सी लड़की। कहानीकार है डॉक्टर नीरजा वर्मा। तो आइए सुनते हैं इनके द्वारा ये कहानी।
1: रोज़ शाम को अपने कमरे की बालकनी में बैठे हुए आते जाते लोगों को देखना मेरा प्रिय शगल था। बुजुर्ग सजी धजी महिलाएं, हंसते खेलते हुए बच्चे, सभी तो गुजरते थे घर के सामने से। इन्हीं सब के बीच एक सांवली लड़की भी थी जिसे मैं रोज़ देखती थी। उम्र होगी यही कोई 20-22 साल। उसकी सादगी में ऐसा आकर्षण था कि जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक नज़रें उसका पीछा करती थीं। एक दिन उसने नज़रें ऊपर उठाई और मुझे अपनी ओर देखते हुए पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। उस दिन के बाद से कई बार हम लोगों की नज़रें आपस में टकराती और इस प्रकार हम लोगों के बीच एक मौन रिश्ता बन गया था। किसी दिन उसे रास्ते से जाते हुए नहीं देखती तो दिन खाली खाली लगता। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मैं कुछ नहीं जानती थी, पर रोज़ उसका इंतज़ार ज़रूर रहता था। कई दिनों से अब उसके साथ उसी की उम्र का एक नौजवान भी कभी कभी उसके साथ दिखने लगा था, शायद उसका दोस्त था। उन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा लगता था। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जाते दिखते थे। उन दोनों को देखकर मुझे अतीत की यादें सताने लगती थीं। मुझे भी अपने वे दिन याद आ जाते थे जब मैं अजय के साथ होती थी। आज याद आ रहा था वो दिन जब मैं अजय के साथ एक प्रदर्शनी देखकर वापस आ रही थी और रास्ते में एक बारात देखकर अजय बोल पड़ा था, भाई हम तो शादी करेंगे तो बड़ी सादगी से, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ अपने कुछ लोग और तुम्हारे जैसी कोई लड़की जो अपनी सादगी से सबका मन मोह ले। उस समय अजय की आंखों में अपने लिए चाहत देखकर मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि जिंदगी का सफ़र साथ तय करना चाहते थे, पर हम दोनों ही इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अपने घर वालों को समझा पाते या उनके विरोध की परवाह ना करते हुए कोई कदम उठा पाते। और फिर वही हुआ जैसा कि आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। मेरी शादी तय कर दी गई और फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि पीछे मुड़कर देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज भी एक कसक है मन में अपना मनचाहा जीवन साथी ना पाने की। कुछ दिनों से लड़की फिर अकेली दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा हो रही थी कि क्या हुआ, उसका साथी दोस्त वो लड़का कहाँ गया, अब वो इसके साथ क्यों नहीं दिखता। कई सारे सवाल दिमाग में घूमने लगे थे, पर पूछूं तो कैसे, आज तक तो उससे कभी बात की नहीं थी। फिर सोचती मुझे क्या करना, क्यों मैं उसके विषय में इतना सोचती हूँ, क्यों उसके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मन था कि मानता ही नहीं था, शायद उसमें मैं अपना अतीत देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, जब वो शाम को दिखाई दी तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो वो लड़की कुछ हिचकिचाई, फिर मेरी बालकनी के नीचे आकर खड़ी हो गई। मैंने बालकनी से ही उससे जीने की ओर इशारा करते हुए ऊपर आने को कहा। जैसे ही वो ऊपर आई मैंने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटी, अगर ऐतराज़ ना हो तो कुछ देर मेरे पास बैठोगी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मेरा स्नेह देखकर वो सकुचाते हुए बैठ गई। शायद उसे लग रहा था आ तो गई हूँ पर अनजान घर में अनजान महिला से क्या बात करूँ। मैंने उसकी स्थिति को समझते हुए उससे प्रश्न किया, बेटी कहाँ रहती हो, रोज़ तुम्हें जाते हुए देखती हूँ, कई बार सोचा कि तुम्हें बुलाकर बात करूँ, फिर लगा पता नहीं तुम क्या सोचो, पर आज रहा नहीं गया इसीलिए तुम्हें बुला ही लिया। आंटी मेरा नाम आरती है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रहती हूँ, मेरे ऑफिस से वापस लौटने का समय होता है, यह मैं भी रोज़ आपको देखती हूँ, कई बार जब आप बालकनी में नहीं होती तो सोचती थी कि काम में व्यस्त होंगी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आरती ये कहते हुए थोड़ी सहज हो गई थी और थोड़ी देर बाद तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बातों में ही पता लगा था कि वो नौजवान उसके ऑफिस में ही काम करता है और चूंकि उसके घर के ही पास रहता है इसलिए वे लोग कभी कभी साथ ही ऑफिस से घर लौटते हैं। धीरे धीरे आरती मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। अब वो कई बार मेरे पास आ जाती थी, अगर किसी कारण से नहीं आ पाती तो रास्ते से ही हाथ हिलाकर हमारे बीच मुस्कुराहटों का आदान प्रदान ज़रूर हो जाया करता था। हम लोगों के बीच का रिश्ता कब इतना गहरा हो गया पता ही नहीं चला। आरती अब तक मुझे बता चुकी थी कि वो नौजवान यानी आकाश और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, और फिर वही लोगों की कानाफूसी, माता पिता की हिदायतें और अब उनके साथ साथ आने पर पाबंदी लग चुकी थी। उस दिन तो ये सब बताते बताते आरती रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया, देखो तुम एक कामकाजी लड़की हो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। अमूमन हर मध्यम वर्गीय घर में यही होता है, पर अगर इस समय तुमने सही फैसला नहीं लिया तो ज़िंदगी भर इस बात पर पछताओगी। मैंने भी सोच लिया था कि जो गलती मैंने और अजय ने की थी इन दोनों को नहीं करने दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी इन्हें एक करने की। कुछ दिनों से आरती दिखाई नहीं दी थी, मुझे चिंता हो रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर खीज भी आ रही थी। मैंने उससे उसका फ़ोन नंबर तो लिया ही नहीं था और ना ही अपना नंबर उसको दिया था, कैसे पता चलेगा क्या हुआ है, कहीं बीमार तो नहीं है या कहीं बाहर चली गई है। इसी सब में आज करीब एक महीना हो चला था। अचानक एक दिन मैंने आकाश को अकेले जाते हुए देखा। इच्छा हुई कि उसे बुलाकर आरती के बारे में पूछूं, पर यह सोचकर रह गई कि पता नहीं क्या सोचेगा। इसके बाद भी कई दिन तक आरती दिखाई नहीं दी। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। एक दिन फिर मैंने आकाश को देखा। उसको देखते ही मैंने अपने किराएदार के छोटे से बेटे को, जो मेरे पास ही खेल रहा था, आकाश को दिखाकर कहा, जा बेटा उस लड़के को बुला कर ला, कहना मेरी आंटी बुला रही है। थोड़ी देर में आकाश मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा, बैठो बेटा। उसकी प्रश्नवाचक निगाहें मुझसे कई सवाल पूछ रही थीं। मैंने उसे ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए कहना शुरू किया, बेटा आकाश तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। दरअसल तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं आरती के ज़रिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत दिनों से आरती दिखाई नहीं दे रही है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। क्या वो बीमार है? पहले तुम दोनों को साथ साथ आते देखती थी, क्या बात है? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? इतने सारे सवाल सुनकर और अपने नाम से किए गए संबोधन से आकाश हैरान था। आंटी आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं और आरती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, बेटा आरती और मेरा जो रिश्ता है वो शायद तुम नहीं समझोगे, पर बहुत दिनों से आरती को ना देखकर मैं चिंतित हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में है, और तुम तो उसके दोस्त हो, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमसे बात करना उचित समझा। आरती यहीं से आती जाती है, करीब करीब रोज़ ही मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी, इसलिए हम लोगों ने कभी अपने फ़ोन नंबर आदान प्रदान करने की ज़रूरत नहीं समझी, इसीलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। आज तुम देखे तो लगा तुम तो सब कुछ जानते ही होगे। मेरी बातें सुनकर आकाश के चेहरे के भावों से लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, और मेरी बातों से उसे मेरे और आरती के संबंध का अंदाज़ा भी हो रहा था। धीरे से बोला, आंटी आरती से तो मैं भी बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। अब मैंने संजीदगी से आकाश से कहा, बेटा ज़िंदगी में कई बार फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि उसका परिणाम हमें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है, और समय पर सही फैसला ना लेने की गलती का एहसास हमें सारी ज़िंदगी सालता रहता है। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या परेशानी है, पर अपने तजुर्बे से बस इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर वाकई तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और रिश्ते में गंभीर हो, तो थोड़ी हिम्मत तो करनी ही होगी, वरना सारी ज़िंदगी इस दर्द, इस कसक को सहने को तैयार रहो। आकाश आश्चर्यचकित नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि मुझे सब कुछ मालूम है। बोला, आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत असमंजस में था कि क्या करूं। सच बात तो यह है कि आरती के घर वाले उसका संबंध कहीं और करना चाहते हैं, पर आरती उसका विरोध कर रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है वो, और मैं बस इतना कहकर आकाश चला गया। उसके जाने के अंदाज से लग रहा था कि वो निर्णय ले चुका है। कुछ दिनों बाद मैंने आरती और आकाश को साथ देखा। वे दोनों मेरी ओर ही आ रहे थे। पास आकर दोनों ने मेरे पैर छुए। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों एक हो चुके हैं। उनकी कृतज्ञता भरी नज़रें बहुत कुछ कह रही थीं। शब्दों की

0: ज़रूरत ही कहाँ थी। मेरी आँखें भी छलछला आई थीं। दोनों को इस तरह एक साथ देखकर बेहद सुकून मिल रहा था।
1: श्रोताओं।

ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वो कौन थी इस फिल्म से। गीतकार है राजा मेहंदी अली और संगीत दिया है मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, और अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत। तो आइए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और फिर से हाजिर होते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गीत लेकर।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
0: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अल्प विराम के बाद स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से लिया हुआ ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के इस गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए, कार्यक्रम में आप जोड़ते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया हुआ ये गीत। रचना है भारत व्यास की और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने। तो आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के द्वारा गाए हुए कुछ गीत। लेकिन कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले लेते

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
2: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: अल्प विराम के बाद स्वागत है आपका फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। तो श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से लिया हुआ ये गीत। रचना है अनजान की और संगीत लिया लिखा संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो लीजिए, आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आप आए बहार आई से लिया हुआ ये गीत। रचना है आनंद बख्शी की और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस प्यारे से।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के द्वारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ों में फिल्म आराधना से लिया हुआ ये गीत। रचना है एक बार फिर से आनंद बख्शी की, संगीत वद किया है SD बर्मन ने।
1: अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: श्रोताओं, इसी अंतिम गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा अनप्रसारित किए जाएंगे, तो कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5

0: 5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
5: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
7: इस वर्ष राष्ट्रीय

0: पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा, लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंग गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुन पा रहे हैं वैशाली मोघे के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। तो आइए सुनते हैं इनके द्वारा कार्यक्रम में गाया हुआ ये।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं वैशाली मोघे के द्वारा गाए हुए भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का ये कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं वैशाली मोघे के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। तो आइए कार्यक्रम के अंत में इनके द्वारा सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

श्रोताओं, इसी अंतिम भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:58 होने को है। कुछ ही देर में इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और फिनटेक क्षेत्र में मजबूत नियामक, नवाचार तथा उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को विकसित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल दुबई में तीसरे दिन के दौरे के दौरान विभिन्न निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ वन टू वन बैठकें की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं AIM इन्वेस्टमेंट अवार्ड्स 2026 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को विनर एशिया सम्मान भी मिला है। प्रदेश में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो रहा है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष इसकी थीम हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया आज इंदौर से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज OPD बंद रहेगी, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। विश्व EV दिवस के अवसर पर आज भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली निकाली जा रही है। रैली गोविंदपुरा दशहरा मैदान से शुरू हुई, जो TT नगर तिराहा और माता मंदिर होते हुए मैनेट परिसर में संपन्न होगी। और प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर ब्रेक लिया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक प्रदेश में कहीं भी भारी या अति भारी बारिश का अनुमान नहीं है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और इस प्यारे से आप मौसम का आनंद ले रहे होंगे, जिसमें कुछ सर्दी मौसम, गर्मी और अलग ही एक आनंद जो प्रतीत हो रहा है उसका आप भी उसकी अनुभूति कर रहे होंगे। और बिल्कुल जैसा कि हम हर बार करते हैं, आपका इस कार्यक्रम में इंतज़ार, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी होती हैं आप लोगों से, बहुत सारी जानकारियाँ जो आपको देनी होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से ही तो हम आपसे मिल पाते हैं और दे पाते हैं ढेर सारी जानकारियाँ। और साथ ही इस कार्यक्रम का जैसा ध्येय है कि हम आपको इस कार्यक्रम में करवा पाते हैं आपका मनोरंजन भी, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे इस प्यारे से मौसम के साथ। और अगर हम बात करें तो जितना अच्छा मौसम है

उतना ही अच्छा हमारा मन भी हो, क्योंकि जब भी हम आपसे मिलते हैं तो ढेर सारी बातों के साथ साथ अपने मन की भी बहुत सारी बातें कह जाते हैं, बहुत सारी बातों को आपको बताना चाहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे कि हमारा जो शरीर है जिसको हम स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, जिसकी चमक के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना हमें सामने से खुश रहना चाहिए, वैसा आपको नहीं लगता कि हमें अंदर से भी यानी कि मन से भी खुश रहना चाहिए? इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में और इस दौड़ भाग वाली शुरुआत सुबह से जो होती है, उसमें अक्सर करके हम अपने तन का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है, गुड लुकिंग दिखना है, कपड़ों का चेहरे पे चमक होनी चाहिए, बात करने का एक अंदाज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे मन के अंदर जो चल रहा है, जो हम अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो केवल हमें पता है। हम दूसरों के बारे में नहीं जानते कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन शायद हम ये तो जानते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और कभी आपने एक मिनट रुक कर, कभी आपने कुछ पल ठहर कर ये सोचा है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते हैं? हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ सुविधाओं की तो कोई कमी ही नहीं है हमारे पास। हर जगह हर चीज़ के लिए हमारे पास आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए, बैठने उठने के लिए, मनोरंजन के लिए साधन है, पर हमारा मन कहीं उलझा हुआ है। कभी काम का दबाव है, कभी रिश्तों की खामोशी है, कभी भविष्य की चिंता है, तो कभी बिना किसी अकारण ही हमारा मन जो है भारी हो जाता है। शायद हम में से हर व्यक्ति अपने हिस्से में कोई ना कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है अपने अंदर, जिसे सामने नहीं बता पा रहा है, फेस पे झलकने भी नहीं दे रहा है, लेकिन हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल रखते हैं। फ़र्क इतना है कि कुछ लड़ाइयाँ सामने दिखाई देती हैं और कुछ दिखाई ही नहीं देती, केवल हमें पता होती हैं कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है। कोई कहे कि उसे गुस्सा नहीं आता, कोई आपको देखता है तो सोचता है कि उसे दुख नहीं होता, किसी को लगता है कि उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। भावनाएं तो हमारे भीतर की कुछ घंटियां हैं जो हमें ये संकेत देती रहती हैं कि हम समय समय पर उन चीज़ों को सुनते रहें, समझते रहें। वो हमें संकेत देती हैं कि कहीं कुछ ऐसा है जहाँ हमारा ध्यान जाना ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि जब हम इन घंटियों की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, तो हमें महसूस होना बंद हो जाता है कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है और हम सामने कुछ और दिखा रहे हैं। कई बातों को हम मन में ही रखते हैं, कई बातों को हम ऐसा है जो किसी से नहीं कहना चाहते, और अपने मन को ही समझा लेते हैं हर बार कि तुम ठीक हो, आज ये काम नहीं करेंगे, कल करेंगे, या कल नहीं तो परसों करेंगे, अभी नहीं बाद में देखते हैं। या हम अपने आप को ही समझा लेते हैं, वो अपने आप को समझाना यानी अपने मन को समझाना है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी मन की बातों को जब बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो कई बार हम उन्हें आंसुओं के द्वारा निकालते हैं, कई बार हम उसे गुस्से के द्वारा निकालते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहुत चिड़चिड़ा कर उस बात को निकालते हैं। तो ऐसे में आपको ये संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपका मन भर गया है, ऊब गया है, परेशान है। उसे खुश करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। कभी अपने आप को इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये पूछिए कि क्या आपका मन स्वस्थ है? शरीर से हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे दिख रहे हैं, गुड लुकिंग है, फेस पे स्माइल है, और एकदम ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी अपने मन को एक बार ठहर के पूछा है आपने? तो बिल्कुल, अब हमें करना यही है कि हम जितने ऊपर से खुश होते हैं, दिखते हैं, उतने अंदर से खुश है या नहीं। बी ऑनेस्टली कि आपको अपने मन से सवाल भी पूछना है और उसके आए हुए बिल्कुल सही जवाब को सुनना है। ऐसा नहीं कि मन भी आपको यही समझाने में लग जाए कि वो स्वस्थ है, बल्कि उस जवाब को सुनिए जहाँ पर आपको भी लगे कि हाँ, मेरा मन स्वस्थ है। और जब वो ये कहे

कि नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़े आराम की ज़रूरत है, थोड़े ठहराव की ज़रूरत है, तो उस संकेत को भी आप अच्छे से सुनिए, थोड़ा रुकिए और एक बार फिर से पूछिए उससे कि क्या आपका मन अब ये बात करता है कि मुझे ये नहीं ये लेना है, मुझे ये नहीं ये चाहिए। क्या आपका मन ये बात करता है कि मैं अब कुछ और नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ ठहरना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ न केवल अपने आप से बल्कि सभी से, कि मुझे थोड़े से ठहराव की ज़रूरत है, रुक जाता हूँ कहीं पर, और उस बात को आपको सुनना भी है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन को ही समझा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने मन से भी उतना ही खुश रहूँगा जितना अपने तन से हूँ, तो बिल्कुल आप जो है अपने आप को खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रयास करते रहिए अपने आप को खुश रखने का, अपने मन को स्वस्थ रखने का। हम तो चाहते ही हैं कि इसी तरह से आप खुश भी रहें, हमारी बातों में ऐसे ही खोए रहें, लेकिन अपने मन को खुश रखने का पूरा प्रयास करें, बिल्कुल इस प्यारे से गीत की तरह जो आपके लिए लिखा गया है और बिल्कुल आपके लिए लेकर हम आए हैं इस कार्यक्रम में।

बिल्कुल दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, जिसमें कि हम बात कर रहे थे जितना तन स्वस्थ रहना चाहिए उतना ही मन स्वस्थ रहना चाहिए। तो मन के पंखों को लीजिए उड़ान और भरने दीजिए अपना आसमान, यानी कि देखने दीजिए कि कहाँ तक मन जाता है, कितनी खुशी बटोर कर लाता है आपके लिए। जितना तन सुखी होगा जितना उतना ही मन सुखी होना भी चाहिए, और अपने स्वास्थ्य का जितना आप ख्याल रखते हैं उतने ही अपने मन का भी ख्याल रखिए। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती दोस्तों, ये बात तो आप समझते हैं। और कोई भी बात, कोई भी काम एकदम से नहीं होता। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है, और ये बात सही भी है। अच्छी संगत हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, जबकि गलत संगत हमारी आदतों और सोच को बुरा बनाने पर, यानी कि बुरा असर डालती है। कभी संगत में दोस्त, पड़ोसी, सहपाठी, सहकर्मी हुआ करते थे, लेकिन आज एक सूची में एक नाम और जोड़ लीजिए, जिसका नाम है हमारा मोबाइल और उसके पीछे काम करने वाला एल्गोरिदम। हम एक वीडियो देखते हैं, अगला वीडियो अपने आप सामने आ जाता है। किसी पोस्ट के लिए हम कुछ सेकंड रुकते हैं तो अपने आप उससे जुड़ने वाली या उससे रिलेटेड जो है सामग्री दिखाई देने लगती है। ऐसा ही हम अपने मोबाइल में जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो ना चाहते हुए भी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली उसके आसपास आने लगती हैं। हम अक्सर करके मानते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सामग्री हमारी पसंद का परिणाम होती है, क्योंकि जैसा हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड ही तो सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हर तस्वीर, हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी तो नहीं है। कभी कभार हम गलती से यदि कुछ गलत टाइप कर दें, कुछ गलत सर्च कर लें, तो उससे रिलेटेड भी गलत सारी चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये तस्वीर इतनी सरल नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार हमारे व्यवहार को हम संकेत देते हैं कि हम किस वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात को बहुत अच्छे से रीड करता है कि जो व्यक्ति इस मोबाइल को इस समय यूज कर रहा है या सर्च कर रहा है वह किस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, किस पोस्ट को लाइक करता है, किस पोस्ट को शेयर करता है, क्या क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्या क्या खोज रहा है, किन अकाउंट्स को फॉलो करता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए अपने फैशन में जुड़ा एक वीडियो आपने देखा, उसके बाद आपको कपड़ों, एसेसरी, स्टाइलिंग से जुड़े वीडियो मिलने लगेंगे। आपने उसमें कुछ वीडियोस अधिक देख लिए, अधिक समय दे दिया और एकाध को लाइक भी कर दिया, तो फिर वह एल्गोरिथम के हिसाब से आपके पास जितने भी

नए संकेत आएंगे वो उसी से ही जुड़े होंगे। आपको फैशन स्टाइलिंग में रुचि है, आपको वैसी ही सामग्रियाँ अधिक से अधिक दिखाई देने लगेंगी। अगर कोई व्यक्ति रोज घंटों ऐसी सामग्री देखता है तो उसमें हर चीज़ को नकारात्मक, सनसनीखेज और विवादित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कई बार आपके हक में भी चीज़ें होती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल का एल्गोरिथम या मोबाइल हम गलत तरीके से ही यूज़ करते हैं, बल्कि कई बार उसे रोचक बनाने के लिए, उसे सनसनीखेज बनाने के लिए, उसे जो है ऐसे प्रेजेंट करने के लिए भी कई नई नई चीज़ों का प्रयोग जो है एल्गोरिथम करता रहता है। इसका दुनिया में देखने का नज़रिया जो है प्रभावित ना हो, इसके लिए जुड़ी हुई सामग्री, हमारा डिजिटल वातावरण अधिक उपयोगी बन सकता है। एल्गोरिथम कई बार हमें वही विचार, वही सामग्री दिखाता है जो हमारे मौजूदा पसंद के मेल में या सर्च की हुई चीज़ों पर होती है। धीरे धीरे हमें लगता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग हमारी तरह ही सोचते हैं, क्योंकि हम अपने उस जाल में फंस गए होते हैं। हम लगातार उसी को देख रहे होते तो हमारी सोच भी और चीज़ों पर या अलग चीज़ों पर नहीं जाती है। मनोविज्ञान में इसे इको चैम्बर कहा जाता है। चुनौती यह है कि डिजिटल दुनिया में हमें बहुत कुछ दिखाई दे सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वह पूरी तस्वीर सच हो। इसलिए किसी वीडियो, पोस्ट या व्यक्ति के विचार को सुनने से पहले या उसे सुनने के बाद हमारे मन में जो विचार आते हैं उसके हिसाब से हमें एक बार अपने मन से ये सोचना पड़ेगा कि क्या वह विचार हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी एज के हिसाब से सही है। हमने जो तस्वीर देखी या हमने जो सर्च किया, क्या वह हमें अभी की ज़रूरत है? क्या हम उसके लायक, उसकी आवश्यकता को समझते हैं? अगर यदि हाँ तो हम ऐसी चीज़ों पर सर्च कर सकते हैं, और यदि नहीं तो अपनी भी एक सीमा रखें, अपने सर्च की भी एक सीमा रखें, अपने आप को उस डिजिटल जाल में, जिसे हम कहेंगे इको चैम्बर में, ना फंसने दें। डिजिटल संगत अपने आप में एक ना अच्छी है ना खराब, हम दोनों ही बातें कहेंगे, क्योंकि हमें कई बार उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आजकल नए जीवन में हम देखें तो इसकी सच में हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए ना तो हम इसे अच्छा कह सकते हैं ना ही खराब। उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, केवल मनोरंजन के लिए या फिर कुछ काम के लिए, शिक्षा के लिए, समाचार के लिए, कला के लिए, किताब के लिए, विज्ञान, करियर, सकारात्मक विषयों पर भी अपनी फीड में जगह दें। सोशल मीडिया में सीखने के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम कितना पॉजिटिव ले पा रहे हैं उस बात को, वह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जिस सामग्री से आप सहमत हैं उसे बार बार देख सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, उस पर आप अपने कमेंट दे सकते हैं, जैसा कि आप करते भी होंगे, लेकिन क्या आपको उस एल्गोरिथम पर रुचि है? इस तरह का संकेत आप एल्गोरिथम मीडिया पर ना दें, क्योंकि हो सकता है कि वह उस समय आपने ज़रूरत के हिसाब से देख ली हो या फिर सर्च की हो, लेकिन आगे इस तरह का कुछ भी आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जब हम सर्च करते हैं तो वह उसे कंटिन्यू करने के लिए या बीच में ये पूछता है कि आपको इस पर कितनी रुचि आई, तो वहाँ पर आप अपना नेगेटिव थॉट भी रख सकते हैं। आप मना कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को मुझे और नहीं देखना है, या आप इसे देखकर इतने खुश नहीं हुए। ऐसी सामग्री लगातार दिखाई दे जिसे आप नहीं देखना चाहते हैं तो नॉट इंटरेस्टेड, म्यूट या अनफॉलो जैसे विकल्प भी आपके सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर तस्वीर, वीडियो या जानकारी सच हो यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए खास तौर पर AI के दौर में किसी बड़ी खबर या विवाद को सच्चाई जानने के लिए अलग अलग विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी भी लेना ज़रूरी होता है। समय समय पर अपनी फॉलो किए गए अकाउंट्स की सूची को देखते रहें। क्या आपने गलती से तो किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर लिया है? क्या आपने अपनी प्राइवेसी को किसी और को हैक करने की अनुमति तो नहीं दे दी है? क्या आपने गलतीवश किसी ऐसे अकाउंट को फॉलो तो नहीं कर लिया है जिससे आपको धन की हानि हो सकती है? आपके अकाउंटेंसी से कोई ऐसा अकाउंट टच तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी के साथ साथ आप कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ जाएं, या फिर आपके कोई मैसेज कहीं और डिलीवर्ड हो गए हों? तो ऐसी सभी सुविधाओं और ऐसी असुविधाओं से बचने के लिए हमेशा अलर्ट रहें,
क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल टाइम में

0: हम जितने खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतने हैप्पी हैं, उनकी उपयोगिता को समझते हैं, उतना ही हमें सतर्क रहने की भी ज़रूरत होती है दोस्तों। और बिल्कुल हम चाहते ही हैं कि हम डिजिटल संगत करें, लेकिन पॉजिटिव वे में, गलत वे में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता है तो हमेशा सतर्क रहें। और कार्यक्रम में हम भी आपको ऐसे ही सतर्क करते रहें, उसके लिए हमें एक छोटे से विराम की ज़रूरत है। और इस विराम के बाद फिर से हाजिर होते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: अल्प विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तो श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं तो लेकर आए हैं अपनी बात। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज शुरुआत से ही आपके मन को खुश रखने की, स्वस्थ रखने की और सतर्क रहने की, तो बिल्कुल न केवल हम अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए ही तो जीते हैं। अपने लिए जीना भी जीना है और परिवार को साथ लेकर जीना भी जीना है। लेकिन बदलते घुमरते दौर में अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने आप को कई बार समझाते हैं, अपने आप को सतर्क रख पाते हैं, लेकिन ऐसे में जब आपके बच्चे छोटे हैं, जब आपके भाई बहन छोटे हैं, तो उनकी भी मनोस्थिति कैसी है, वो क्या महसूस करते हैं, उस पर भी पूरा निगाह रखना यानी कि पूरा ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार हमसे छोटे भाई बहन हैं, उन पर भी हम जब देखते हैं तो स्कूल में है, कॉलेज में है या फिर छोटी क्लासेस में है, तो वो कैसा सोचते हैं, क्या स्कूल से आके खुश हैं, बाहर लोगों से मिलकर खुश हैं, स्वस्थ हैं, उनकी मनोस्थिति कैसी है, इस बात पर भी ध्यान रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो अब रखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब वह बाहर होते हैं या घर में होते हैं तो वह अपने आप में कितने खुश हैं या ठीक है, इस बात के लिए भी आप बिल्कुल सतर्क रहिए। जब स्कूल से बच्चा आता है, स्कूल में बच्चों ने उसे बुली तो नहीं किया, परेशान तो नहीं किया, अक्सर बच्चे ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जो उनके लिए असहज होती है। अधिकतर मामलों में सहपाठी ही बच्चों की भावनात्मक रूप से चोट पहुँचाते हैं। रोज़ रोज़ ऐसा बर्ताव करें कि झेलने से बच्चा अपमान और उपहास जैसी चीज़ें महसूस करता है और वह ऐसे चक्र में फंस जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे जो है घर पर कहे या अपनी पीड़ा को कैसे बताए। इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल फील करता है, ऐसा लगता है उसे जैसे उसे किसी ने कि इमोशन से खेल रहा हो, और ना शिक्षक को बता पाता है। घर में बताता भी है तो कई बार हम समझ नहीं पाते, उसकी गंभीरता तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इस चीज़ की अनदेखी करना, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि भावनात्मक चोट हम उसे अपने द्वारा भी दे रहे हैं। बच्चे के जीवन में हर पहलू को प्रभावित करता है उसका भावनात्मक स्टेटस, इसलिए ज़रूरी है एज अ अभिभावक, यानी कि अभिभावक होने के नाते या फिर उसके बड़े भाई बहन होने के नाते, आप उस छोटे बच्चे को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें कि वह स्कूल से आकर खुश है या कोई भावनात्मक परेशानी तो नहीं है। कभी कभी ये जो चीज़ें हैं स्कूल में जो अक्सर करके जाने अनजाने होती हैं, दूसरे बच्चों के व्यवहार के कारण होती हैं, ऐसे में बच्चा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। ऐसा उसे ऐसा लगता है कि मुझे हर बार हर समय बुली किया जाता है। शिकायत को गंभीरता से लें। परेशान करने वाले बच्चे समूह में है या अकेला है, इस बात पर ध्यान रखें। बच्चे से बात करें, बच्चे से उसकी तकलीफ को समझें। माता पिता संवाद कर समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। माता पिता बुली कर रहे अभिभावकों के बच्चों से भी मिल सकते हैं। कई बार पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करने से भी समस्याओं के हल निकल आते हैं। हो सकता है कि वह इंटेंशनली आपको परेशान ना कर रहा हो, बल्कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से जुड़ना चाहता है और दूसरा बच्चा उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं दे रहा हो, इस बात से भी बच्चे दुखी हो जाते हैं।

कई बार बच्चे अपने आप को दिखाने के लिए भी दूसरे बच्चों को बुली करते हैं। बच्चों को ऐसा व्यवहार के बारे में बात करें, समझाएं, और टीचर से भी यह कहें, उनके शिक्षकों से भी यह कहें कि बच्चा इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसे में उसके परिणाम आगे घातक हो सकते हैं, इसलिए कृपया जो जिस वजह से ये परेशान है उस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। और भी बच्चे ही हैं, आपका बच्चा आपके लिए बच्चा है तो और भी बच्चे ही हैं, कभी इंटेंशनली और कभी इंटेंशनली ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, तो उन सभी बच्चों को गेम के थ्रू, मतलब खेल के थ्रू या बातचीत के थ्रू समझाया जा सकता है। ये सवाल नहीं है, ये सजगता बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के कुछ और सवाल भी करना ज़रूरी है, बच्चों से सवाल करना भी ज़रूरी है, बच्चों से मिलना भी ज़रूरी है, पीटीएम में भी जाएं, बच्चों के शिक्षकों से बात करें, बच्चों की मनस्थिति कैसी रहती है, वह अपने काम में कितना ध्यान दे पाता है, वह सभी कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी मनोस्थिति, मन स्कूल में कैसा है। स्कूल में उसकी स्थिति उसके मन के ऊपर डिपेंड करती है। बच्चों को समझाएं कि कौन सा व्यवहार अच्छा है। कभी कभार बच्चा समझ नहीं पाता कि वो परेशान स्वयं ही हो रहा है या किसी के द्वारा करने की वजह से है। अपने मन को समझना भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बच्चे को समझाएं कि उनके कौन सा व्यवहार शब्द या चिढ़ना या मारना एक दूसरे की शारीरिक मानसिक पीड़ा दे सकता है। ऐसे बच्चों को समझाएं कि मनोभाव क्या होता है, घर परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उससे वो बात शेयर करें। कई बच्चे घर के किसी सदस्य को जिद्दी या धौंस जमाने वाला व्यवहार देखकर इस तरह के व्यवहार करने लगते हैं, तो बच्चे को समझाएं कि इस तरह का व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना है, जो हमें स्वयं भी गलत लगता है। बच्चे किसी गुट में जुड़कर या बच्चों को दूसरे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें समझाना बहुत आवश्यक है कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं, नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं। दूसरों की मनोस्थिति को समझने का प्रयत्न करें और स्वयं भी खुश रहें। और ऐसे ही आप खुश रहें, प्यार से बने रहें, ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। एक अभिभावक होने के नाते या एक बड़े भाई बहन होने के नाते हमेशा अपने छोटे का ख्याल रखें, क्योंकि हमेशा हर बात कहीं नहीं जाती, कुछ चीज़ें समझी जाती हैं। हर बार हम हमेशा तैयार नहीं होते बहुत सारी चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें हम अपने आप महसूस करने लगते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने आप समझने लगते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा है या हमने ऐसा कर दिया, लेकिन कई बार दूसरों की के द्वारा भी हमें जो चीज़ें दी जाती हैं, हमें जो समझाया जाता है, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही आप और हम मिलकर इन समस्याओं पर, एक छोटी छोटी चीज़ों पर बातें करते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। और इस कार्यक्रम में हम मिलते ही इसलिए हैं कि हम आपसे ढेर सारी सूचनाओं, समाचारों के साथ कुछ अपनी और आपकी बातें भी सुन सकें, कह सकें। तो ऐसे ही हम इस कार्यक्रम में मिलते रहें, बहुत सारी बातें करते रहें। उसके लिए आज हमें देना होगी आपसे इजाज़त, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने कर दिया है इशारा कि इस कार्यक्रम का समय होने लगा है समाप्त। तो अब सभी श्रोताओं से रश्मि राहुल का नमस्कार, और मिलते हैं इस कार्यक्रम में कल।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आप सुन रहे थे सूचना और समाचार पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। रिजे प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आज आपको सुनवाते हैं डॉक्टर संगीता शंकर के द्वारा वायलन वादन पर राग मियां की तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना डॉक्टर संगीता शंकर के द्वारा वायलिन वादन पर राग मियां की तोड़ी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही देर में जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। नरसिंहपुर जिले में पिछले दिनों हुई जोरदार बारिश ने जहां जिले में बारिश के आंकड़ों में उछाल ला दिया है, वहीं किसानों को भी उत्साहित किया है। हालांकि निचली बस्तियों के लिए ये बारिश आफत लेकर आई है। जिले में नर्मदा का स्तर दो बार बरगी बांध के 13 गेट खुलने के बाद बेहद तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते बरमान घाट के दोनों घाटों को जोड़ने वाला ब्रिज भी दो बार डूब चुका है। हालांकि पिछले साल की तुलना में अभी तक औसत बारिश करीब 33% कम हुई है। जिले में खरीफ की फसलें लगभग 2,95,000 हेक्टेयर में ली जा रही है, जिसमें मुख्यतः धान 70,000 हेक्टेयर, मक्का 64,000 हेक्टेयर, सोयाबीन 75,000 हेक्टेयर और गन्ना 65,000 हेक्टेयर में लगा है। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन और उड़द की फसल में पीला मोजेक वायरस रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इस दौरान कृषि विभाग ने किसानों को कुछ मिश्रित रसायन पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करने की सलाह दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2026 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन का कार्य 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले निवासियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत जिले के नगरी क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, आजीविका उन्नयन एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण के साथ स्वच्छता के स्थायी एवं संस्थागत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले की सभी ग्राम पंचायतों के बीच स्वच्छ ग्राम पंचायत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले की तारीफ की। उन्होंने कैच द रेन अभियान के तहत बारिश के जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए संकल्पित होने की बात करते हुए नरसिंहपुर जिले के अमृत सरोवर तालाब

तालाबों को सहेजने की मुहिम की तारीफ की। नरसिंहपुर में बारिश के जल संग्रहण के इन प्रयासों की बेहद खूबसूरत मुहिम की शानदार तस्वीर सामने आई। जिले में करीब 63 ऐसे अमृत तालाब हैं जिनके माध्यम से बारिश के जल का संरक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा देश भर से चयनित किए गए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नरसिंहपुर की बेटी कुमारी अंजलि साहू का भी चयन किया गया, जिसके तहत जिले की प्रतिभाशाली छात्र अंजलि साहू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन का पर्व मनाकर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह की मौजूदगी में नरसिंहपुर शहर वितरण केंद्र में समस्या निराकरण शिविर पिछले दिनों आयोजित किया गया। वहीं कृषि उपज मंडी परिसर गोटे गांव में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि रानी अवंतीबाई का जीवन केवल शौर्य और बलिदान की गाथा नहीं बल्कि न्याय, जनसेवा, निर्भयता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देता है। बीते दिनों देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस भी जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में जिला मुख्यालय पर स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश वाचन का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं धार्मिक गतिविधियों की अगर बात करें तो सावन माह के पावन अवसर पर पिछले दिनों सावन सोमवार को गाडरवारा में आयोजित भव्य बम भोले कांवड़ यात्रा श्रद्धा, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम बनी। इस आयोजन में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। श्री पटेल ने जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली की सराहना की। और अंत में बात बेटियों की सेहत की। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर में बीते दिनों मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर जागरूकता कार्यक्रम और मिशन वात्सल्य समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत बाल अधिकार एवं पॉक्सो एक्ट विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी, आलेख आशीष जैन का था, वाचन स्पर्धा अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं फिल्म पाप से लिया हुआ ये गीत राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। और साथ ही बताना चाहेंगे कि इस गीत को सुनने की हमें फरमाइश की है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लाव्या आरब खुराना, SP खुराना ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चित्रोला, सुनीता, सिम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद, पोतरा, गुरशब्द इन सभी ने। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खुरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खुरवाल, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने। कुम्हार गली कोल गांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रतिमेश, संतोष, पांडुरंगन कुभार इन सभी ने। बोटीडा रोड मंडी डब वाली से राजेंद्र नारंग, अंजुम नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग इन सभी ने। जाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमल बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने भी इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। तो आइए इन सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म पाप से लिए हुए इस गीत का, जिसे आवाज़ दी है राहत फ़तेह अली खान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अगली फरमाइश, जो हमें लिख भेजी है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता राम सिंह शेखावत। संगीता कंवर, तुषार कंवर, रिंकी शेखावत ने इसी गीत के लिए पसंदीदा करता है हमारे आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा, इन सभी ने। अगले फरमाइश करता है दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, इन सभी ने। धनोरी विटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुलडावा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। गांधी चौक रूपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जतेंद्र मीका और मीका विराग। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े। गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियतम, वामिका, वाणी, इन सभी ने हमें लिख भेजा है टोरावाल नवा शहर पंजाब से। और ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सिर्फ तुम से लिया हुआ ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं इनके पसंद किया हुआ ये गीत फिल्म सिर्फ तुम से।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म वेलकम से लिया हुआ ये गीत, आनंद राज आनंद की आवाज़ में। और इस गीत को फरमाइश की है गांव तरन तारण पंजाब से बोधराज कोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका कोरवाल ने इसी गीत को फरमाइश की है। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह ने, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुंडक, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतना, दीक्षा और कूस मयंक ने, जेल रोड राजगढ़ से लालचंद्र मिश्रा, कुमकुम मिश्रा ने, खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा ने, जालंधर से मीना कौर, संदीप कौर ने, लोनी से मशीमूल इस्लाम गुनेरी, प्रकाश वीर राजपूत, अनुप्रिया चंद्रवंशी, रेडियो

जी दीवाना ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, सकीला अंसारी और रिहान अंसारी ने। कोरिया डोनट पावो से छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरैया से जलंधर, गोरैया जलंधर से अशोक जाटव, नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, पूजा प्रेम दुष्यंत प्रांजल समीक्षा देवी आराध्या साहू ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमिता आहूजा ने। मिस्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, इन सभी ने सेफ वाटर सेफ लाइफ का संदेश देते हुए हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें लिख भेजा है इसी गीत के लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से हेमेंद्र झिम्पा, धर्मेंद्र झिम्पा, कपिल झिम्पा, ईशान झिम्पा, पूजा परिहार, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म वेलकम का ये गीत आनंद राज आनंद व साथियों की आवाज़ों में।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म नमस्ते लंदन से लिया हुआ ये गीत राहत फतेह अली खां और उनके साथियों की आवाज़ों में। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशर से सुरिंदर साहू, अनीता संधु, सोहित संधु, रितेश संधु, शिखा, प्रतिमा, प्रतीक्षा, मैक्स, इन सभी ने। साथ ही इस गीत को लिख भेजा है हमें ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम अंसारी, मेराज जहां, आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड से, राशिद हुसैन अंसारी हुसैन, नसीर हुसैन, नैरीन असाना, मोहम्मद कैफ अंसारी, इन सभी ने जैन मंदिर गली कुरावली से लिखा है हमें इस गीत के लिए। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, सुशेखा मूसा भाईजान, राजकुमार बड़ौना, इन सभी ने। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगपत ने भी लिखा है इस गीत के लिए। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान ने। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर बिट्ठल सुरेश, सुषमा सुरेश, परदी सुरेश, मायरा सुरेश, इन सभी ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रोबिन राणा, इन सभी ने। जगदीश सिंह मठाडू, बिरपाल मठाडू और सुरेंद्र पाल मठाडू ने मोग पंजाब से हमें लिख भेजा है। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है मुक्का पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधारकर राजे, जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, जाधव देशमुख, जगूताई, संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वेद, हर्षिता सनावदी, सावनी प्रणाली,

सभी ने हमें लिख भेजा है इसी गीत के लिए, तो क्यों ना इनके गीत को आप तक भी हम लेकर आएं और इस प्यारे से गीत को जो कि हमने लिया है फिल्म मास्टर नमस्ते लंदन से, तो आइए

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

अल्प विराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं आपका व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली से लिया हुआ ये गीत। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है। कोटा रोड वसीम महाराष्ट्र से विट्ठल सुरेश परिधि मायरा इन सभी ने। साथ ही इसी गीत के लिए हमें अगले फरमाइश करता है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव ने। संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ धर्मवीर दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है नांगचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर जिया उल डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा गरिमा शर्मा ने। इसके अतिरिक्त सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा मायका देवी मायरा देवी राहुल कुमार विनीता कुमार सोनम वर्मा स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह गिल राजदीप सिंह गिल गुरनूर गुरलाल अविराज ग्राम लोहगढ़ ठाकुरपुरा से। साहावर रोड गंज डुंडवारा से उस्मान अंसारी कलीम अंसारी शमसुल कमर राही ने। अगले फरमाइश करता है लातूर से संगीता जैन सूरज जैन पीआर जैन नांदेड़ से प्रकाश जैन ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा और राविन राणा ने। विनोद मढ़ू नेहा जैन दीपक मयंक चेतना दीक्षा कुशरत इन सभी ने। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। यतमल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से विनोद खड़से ने। समस्ती विहार से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए आप सुनवाते हैं फिल्म कमीने से लिया हुआ ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस गीत को लिख भेजा है हमें धनौरी तेली वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया अयान बाबू ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। श्रोतागण शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवान, संगीता, लिपि, दीपाली, इन सभी ने इसी गीत के अगले फरमाइश करता है कलाना तहसील फादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश, युधव, कड़वस वारा से कासबा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, इन सभी ने हमें लिख भेजा है इस गीत के लिए। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली कोयल, इन सभी घर के सदस्यों ने इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है। साथ ही मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अहमद अली, निशा, परवीन, इन सभी ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है। गांव खरिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिरजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगा, पूजा, आरजू, आनंद, नव्या बिजानिया, इन सभी ने इस गीत के लिए हमें लिख भेजा है। साथ ही हमें लिख भेजा है हमारे अगले फरमाइश करता है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कमीने से लिया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीत। तो आइए, कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं फिल्म जब भी मेट का ये गीत। MLB रोड ग्वालियर से पसंद किया गया है इस गीत को। सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लाप्या आरवा को आरव खुराना, ST खुराना, इन सभी परिवार जनों की ओर से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत। श्रोताओं हम माफ़ी चाहेंगे कि घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है। इसी अंतिम गीत के साथ ही हम फिल्म संगीत व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत को यहीं संपन्न करना चाहेंगे। कुछ देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे वाट्सअप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो

घड़ी में सुबह के 10:58 होने को है। कुछ ही देर में सुनेंगे आप इस घंटे की खास खबरें हमारे भोपाल केंद्र के द्वारा। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोताओं, हमारी आपकी मुलाकात का ये खूबसूरत सा वक्त है, जैसे दिन ने अपनी व्यस्तताओं के बीच आपके लिए एक छोटी सी सुरों की खिड़की खोल दी हो, जहां से आती धुनें मन पर वैसे ही उतरती हैं जैसे धूप की पहली किरण आंगन में उतरकर चुपचाप उजाला कर जाती है। कभी कोई गीत बीती हुई याद को छू जाता है, कभी कोई धुन चेहरे पर मुस्कान रख जाती है, और कभी किसी गीत के बोल हमारे मन की वो बात कह देते हैं जिसे हम खुद भी शब्द नहीं दे पाते। तो दोस्तों, फिल्मी गीतों की इस महफिल में पसंद आपकी होती है, गीत आपका होता है और उसे आप तक पहुंचाने की खुशी हमारी होती है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते मैम, मैं ज्ञानवती सोनी बोल रही हूँ, ग्राम बिलकुड़ा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से।
0: ज्ञानवती जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कैसी हैं?
1: जी मैम, बहुत अच्छे हैं।
0: आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप वास्तव में बहुत अच्छी हैं।
1: जी मैम,
0: क्या करती हैं?
1: तो वैसे बताइए, इतना अच्छा बात करती है ना कि ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाती है मैम की आवाज सुनते ही।
0: अच्छा, क्या करती हैं आप?
1: जी मैम, मैं गृहिणी हूँ।
0: अच्छा,
1: घर के कामकाज,
0: घर के कामकाज
1: दिन बीतता है और रेडियो हमारा बहुत साथ देता है।
0: जाहिर सी बात है कि दिन भर अगर लगातार कुछ काम करना होता है और रेडियो साथ हो तो फिर समय के बीतने का पता भी नहीं चलता, काम करने का भी पता नहीं चलता, है ना, थकान नहीं होती। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आज?
1: जी मैम, अनोखा अंदाज में।
0: अनोखा अंदाज, अच्छा,
1: हाँ, फिल्म का नाम है।
0: हाँ,
1: गाने के बोल है महफिल में सितारों की रात।
0: महफिल में सितारों की रात, कुमार सानू का गाया गीत है। तो चलिए, बहुत अच्छी फरमाइश आपकी, आपके साथ हम भी सुनते
1: ऐसे
0: हैं।
1: ऐसे गाने मतलब बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैं सुनी तो मेरे को लगा जब कॉल लगेगा तो मैं यही गाने की फरमाइश करूंगी, अगर अचानक ना पूछा गया तो। क्योंकि अचानक कभी कभी कुछ

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बता दें।
1: परम आदरणीय दीदी, सादर प्यार नमस्कार।
0: वाह, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: तो शारदा जी कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, घर परिवार में भी सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, और आकाशवाणी सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और आप लोगों से वार्तालाप करके बेहद खुशी प्रसन्नता की अनुभूत करता हूँ।
0: क्या बात है, और आपसे बात करके हम भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और एक बात सहज मन में आ रही है कि देखिए, अभी अभी हमने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है और आप मथुरा से हैं। हम चाहते हैं कि कुछ वहाँ के वातावरण का भी जिक्र करें, किस तरह से माहौल रहता है वहाँ।
1: दीदी, आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि भाद्रपद अष्टमी को भगवान कृष्ण के अवतार होता है जन्म अष्टमी, और जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और दूसरे दिन यानी नवमी को गोकुल में और सारे वृंदावन मथुरा में नंद उत्सव की धूम रहती है।
0: क्या बात
1: और
0: है?
1: ये कृष्ण जन्मोत्सव और नंद उत्सव बड़ी ही आस्था श्रद्धा उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है, और ये पूरा महीना जो है आस्था श्रद्धा भक्तिमय वातावरण बना रहता है। शुक्ल षष्ठी को भगवान बलदाऊ जी बलभद्र जी का जन्म

0: जन्मोत्सव मनाते हैं और उसके दो दिन बाद राधा रानी का राधा अष्टमी यानी राधा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो पूरा महीना जो है भाद्रपद का उत्सव उमंग और उत्साह से भरा रहता है। लाखों लाख पर्यटक श्रद्धालु भक्त आते हैं और ये दिव्य झांकी उत्सव उमंग को देख के अद्भुत हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है।
1: क्या बात है, आपकी बातों से बिल्कुल लग रहा है कि हम मथुरा पहुंच गए हैं और वो सारा जो दृश्य है वो हमारी आंखों के सामने है। बहुत अच्छा लग रहा है शारदा जी आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनवाएं आज?
0: अजी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा जी ने गीत को गाया है। ले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये गीत सुना दीजिए आकाशवाणी मध्यप्रदेश भोपाल से।
1: क्या बात है, तो शारदा प्रसाद जी आपने बहुत ही सुरीले अंदाज में गीत की फरमाइश की है, अराउंड द वर्ल्ड फिल्म के गीत की। आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते मैडम, मैं जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं
0: तो जगदीश जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं मैडम मैं स्प्रे पेंटिंग का काम करता हूँ, मशीन है, कलर करता हूँ।
0: अच्छा, तो रंगों से घिरा आपका जीवन है। हाँ?
1: हाँ?
0: और रेडियो
1: हाँ?
0: किस तरह से साथ निभाता है आपका?
1: जी मैडम,
0: रेडियो कब कब सुनते हैं आप?
1: मैं तो रेडियो का बहुत बड़ा शौकीन हूँ मैडम। मैं तो क्या है, नंदा जी बेरा जी का कार्यक्रम सुनता था ना, खेती गृहस्थ कार्यक्रम, जब से जुड़ा हूँ मैं।
0: जी।
1: उसके बाद अमीन सहनी जी का कार्यक्रम सेवा का गीतमाला से जुड़ा हूँ मैं। और अभी मैं छत्तीसगढ़ भिलाई गया था, उस समय भी मैंने फोन करा था, वहाँ आयोजित कार्यक्रम था, परिचय सम्मेलन कार्यक्रम में वहाँ भी शामिल हुआ था 19 और 20 तारीख का भिलाई में।
0: जी,
1: क्या है, शौक बहुत ज्यादा मेरे को रेडियो सुनने का।
0: बिल्कुल, बहुत पुराने श्रोता
1: है। मैं काम छोड़ के गाने सुनने का, पहले छुट्टी करके काम जाना जाता था रेडियो सुनने के लिए।
0: अरे अच्छा,
1: क्योंकि वहाँ रेडियो सुनने को मिलता नहीं, वहाँ पे बोले तू काय के लिए रोज जाता है। मैंने कहा सर मेरे को गाना सुनना रहता है, मैं फरमाइश डालता हूँ, मेरे को बड़ा शौक है।
0: तो बहुत पुराना नाता आपका है आकाशवाणी
1: बहुत
0: से।
1: पुराना है, मैं कहते रहूँ सेवा का गीतमाला अमीन सहनी जी की जो चलती थी।
0: जाहिर सी बात है कि बहुत पुरानी बात है ये। आप बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: शान फिल्म का कोई सा भी गाना सुन दीजिए आप।
0: शान फिल्म का, ठीक है।
1: हाँ, बच्चन साहब की।
0: जी जी, ठीक है। तो शान फिल्म का गीत आपके लिए हम प्रस्तुत
1: थैंक
0: करते
1: यू
0: हैं।
1: मैडम,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
1: जी मैडम, धन्यवाद आपको भी।

0: श्रोताओं की फरमाइश पर गीतों का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने। नमस्कार, नाम बताइए।
1: तितलियां फूलों पे मंडराती होंगी, मोरों को लुभाती होंगी, याद तो सुनीता जी हम आपको करते हैं, हिस्सियां भी आप ही को आती होंगी।
0: क्या बात है। तो ये आपकी जो मीठी सी बात हम तक पहुंची है और हम मुस्कुरा उठे हैं, हम चाहते हैं कि आपका नाम भी हमारे सुनने वालों को मालूम हो।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: हसीना जी कैसी हैं?
1: बस अच्छे हैं मैडम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की है कार्यक्रम की, तो हमें लगता है कि वास्तव में जीवन में सब कुशल मंगल है। और गीत संगीत से तो आपका नाता रहता ही है, तो बताएं कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का और गाने की बोल है अब दवा की जरूरत नहीं।

0: क्या
1: ओ
0: बात है,
1: काफी है उम्र भर के लिए, ये सुना दीजिए।
0: वाह वाह वाह। हमें तो आनंद आ जाता है आपसे बात करके, इसलिए कि गीत हम आपको सुनवाते हैं बाद में, पहले आप हमें सुना देती
1: जी, वो थोड़ा
0: हैं।
1: गाना गाने का थोड़ा शौक है मैडम, दिन भर रेडियो चलता रहता है ना तो सुनते
0: जी
1: रहते। और मैडम एक शिकायत भी आपसे, शिकायत तो क्या, ये है अपना प्रेम है इसलिए बोल रही हूँ,
0: जी
1: हमारे लेटर भी थोड़े शामिल कर लिया क्या, बहुत
0: जी
1: दिनों से
0: जी
1: डाले हैं, 2 महीने
0: जी
1: से
0: जी
1: डाले हैं।
0: ज़रूर, आपका पत्र भी शामिल होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तो ये
1: जी
0: बताएं
1: जी
0: कि
1: दिनों जाए तो
0: आपने
1: फल तो मीठा होता है, मतलब सबके लेटर आते हैं ना।
0: जी जी जी अच्छा ये बताएं कि आपने संगीत कहीं सीखा भी है या ऐसे ही शौक से गाती हैं?
1: नहीं, कहीं भी नहीं सीखने जाती हूँ, ना पढ़े लिखी हूँ ज्यादा मैडम, मगर मेरे को कोई बोलता ही नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो।
0: बिल्कुल, न तो आपकी बातचीत से ये लगता है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और आपके
1: जी
0: गाने से भी ये नहीं लगता कि आपने संगीत नहीं सीखा है। तो ये बड़ा
1: नहीं, ये
0: ईश्वर
1: और
0: का आप पर
1: मैडम क्या,
0: वरदान
1: हम लोग
0: है।
1: क्या सबके बारे में अच्छे ही सोचते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं, और सब लोग अच्छे रहेंगे जब अपन अच्छे रहेंगे, सबके
0: बिल्कुल,
1: लिए अच्छा सोचते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं।
0: तो हसीना जी इसी तरह बने रहिए, और आपकी पसंद का गीत तैयार है, आप तक भेजते हैं, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी से। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: शुक्रिया मैडम, आपको भी।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का।
1: आप सुनीता बहन है ना?
0: हाँ जी,
1: हम पहचानते हैं आपको इसलिए।
0: ओहो, तो आपने हमारा तो परिचय दे दिया, अपना तो परिचय दीजिए।
1: रघु बोल रहा हूँ, बरखेड़ा।
0: रघु कहाँ से?
1: बरखेड़ा।
0: बरखेड़ा से क्या करते हैं रघु जी?
1: नहीं, आंखों से देख नहीं पाते।
0: अच्छा, लेकिन गाने सुनते हैं, है ना? गाने सुनने का शौक
1: नहीं,
0: है आपको?
1: आकाशवाणी भूफल रोज सुनते थे इसलिए मैंने कॉल।
0: लेकिन गाने सुनने का आपको शौक है? हाँ
1: वही तो।
0: बहुत अच्छी बात है। संगीत जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है।
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ जी, तो अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आज आपको?
1: इतनी शक्ति देना दाता हमें,
0: इतनी शक्ति हमें देना दाता, अंकुश फिल्म का गीत। तो चलिए, बहुत ही सुंदर से हम कहें कि भजन की आपने फरमाइश की है, आपके साथ हम भी सुन रहे हैं। इसी तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिएगा।
1: धन्यवाद आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: आदरणीय नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी जी, मैं आपका नेम है सोता मैम जी। जय नरसिंहदेव, एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकदेल, तहसील गोतेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: कमलेश जी कैसे हैं?
1: सब कुशल है मैम जी, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, आपको सुन रहे हैं। और मेरी छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान है मैम जी।
0: जी,
1: पर रेडियो है बढ़िया और आपको सुनते रहते हैं और ग्राहक बंधु भी लुप्त उठाते हैं इस कार्यक्रम।
0: तो न केवल आप संगीत सुनते हैं बल्कि आपके जो ग्राहक हैं उनको भी आप संगीत का आनंद प्रदान करते हैं, है ना?
1: मैम जी एक बात कह दूं कि ग्राहक, बहुत से ग्राहक ऐसे कहते हैं कि ये आठवां अजूबा है रेडियो सुनना, क्योंकि रेडियो को सुनने वाले कम बचे हैं।
0: अच्छा।
1: उनकी नजर में ग्राहक बंधु कहते हैं जो सुनते हैं रेडियो को देखकर, क्योंकि रेडियो को सुनना और रेडियो हाथ में रह जाना या दिखना आंखों में, तो ये मोबाइल पे आ जाती बात अलग है, रेडियो पर सुनना कार्यक्रम को आठवां ही अजूबा समझते और संवेदनशील है मैम जी ये रेडियो।
0: जी जी, तो मतलब आपकी दुकान में रेडियो को भी बैठा हुआ देखते हैं, वो पाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप मतलब एक बहुत पुरानी धरोहर को साथ लेकर चल रहे हैं, है ना?
1: जी जी, मैं तो पुराना श्रोता हूँ ही, पुराने समय
0: जी,
1: का हूँ।
0: जी जी जी, तो कमलेश जी गीत संगीत का आपको शौक है आपने बताया, कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है मैम जी सौदागर।
0: कौन सा गीत?
1: उसी फिल्म का गाना है, लता जी ने गाया है, सजना है मुझे सजना के लिए।
0: आशा जी ने गाया है इस गीत को, तो
1: जी जी जी।
0: बहुत ही सुंदर गीत की आपने फरमाइश की, बहुत ही मीठा सा गीत, आपकी फरमाइश पर हम सभी मिलकर सुनते हैं। कमलेश जी इसी तरह से जुड़े रहिए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
1: जी मैम जी, आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, जारी है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। नमस्कार, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जलोदिया,
1: हाँ,
0: कैसे हैं गोविंद जी?
1: बस बढ़िया है, बस पानी जो है कम आ रहा है अभी तो वैसे।
0: अच्छा, इस वक्त पानी कम गिर रहा है वहाँ।
1: हाँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों जीवन में?
1: जीवन में बस ये तुम्हारा हेलो फरमाइश वगैरह ये भी देने का काम है ज्यादातर मेरा। और क्या
0: मतलब जीवन में
1: नहीं है,
0: रेडियो
1: अपन
0: शामिल है।
1: रिटायरमेंट टाइप है अपना।
0: जी जी, अच्छी बात है।
1: 74 साल की उम्र है अपनी।
0: 74 साल की उम्र है आपकी?
1: हाँ, मेरी 74 साल।
0: और
1: तो
0: बिल्कुल।
1: रेडियो सुनना, और ये आजकल क्या सिस्टम हो गया ये इस पे मोबाइल पे, तो पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की और विदेश सब मतलब जो स्टेशन रखती है ये, भोपाल भी मैं सुनता हूँ, एक नंबर वाला।
0: जी जी, अब देखिए 74 वर्ष की आपकी उम्र है, तो हम चाहते हैं कि आप ये बताएं स्वस्थ जीवन का राज क्या है। आपकी आवाज से हमें
1: अब
0: लग रहा है कि आप
1: ये
0: बिल्कुल चुस्त
1: जीवन
0: दुरुस्त
1: का
0: हैं।
1: स्वस्थ राज है तो फिर खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये रही है कि आदमी ने चलना चाहिए सुबह और शाम।
0: आपकी आवाज से हमें लगा कि आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं, इसलिए हमने पूछ लिया। कौन सा गाना सुनवा दें आज?
1: सर, ये काली टोपी लाल रुमाल का है, पुरानी है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के लागी छूटे ना,
0: अरे वाह, बहुत ही
1: बहुत
0: पुराने गीत
1: पुराना
0: की।
1: गाना है।
0: जी जी जी चित्रगुप्त का संगीत है, बहुत ही सुंदर
1: हाँ
0: गीत।
1: बिल्कुल सही।
0: तो गोविंद जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं की फरमाइश पर गीतों का सिलसिला जारी है। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम है। हेलो, हमारे अगले श्रोता का नाम हम जानना चाहते हैं।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, जसराम जाट बोल रहे, जोराइशी मैडम।
0: जसराम जी, कैसे हैं?
1: हाँ मैडम, बहुत बढ़िया हैं।
0: बहुत बढ़िया हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस कुछ नहीं मैडम, क्या है, बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है तो खुशी की बात है ना ये तो।
1: मैडम जी, खुशी की बात है।
0: हाँ, रेडियो से जुड़ाव कब से है जसराम जी?
1: करीबन करीबन मैडम, हम 5 साल के रहते, 5 साल से हम रेडियो से जुड़े हैं।
0: और अभी उम्र क्या है आपकी?
1: हमारी उम्र है अभी 30।
0: वाह, मतलब 25 सालों का ये नाता है। बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है
1: तमाम।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आज?
1: हमको गाना सुनवा दीजिए मैडम, राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी।
0: बहुत ही मीठा सा गीत, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये। तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम भी सुनते हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए
1: जी। मधुर आवाज की मलिका आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को प्यार भरा अभिवादन। संतोष कुमार राव बात कर रहा था उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पिछला फोन कब किया था?
1: लगभग 15 दिन पहले मैडम।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि इस अनुशासन का पूरा पूरा पालन करते हैं। कैसे हैं संतोष जी?
1: मैडम बहुत अच्छे हैं। लगातार प्रसार भारती के न्यूज ऑफिशियल एप्स और डीटीएच के माध्यम से आपका प्रसारण सुनते हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश इतनी सुंदर शैली के साथ प्रभावित कर देने वाले कार्यक्रमों का निर्माण करता है। बहुत ही प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां होती है मैडम आपकी।
0: क्या बात है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
1: कैसा है? आपसे सीखते हैं ना, बिल्कुल अच्छा है। आप विविधा जैसे कार्यक्रमों का निर्माण जब आप करती हैं, बहुत ही शालीनता प्रभावित कर देने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण आप करती हैं। बहुत ही सुंदर स्पष्ट आपकी आवाज होती है मैडम, जो सीधे सीधे दिल तक छू जाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए संतोष जी आप करते क्या हैं?
1: मैं मैडम आकाशवाणी स्टूडियो जो कि शेडोल पर है FM 102 MHz पर, वहाँ पे जाकर किसान वाणी कार्यक्रम के लिए अपनी वार्ता रख पाता हूँ मैडम।
0: अरे वाह, तो आप आकाशवाणी के वार्ताकार हैं, तो आपका तो मतलब एक नाता है आकाशवाणी से, स्टूडियो से भी आपका रिश्ता है ना। आप केवल श्रोता है, प्रस्तुता भी हुए। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज आप मुझे सुनवा दीजिएगा, मूवी का नाम रहेगा जानी दुश्मन, जो कि पुरानी वाली है, और बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां।
0: वाह वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत की आपने फरमाइश की। आपके साथ मिलकर हम भी सुनते हैं, हमारे बाकी के श्रोता भी सुनेंगे। संतोष जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आज के इस सुरीले से सफर में आपने अपनी पसंद के गीत सुने, हमसे बातें की और अपनी फरमाइशों से इस कार्यक्रम को अपना बनाया। आपकी आवाज के साथ जुड़कर ही गीतों की ये महफिल पूरी होती है। अब इस खूबसूरत सिलसिले को यहीं विराम देते हैं, लेकिन संगीत को विराम कहाँ, वो तो आपके साथ आगे भी चलता रहेगा, कभी होठों पर गुनगुनाहट बनकर, कभी मन में किसी मीठी सी याद की तरह। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का कोई ना कोई एक गीत आपके दिन को एक सुंदर रंग दे गया होगा, इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, बहुत जल्द फिर मिलेंगे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रदेश में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। 11 सितंबर से 6 वर्ष तक के बच्चों की जांच कर उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। लघु उद्योग भारती द्वारा 2 और 3 अक्टूबर को इंदौर में उद्योग समागम आयोजित किया जाएगा, जहाँ नई तकनीकी निवेश उद्योगों एवं नेटवर्किंग के जरिए एक साथ आने का अवसर मिलेगा।

आयोजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में उद्यमी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ई वीडियो कंटेंट अब आज से ई ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज शाम 5 बजे इस चैनल का शुभारंभ करेंगे। धार जिले में आज़ादी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टांडा रोड और प्रताप नगर वडोदरा के बीच नई 12 कोच वाली मेमू ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। और वियतनाम के दानांग में आयोजित पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ श्रृंखला में 4वां स्थान हासिल कर अभियान का समापन किया। इन पदकों में 7 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय टीम पिछले साल 7वें स्थान पर रही थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार। लीजिए, आपकी फरमाइशें पूरी करने का वक्त आ गया है। और इसी सफर में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आशा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है मानोरा वाशिम से ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस गिरी, प्रणीता गिरी, शैलेश पुरी, सोनम पुरी और धनुष पुरी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, शनक्ष और आरु शाहू। और थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आशा फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर, मुकेश, चंचल, जानी बाबू और साथियों ने। गीत के बोल लिए हैं वर्मा मलिक ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से ये हमारे श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और ये खत हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से विनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम में हम पूरी कर रहे हैं हमारे उन श्रोताओं की फरमाइश जो हमें मिली है पत्रों के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं बेमिसाल फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। सुनने के लिए पत्र हमें ये मिला है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। जिला बुरहानपुर मोहद से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमनी रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रुजूबाई तड़वी, सनी बाबू परु तड़वी और समस्त तड़वू परिवार। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू का। और ये पत्र छावड़ा राजस्थान से हम तक पहुंचा है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो का। इन सभी की पसंद पर बेमिसाल फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा।

वाह, इतने खूबसूरत गीत के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये हैं अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुरपुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित, कुमारी ध्वनि, परी। और ये पत्र हमें मिला है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे और कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से ही। ये फरमाइश है नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद रजीह, जुनेद, अलीना आयत और मुआज की। ये सभी सुनना चाहते हैं फकीरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: फकीरा फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जमुनिया की 22वीं कड़ी।

0: जमुनिया पढ़ लिखकर गांव की सरपंच हो गई है और गांव में जरूरी सभी साधन जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सड़क इत्यादि सुविधाओं के लिए रात दिन एक करके उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। और अब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, गांव में साफ सफाई, इन सब के पीछे लगी हुई है। आज गांव में ये सारी सुविधाएं आ गई हैं। अब आगे
1: जमुनिया भाभी प्रणाम प्रणाम जमुनिया भाभी।
2: हाँ करण, कहो।
1: भाभी भाभी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
2: संकोच की कोई बात नहीं, कहो।
1: भाभी, आज सालों हो गए आपको घर छोड़े हुए, जो सारी मेरी गलती थी, पर अब मैंने उस घर को आपके रहने लायक बना दिया है। और वो खेत जो भी आप बना गए थे, उसमें मैंने बहुत अच्छी फसल तैयार की है। आपकी देवरानी भी बहुत खुश है। हम दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि अब आप अपने घर चलिए, उसे संभालिए और इस नादान को दिल से माफ कर दीजिए भाभी।
3: हाँ जमुनिया बहन, ये सही कह रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए।
1: चलिए भाभी।
2: देखो, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। रही बात घर आने की, तो ये पूरा गांव ही मेरा घर है। मैं कभी भी आ सकती हूँ, उसकी चिंता तुम मत करो। अच्छे आदमी बनो और मेरी देवरानी को प्यार से रखो। मैं जरूर आऊंगी किसी दिन।
1: ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। आओ।
3: नमस्ते जमुनिया बहन।
2: नमस्ते
4: जमुनिया। तुम्हें पता है
2: क्या,

0: गोलू कलेक्टर हो गया है और चिरैया डॉक्टर।
1: मुझे तो बहुत दिन हो गए पता हुए, पर आज आप ये इस तरह क्यों कह रहे हैं?
0: कई बार जब सच्ची

0: अपना सबसे अच्छा जीवन को दिया और जीवन ने प्रतिफल में तुम्हें ये सब हासिल कराया। और सोच सोच कर मुझे खुद पर भी नाज होता है कि मैंने तुम्हारे साथ जीवन जीने की इच्छा की और आज उसे पूरी भी की।
1: पर लगता तो सपने जैसा ही है ना?
0: हाँ वो तो है।
2: देखो भैया, सरकार हमारे लिए कितना कुछ करती है और हम हैं कि उसको कोसते ही रहते हैं।
3: ठीक कह रही हो बहन, बिल्कुल सही कहा तुमने। हम लोग कितना कुछ सरकार को कोसते रहते हैं, ये तो कितनी नाइंसाफी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
2: सही कहा बहन आपने।
3: जमुनिया के बच्चों ने कितनी तरक्की कर ली।
2: हाँ ये तो है।
3: अब गांव आएगी तो डॉक्टर बन के आएगी।
2: हाँ।
3: और कितने लोगों का इलाज करेगी वो।
2: सही कहा बहन आपने। अब देखो कहाँ जाती है, क्या करती है। सुनी है कि आने वाली है।
3: हाँ
2: पता नहीं कैसे दिखती होगी अब वो, अब बड़ी भी हो गई होगी ना।
3: हाँ सही कह रही हो। बाबा क्या कर रहे हो?
4: अरे बेटा करना क्या है, बस आने वाले समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब अपने बच्चे यहाँ आएंगे और गांव को बताएंगे कि वे क्या बन गए हैं, अरे मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जब मेरा पोता इस गांव का कलेक्टर बनकर आएगा और हम सबको प्रणाम करेगा। हाँ
3: बाबा इतनी सी बात नहीं है, हमारी सोच में ये भी होना चाहिए कि ये केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे गांव की उपलब्धि है और हम सबको उन पर नाज है।
4: हाँ बेटा ठीक है, चल मैं जरा हाथ होके आता हूँ बिटिया।
3: हाँ बाबा ठीक है।

0: ए भैया गोविंद प्रसाद,
1: हाउ दैट?
0: एक बात है यार, देखो
1: हाँ
0: जो अपनी जमुनिया है ना,
1: हाँ हाँ,
0: उसकी तकदीर देखो यार।
1: ये कब होगा दादा?
0: अरे देखो, कहाँ तो उसके नसीब में एक औलाद तलक नहीं थी।
1: अरे हाँ,
0: और अब दो दो हैं।
1: अरे हाँ,
0: और एक कलेक्टर
1: हाँ
0: और दूसरी डाक धारक।
1: क्या कह रहा दादा?
0: और क्या?
1: अरे इसे तो उसकी किस्मत मत समझो दादा,
0: तो
1: हाँ इसे किस्मत नहीं, अरे मेहनत कहते हैं, मेहनत।
0: हाँ
1: भैया, जमुनिया ने इसे हासिल किया है, हाँ, और हम सब ने उसे हासिल करते हुए देखा भी
0: है।
1: मेहनत करो तो सब कुछ।
0: नहीं, सही बात है, बहुत मेहनत करी,
1: मेहनत करी बात है।
0: और अभी जयंत बाबू भी आए हैं, दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं।
1: मेहनत कर रहे हैं, काम की तो सूरत ही बदल।
0: अरे बिल्कुल, दोनों के।
1: और क्या,

0: जमुनिया, क्या सोच रही हो? क्या कोई समस्या आ गई है?
1: नहीं, कोई समस्या नहीं है। बात इतनी सी है कि बच्चे पढ़ लिख गए, अब इनकी शादी ब्याह का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग क्या करेंगे?
0: अरे हमें क्या करना है, बच्चे खुद कर लेंगे। हमने किसी से पूछा था क्या?
1: आप भी ना।

0: फिर से पढ़ने की इच्छा तो नहीं जाग गई?
1: इच्छा सोई ही कब थी गुरुजी, ये तो इतने सारे काम फैले थे कि इस इच्छा को रोकना ही पड़ रहा था। आज थोड़ा समय मिला तो मन हुआ कि गुरुजी को जाकर फिर से प्रणाम करें और उनसे कुछ सबक लें।
0: अरे अब तो सारा गांव तुझसे सबक ले रहा है बेटा, तूने थोड़े ही समय में इस गांव की किस्मत बदल दी। जिस स्कूल में बैठा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसके लिए सरकार ने कुछ अलग से तो किया नहीं, पर उसी सरकार की दी हुई योजना को पूरा करके बेटा तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा नेक काम किया है। आज ये इतने बच्चे कल के उदयमान सितारे हैं बेटा, और इस गांव के आने वाले समय की तकदीर। बताओ बताओ भला आज क्या पढ़ना चाहती है तू?
1: गुरुजी, आपको याद है जब आपने शुरू शुरू में मुझे पढ़ाया था, तब मैंने आपसे पूछा था ये तनाव कितनी बुरी चीज है। तब आपने मुझसे संकेतों में समझाया था कि तनाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन यदि नियंत्रण में हो तो जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। मैंने तब आपसे और स्पष्ट करने को कहा था, तभी आपने कहा था कि समय आएगा तो किसी दिन वो भी समझाऊंगा। उसके बाद लंबा समय बीत गया, मैं गांव को लेकर व्यस्त रही और आप बच्चों को पढ़ाते रहे। गुरुजी, क्या आज आप बताएंगे?
0: अच्छा अच्छा, तो चलो आज इस विषय को स्पष्ट कर ही देते हैं बेटा। देखो, तनाव जब बहुत बढ़ जाता है तो चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, खुद से नियंत्रण खत्म हो जाता है। और अगर तनाव ना हो तो हमारे काम करने की, आगे बढ़ने की इच्छा भी कम हो जाती है। इसीलिए एक जरूरी तनाव तो होना ही चाहिए। उदाहरण धनुष का ही ले लेते हैं। अगर धनुष ढीला है, तनाव नहीं है, तो फिर उससे तीर छूटेगा ही नहीं और तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और यदि तनाव बहुत ज्यादा है तो तीर खींचते ही धनुष टूट जाएगा।
1: तो फिर
0: संतुलित तनाव ही इसका हल है। धनुष पर आवश्यक तनाव ही बाण को चलाने में सहायक होता है, और अगर ऐसा हो तो ही आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे।
1: वाह गुरुजी, तनाव का आज इतना अच्छा प्रयोग और स्पष्टीकरण पहली बार समझ में आया। जीवन में तनाव ना हो या बेहद तनाव हो, दोनों ही खतरनाक है। संतुलित तनाव से ही जीवन आगे बढ़ता है। वाह,
0: और कुछ?
1: अब गुरुजी, ये सवाल मेरे दिल में बहुत दिनों बाद फिर आया था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। इसके अलावा यदि आप कुछ मुझे सीख देना चाहें, समझाना चाहें, तो बताइए, मैं सीखने को तैयार हूं।
0: भाई एक काम करते हैं जमुनिया, के अभी मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना है
1: जी,
0: इसलिए तुम्हारे लिए एक दिन किसी छुट्टी के रोज एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे हैं।
1: हाँ गुरुजी।
0: और तब जीवन के कुछ दूसरे पहलुओं पर तुमसे बात करेंगे।
1: बिल्कुल अच्छा।
0: ठीक है,
1: ठीक, मैं चलती हूँ। अच्छा गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी
0: प्रणाम प्रणाम।

0: अरे भैया, इस अस्पताल में अभी कितने मरीज हैं और उनके लिए कोई इलाज वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं?
1: कल शाम शहर से डॉक्टर आई है मैडम, रात भर मरीजों को देखा और आज सुबह ही शहर चली गई। अब ज्यादा नहीं, यहाँ तो केवल 3 मरीज हैं और हाँ, वे एम्बुलेंस आने वाली है, उनको शहर लेके जाएगी।
0: ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: राम राम पोस्ट मास्टर साहब, कैसे हैं?
1: राम राम जमुने जी, अच्छे हैं।
0: हमसे कुछ चाहिए तो नहीं? कोई परेशानी हो तो बतलाइएगा। खाता खोलने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेंडिंग तो नहीं है?
1: नहीं नहीं जमुनिया जी, कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। और जहाँ तक जरूरत का सवाल है, वो तो हमारे कहने से पहले ही आप पूरी कर देती हैं।
0: ये सब हम लोगों का अपना ही काम तो है। चलती हूँ। राम राम।
1: राम राम।

0: राम राम मैनेजर साहब।
1: नमस्कार नमस्कार जमुनिया जी।
0: बैंक का कामकाज तो ठीक से चल रहा है
1: जी? हमारा तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, आप सुनाइए पंचायत की।
0: नहीं सब बढ़िया है वहाँ पर भी। राम राम मैनेजर साहब।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: बैंक का कामकाज तो ठीक से चल रहा है ना?
1: जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, और चिंता की तो कोई ऐसी बात है नहीं।
0: और कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
1: जी जी।
0: और जो खाते के प्रार्थना पत्र हैं उन सब पर खाता खुल गया या कुछ बाकी है?
1: नहीं नहीं, खाता तो कोई बाकी नहीं है, सब ठीक चल रहा है और अब हमें किसी तरह की कठिनाई भी नहीं है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
1: जी नमस्कार, नमस्कार।

0: आ भाई, एक चाय पिला दे।
1: अरे आओ भाई साहब, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। मैं अभी अभी दे दूँ गरम गरम
0: हाँ
1: चाय
0: भैया,
1: साहब। हाँ
0: अदरक डाल देना
1: हाँ
0: थोड़ा।
1: अभी लगो।
0: और सुना, क्या हाल चाल है?
1: हाँ सब ठीक है भाई, सब तुम्हारी मेहरबानी है, देखो कितना सब बहुत बढ़िया होगा सब।
0: एक बात तो बताओ भैया,
1: हाँ पूछो। हाँ
0: ये जो एक बस यहाँ से सुबह शहर जाती है और दोपहर को आकर फिर लौट जाती है
1: हाँ
0: और वही शाम को आकर यहाँ रुकती है, वो ठीक ठाक चल तो रही है ना?
1: अरे भाई बस वही ठीक चलती तो क्या बात थी, वही की तो परेशानी है।
0: क्या?
1: अरे बड़ी बड़ी लेट आते हैं भैया, कभी
0: हाँ
1: आए भी नहीं, कभी नहीं आए तो फिर वापस ही नहीं आए, तो ना लोग सवारी इंतजार कर रहे थे, परेशान हो रहे थे भाई, बहुत परेशानी हो रही है उससे तो उसको कुछ करो भाई।
0: काय, क्या तुम लोगों ने पूछा नहीं, पता नहीं किया?
1: पूछा कितनी बार पूछो हैं, जब पूछो कभी ये बहाना बना दे तो कभी वो बहाना बना दे, अरे बहुत टाला बुटूली करे वो।
0: देखना पड़ेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ,
1: अरे तो
0: देखती हूँ क्या कर
1: चाय
0: सकते हैं ना।
1: तो पी जाओ।
0: आज
1: हाँ
0: चाय तो पी रही हूँ ना
1: हाँ
0: भैया।
1: हाँ अच्छा भाई चलो।
0: ये लो आपके चाय के पैसे।
1: अरे पैसा नहीं लेंगे भैया, ये मत करो भाई।
0: अच्छा भैया,
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आओ आओ
0: राम
1: फिर
0: राम।
1: आओ, आना फिर भैया।
0: हाँ।

0: जयंत बाबू, शहर वहर नहीं जाएंगे क्या?
1: हाँ, कोई काम तो है नहीं। हाँ, पर अगर तुम कोई काम दो तो जाकर करने में कोई संकोच नहीं है।
0: ये जो एक बस हम लोगों ने गांव से शहर के लिए लगाई है और ये सड़क उसी काम आती है। सुना है पिछले कुछ दिनों से एकाध फेरा मिस करने लगी है, वो पता लगाना है।
1: हाँ ठीक है, तो मैं शहर जाकर पता लगाता हूँ क्या गड़बड़ है और उसे नियमित करवाता हूँ।
0: ठीक।
2: नदियाँ बहते बहते कहती रुक न सके ये धारा।
3: जमुनिया बिटिया, सोच के कितनी हैरत होती है कि एक दिन तुम इसी घर के सामने बारिश में चिड़िया को लेकर बेहोश पड़ी थी, और अगर बिजली न चमकती तो कोई देख भी नहीं पाता कि इसमें जमुनिया और चिड़िया है। वही गांव, वही घर साफ सुथरा, अब कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वहां खटंजा लग गया है। अरे चारों तरफ जगह जगह अच्छे साफ पानी के हैंड पंप लगे हैं, और रात को एक बत्ती कनेक्शन हमारे झोपड़ों में उजाला लेकर

0: अब तो बिटिया हम रात को भी अब दलिया बना सकते हैं बिटिया।
1: हाँ बाबा, सोचकर तो मैं भी चकित हो जाती हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी कहाँ पता था कि क्या क्या और कैसे कैसे होता है। बस मैं तो समय की बहती हुई धारा में कूद पड़ी थी और धीरे धीरे घाट दर घाट जीवन बीतता गया और गांव की तरक्की रंग लेती रही। आज तो मन सोचने लगा है कि और क्या क्या किया जा सकता है।
0: बहुत कुछ किया जा सकता है बिटिया अभी भी।
1: जैसे?
0: जैसे तुमने इस गांव में पापड़, अगरबत्ती, हर इस सिलाई के छोटे छोटे सेंटर बनाए हैं, वैसे ही ये जो डलिया पंखे हम लोग बनाते हैं ना,
1: हाँ,
0: इनका भी एक वो क्या कहते हैं उसको, वो कॉपरेटिव बन सकता है, जिसे हम शहर के किसी बड़ी दुकान के मार्फत बेच भी सकते हैं बिटिया।
1: अच्छा
0: हैं?
2: देखा जमुनिया, बाबा कितने बड़े काम की बात कर रहे हैं। जमुनिया, तुम कुछ लोगों को मिलाकर बांस के जो इस तरह की चीजें बनती है ना, थोड़ा और साफ सफाई के साथ बनाकर तैयार करो।
1: अच्छा
2: हाँ, और मैं शहर के किसी कॉपरेटिव स्टोर से बात करता हूँ,
1: ठीक,
2: ताकि इन चीजों के अच्छे पैसे मिल सके और हमारा सामान दूर दूर तक जा सके।
1: बिल्कुल जयंत जी, ऐसा ही होना चाहिए।
2: बाबा,
0: हाँ बोलो बेटा,
2: आपके मन में ये कॉपरेटिव का विचार कहाँ से आया?
0: अरे कुछ नहीं, बस एक दिन मैं किसी को बात करते सुन रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, तभी से सोच रहा हूं कि तुमसे बात करूं मैं।
2: हाँ, पर मुझे हैरत हो रही है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई।
1: चलिए कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा।
2: हाँ।

0: हाँ भाई आ गए तुम लोग।
1: हाँ मालिक, हाँ
2: हाँ
1: मालिक,
0: चलो सुनो हमारी बात भाई।
3: हाँ मालिक,
1: हाँ
3: हुकुम
1: मालिक,
3: करो।
1: हाँ
0: भाई तुम लोगों ने अब तक हमारा बहुत साथ दिया,
1: मालिक,
0: जैसा कहा जब कहा किया तुम लोगों ने। भैया उसके लिए बहुत बहुत
1: अरे
0: धन्यवाद।
1: अरे धन्यवाद किया मालिक, ऐसे नहीं।
0: पर भैया सच बात तो ये है कि समय आ गया है कि अब तुम लोग हमारा साथ छोड़ दो।
1: अरे
2: जी
1: क्या कह रहा है मालिक,
2: का कह रहे मालिक,
0: हाँ सही कह रहे
3: हाँ
0: भैया। सुनो तो,
3: जी
0: काय के कायदे से इतने लोगों की अब इसे हवेली को जरूरत नहीं है ना।
3: मालिक,
2: काय
3: तो काय कह रहे हो
2: मालिक,
3: आप?
0: हाँ नहीं, जाने के
3: जी
0: जिस काम के लिए तुम लोगों को अभी तक रखा
3: हाँ
2: हाँ मालिक,
0: उसे तो जमुनिया ने खत्म ही कर दिया
1: अरे
0: भाई।
1: नहीं मालिक,
2: अरे ना मालिक,
0: हाँ
3: करन दो
0: भैया सच
3: बात
0: बात तो
3: उसको।
0: यही है, सच बात ये है कि अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है।
1: पर मालिक,
0: हाँ
1: इतना
0: तो फिर
1: सारा
0: सुनो
1: काम,
0: सुनो सुनो
3: और
0: सुनो,
3: हम कैसे जाएं फिर मालिक?
0: नहीं
3: आप
0: बता रहे ना
3: जाएंगे
0: भैया, तुम लोग ऐसा करो।
3: काम भी कोई नहीं दे हमको,
0: अरे रे
3: कैसे
0: रे,
3: अपने
0: जाओ
3: सब
0: जाओ,
3: नाम बदनाम
0: जो
3: होगा
0: भट्टा है ना,
3: फिर
0: भट्टा भट्टे पे
3: बदमाश
0: जाकर
3: समझा
0: काम
3: जाए।
0: से लगो,
1: अरे
0: और ना हो तो एक और भट्टा खोल देते हैं।
3: हाँ जी,
2: हाँ
3: ऐसे
2: जी
3: तो हुआ
2: जी
3: तो
2: जी
0: ठीक है ना। तो सुनो, ये तय हुआ कि इस हवेली पर बहुत हुआ तो एक या दो लोग ही रहेंगे, ठीक?
1: पर मालिक, इतना सारा काम तो जहाँ है, एक आदमी से कैसे होगा?
0: अरे भैया यार, देखो भैया वो देखना हमारा काम है, बस कही ना, एक दो लोग रुको यहाँ, बाकी भट्टे पर जाके लगो।
2: अरे
3: तो
2: भैया
3: सही
2: कहाँ
3: बात तो
2: जा रहा
0: कर
2: है,
0: ना,
2: अरे
0: और
2: मालिक
0: भट्टे का
2: समझ रहे
0: नया
2: हो, अरे
0: साइट भी
2: भैया
0: देख लो,
3: हो
0: हम भी कोई
1: मालिक को क्या
0: इंतजाम
1: हो
0: कर
1: गया,
0: देंगे
2: अरे भैया
0: ना।
2: समझ में नहीं आ रहा।
0: अरे कम से कम कुछ आमदनी बढ़े
3: हाँ ये
0: भैया।
3: तो है,
2: ये तो
3: हाँ
2: है, ये तो है।
0: सच्ची बात ये है कि फालतू के कामों में लगने से कोई फायदा नहीं होता। ससुरी नाक बेवजह करती है।
1: हाँ जे भी है
2: जी
1: मालिक,
0: हाँ भाई लोगों, अब हमारी समझ में आ गया कि ये सब गड़बड़ हमारे सोच में ही थी।
1: हेलो
2: जे कह रहा है, जे कह
0: अरे
2: रहा
0: हम सोचते थे कि डरा कर दुनिया पर अपनी धौंस कायम रखेंगे, पर सच्ची ईमानदार और मेहनती जमुनिया ने

0: हमारी सारी चालों का काट
1: देने का
0: निकाल
1: हो गया
0: लिया।
1: है भैया जी।
0: हाँ भैया सही कह रहे हैं, इसलिए अब अकलमंदी इसी में है कि हम भी कमा धमा कर अपने आप को व्यस्त भी रखें और संपन्न भी बनाएं, काय ठीक है ना?
1: अब
2: जैसी
1: जैसी
2: आपकी
1: आपकी
2: इच्छा
1: मालिक,
2: मालिक।
0: तो पर ठीक है, शाबाश, जाओ जाके भट्टा संभालो और घर के काम के लिए दो ही लोग बहुत। ठीक
1: जी
3: तो
1: ठीक
3: मालिक, मैं ऐसे ही रुकूंगा।
0: अरे ठीक है, तू यहाँ रुक जा। हाँ
1: मालिक, हम चले मालिक। राम राम मालिक।
0: राम राम भैया, राम, राम राम, जाओ सुखी रहो।
4: तुझको चलना है, तुझको चलना है, तुझको चलना है।
5: घर में जमुनिया भी नहीं है, झुल्लन बाबा भी नहीं, कहाँ चले गए सब सुबह सुबह? चलो आज खुद ही चाय बनाता हूँ।
6: अरे अरे रहने दीजिए जयंत बाबू।
5: अरे जमुनिया।
6: चाय भाई आपके बस की बात नहीं है, मैं बना देती हूँ, आप बैठिए।
5: पर ये बताओ आप सब लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए थे?
7: अरे जरा मंदिर चले गए थे बेटा। हाँ बहुत दिन हो गए थे ना हम लोग मंदिर नहीं गए थे। थोड़ा सा सुबह जाने से मन को बड़ा अच्छा लगता है और आत्मा को बल भी मिलता है, इसलिए हुआ है बेटा हम लोग।
5: अच्छा क्या हा? बाबा पर और कोई खास बात?
6: मानो तो खास ही है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आपको तो पता ही है कि आज गोलू और चिरैया गांव लौट कर आ रहे हैं।
5: हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है।
7: मैं तो सोचकर ही प्रसन्न हूँ। हाँ कितना अच्छा लग रहा है कि गोलू और चिरैया, उसका क्या तो नाम दिया था वो जयंत बाबू, वो गुरुजी ने क्या क्या नाम दिया था?
5: तेजस और रूपस।
7: हाँ लगता ही नहीं है ये अपने गोलू और चिरैया का नाम है।
6: बात तो सही है बाबा, पर अब तो वो भी अपने आप को तेजस और रूपस ही समझते होंगे। गोलू और चिरैया हमारे लिए हैं। ये लीजिए जयंत बाबू चाय, और बाबा
7: हाँ
6: ये आपकी,
5: और तुम भी लो जमुनिया, एक साथ पीते हैं हम लोग, आओ बैठो।
6: अच्छा आती हूँ। हाँ
5: चाय तो आज तुमने बहुत अच्छी बनाई जमुनिया।
6: अच्छा अच्छी तो हम रोज ही बनाते हैं, पर आप ध्यान ही नहीं देते।
5: नहीं रोज इतनी अच्छी चाय नहीं बनती।
6: अच्छा
7: अच्छा सुन सुन सुन, आप लोग लड़ो मत बेटा। हाँ बिल्कुल।
5: अरे बाबा लड़ कौन रहा है, हम लोग तो खाली आपस की नोक झोंक का मजा ले रहे हैं। अब बूढ़े जो चले हैं।
6: अच्छा फिर बूढ़ा कहाँ, मुझे बाबा देखो ना।
7: नहीं नहीं लड़ो मत हम लोग।
4: सूरज

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 22वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रदेश में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। 11 सितंबर से 6 वर्ष तक के बच्चों की जांच कर उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। लघु उद्योग भारती द्वारा 2 और 3 अक्टूबर को इंदौर में उद्योग समागम आयोजित किया जाएगा। आयोजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में उद्यमी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ई वीडियो कंटेंट अब आज से ई ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। देश में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए नया फायर एक्ट लागू किया गया है। इसमें झूठी फायर कॉल करने पर ₹20,000 तक का जुर्माना और लापरवाही से आग लगने पर नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। धार जिले में आज़ादी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टांडा रोड और प्रताप नगर वडोदरा के बीच नई 12 कोच वाली मेमू ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।

0: विभाग के अनुसार दो दिन बाद पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। और वियतनाम के दानांग में आयोजित पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ श्रृंखला में चौथा स्थान हासिल कर अभियान का समापन किया। पदकों में 7 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य शामिल हैं। भारतीय टीम पिछले साल 7वें स्थान पर रही थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, समय ही जीवन है। वक्त को जिसने न माना उसको वक्त झुका देता है। समय की कीमत जो समझे इतिहास वही बना देता है। ये बात सच है, सभी के पास 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटे में घर के बाहर के बहुत सारे काम कर लेते हैं और कुछ हमेशा यही कहते हैं, ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया, क्या करें, टाइम ही नहीं मिला। सखियों, टाइम तो देखिए सबको मिलता है, पर अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो हम उस समय को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते और इस कारण 24 घंटे कहाँ ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सखियों, हमारे पास समय की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। सुचारू और सफल जीवन के लिए समय प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी है। सही टाइम मैनेजमेंट से ना केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन भी बना पाते हैं। अपने पास जो समय है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कम समय में भी अधिक और बढ़िया तरीके से काम किए जा सकते हैं। जब काम समय पर पूरे होते हैं तो आखिरी वक्त की जो भागदौड़ और मानसिक तनाव भी होता है वो भी कम हो जाता है और योजनाबद्ध तरीके से और डिसाइड करके काम किए जाएं तो परिवार, दोस्तों और खुद के लिए पर्याप्त समय मिलता है। सखियों, जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और सफलता पाने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है जो बिना टाइम मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। सखियों, जब हमारे सभी काम नियत समय और हमारी सोच के अनुसार पूरे होते हैं तो हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ता है। इसलिए आप हर दिन की शुरुआत की तैयारी पिछली रात को ही करें, यानी हमें अगले दिन अपनी और काम की प्राथमिकता के अनुसार कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, इसकी लिस्ट जरूर तैयार करें ताकि सुबह से ही हम अपने काम पर फोकस कर सकें। फिर हर काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय तय करें। काम को कल पर बिल्कुल भी ना टालें। सखियों, ये भी ना करें कि काम बहुत सारा हो तो एक साथ लगे रहें, क्योंकि एक साथ लगे रहने से थकान भी होती है और चिड़चिड़ाहट भी होती है। इससे अच्छा है कि आप आधे घंटे काम करना है तो 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। सखियों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मशीन की तरह काम करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने समय के मालिक खुद बनें और एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आज से ही अपने समय का नियोजन शुरू करें और हमारी इस चर्चा के साथ आनंद लें मधुर गीत का।

0: निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न रही को शूल। जी हाँ सखियों, आज यानी 9 सितंबर को हमारे आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए अपनी प्रतिभा का बखूबी इस्तेमाल किया। आज हम देश के लिए दिए गए उनके योगदान का स्मरण करते हुए सुनवा रहे हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है भारतेंदु के निबंधों में भारतीय चिंतन, और वार्ताकार हैं डॉक्टर अनुभव पांडे। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: भारतेंदु का रचना फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियां एक ओर भक्ति काल और रीति काल से अनुबद्ध हैं, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उनमें अभाव नहीं है। हिंदी गद्य को पहली बार एक निश्चित दिशा और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद हैं। भारतेंदु बाबू ने अनेकानेक लेखकों को इस दिशा में प्रेरित भी किया। उन्होंने स्वयं निबंध, नाटक आदि लिखकर उसके आदर्श स्वरूप को सबके सामने प्रस्तुत किया। साथ ही एक लेखक मंडल तैयार किया। पत्र पत्रिकाएं निकालकर हिंदी गद्य के स्वरूप को संवारने निखारने में वे प्राण से जुट गए। उन्होंने कवित्व प्रतिभा और सर्वोत्मुखी रचना क्षमता का ऐसा परिचय दिया कि उस समय के साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थीं। अपनी काव्य रचनाओं में जहां वे प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्ती रहे, वहीं नवीन काव्यधारा के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। उन्होंने आजीवन साहित्य सेवा का व्रत लिया था। अपनी सारी पैतृक संपदा उन्होंने साहित्य सेवा पर लुटा दी। उन्होंने साहित्य को सामंती शिकंजों से मुक्त कराकर सामान्य आदमी के साथ संबद्ध किया। उन्होंने समय की मांग को देखते हुए हिंदी गद्य के लिए खड़ी बोली को सर्वथा उपयुक्त समझा। खड़ी बोली के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता, कहानी, निबंध, नाटक, समालोचना, जीवनी आदि गद्य की विभिन्न विधाओं का प्रवर्तन किया। भारतेंदु बाबू ने हिंदी गद्य की भाषा में सामान्य जन के समझने योग्य भाषा का मानक रूप तैयार किया। भाषा के साथ उन्होंने शैली के वैविध्य पर भी बल दिया। भारतेंदु बाबू ने तत्कालीन जनता के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करने का उद्योग किया। अपने कई लेखों में उन्होंने अपनी गवेषणात्मक बुद्धि का परिचय दिया। वे समाज सुधार के पक्षपाती थे। धार्मिक होते हुए भी वे तर्क और गवेषणा से काम लेने में नहीं हिचकते थे। वास्तव में भारतेंदु के साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण से हिंदी गद्य और पद्य दोनों में नवयुग की चेतना के दर्शन होने लगे थे। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क, भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना के उदय, पत्र पत्रिकाओं के प्रचार तथा जनता के संपर्क में आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप गद्य के एक नवीन विधान का स्वरूप सामने आया। इस नवीन विधान को निबंध संज्ञा प्राप्त हुई। विषय की दृष्टि से विचार करने पर भारतेंदु के प्रधानतः दो प्रकार के निबंध दृष्टिगत होते हैं। पहला, ऐसे निबंध जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से है और जिनमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। दूसरे, ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधारक का व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम महिमामय नहीं था। इसी कारण इनके निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही अधिकतर सामने आई है। विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में इनके विचार श्लाघनीय हैं। इस दृष्टि से भारतेंदु का भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक भी स्पष्टतया देखी जा सकती है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता शीर्षक निबंध में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। उनका रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका आदि पुरातत्व संबंधी, काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय आदि इतिहास संबंधी, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष आदि धर्म संबंधी, संगीत सार, जाति संगीत आदि कला संबंधी तथा हिंदी भाषा और नाटक आदि भाषा और साहित्य संबंधी निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन तथा ऋतु वर्णन संबंधी ललित निबंध भी लिखे हैं। उनके यात्रा वर्णन बड़े ही रोचक हैं। उनमें उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं गुण व्यंग्य की प्रवृत्ति एक साथ लक्षित होती है। शैली की दृष्टि से उन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णात्मक, कथात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की है। नाटकों का इतिहास विचारात्मक निबंधों में महत्वपूर्ण है। सूर्योदय भावात्मक निबंधों में प्रसिद्ध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है आत्मव्यंजक निबंधों में आता है। बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षाकाल, वैद्यनाथ की यात्रा आदि निबंध वर्णात्मक हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न कथात्मक निबंध है। इस प्रकार अपने युग की सभी प्रचलित शैलियों में निबंध रचना करके भारतेंदु ने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। भारतीय चिंतन का मूल आधार अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, समानता की भावना, समाज सुधार आदि उनके निबंधों में सर्वत्र देखे जा सकते हैं। समाज उत्थान का भाव उनके संपूर्ण साहित्य में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीयता का भाव उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। उनके संपूर्ण साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर देखा जा सकता है। वे एक पक्के राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रहित के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। भारतीय चिंतन के अनुरूप उनके निबंधों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। उनका संपूर्ण निबंध साहित्य भारतीय चिंतन से परिपूर्ण है। उनके निबंधों में राजनीतिक एवं समाज सुधार की प्रवृत्ति स्पष्टतः देखी जा सकती है। भारतेंदु के निबंधों में भारतीय चिंतन सर्वत्र परिलक्षित होता है। आत्मीयता की प्रधानता के कारण उनके निबंधों में रोचकता अधिक आ गई है। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में उनके निबंधों का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। विषयों की अनेक रूपता और इसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय उनके निबंधों को भारतीय चिंतन से जोड़ते हैं। उनके निबंधों में व्याप्त उदारता एवं व्यापकता की भावना भारतीय चिंतन का मूल आधार है।
0: सखियों, अभी आपने वार्ता सुनी भारतेंदु के निबंधों में भारतीय चिंतन, और वार्ताकार थी डॉक्टर अनुभा पांडे। सखियों, अभी आपने ये वार्ता सुनी। हमें उम्मीद है आपको ये वार्ता जरूर पसंद आई होगी। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि ब्रांडेड के भ्रम जाल से कैसे बचें। सखियों, आजकल बाजार में ब्रांडेड चीज़ों का एक माया जाल बिछ चुका है, जो हमारी जेब और मानसिक शांति दोनों पर असर डाल रहा है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और स्टेटस सिंबल के चक्कर में हम अक्सर उन चीज़ों के लिए भी मोटी रकम चुका देते हैं जिनकी असल कीमत बहुत कम होती है। इसलिए आप जब भी कोई चीज़ खरीदें, उसका लोगो नहीं क्वालिटी देखें, उसकी सिलाई, मटेरियल, वारंटी और टिकाऊपन देखें। हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि महंगी चीज़ पहनने या रखने से समाज में हमारा सम्मान तय नहीं होता है। हमारा व्यवहार, हमारी समझदारी ही हमारी असली पहचान है। सखियों, किसी के देखा देखी कोई चीज़ ना खरीदें और ना ही डिस्काउंट के चक्कर में पड़े, बल्कि चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या मुझे इस चीज़ की सच में ज़रूरत है। ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी करते समय किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट की तुलना उसी जैसी खूबियों वाले किसी कम मशहूर लेकिन अच्छे ब्रांड से करें। इसके साथ ही सखियों, अगर कोई बहुत महंगी और ब्रांडेड चीज खरीदने का मन भी करे तो तुरंत ना खरीदें, कुछ दिन का इंतजार करें। कुछ दिन बाद भी आपको उसकी उतनी ही ज़रूरत महसूस हो तभी पैसे खर्च करें। हर महीने में अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करें। जब आपके पास दिखावे के लिए फालतू पैसे नहीं होंगे तो आप खुद ब खुद इस जाल से बचे रहेंगे।

सखियों, आप सभी रोज़ खाना बनाती हैं, एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करती हैं ताकि परिवार में सबको अच्छा और शुद्ध खाना खिला सकें। सखियों, आप सभी जानती होंगी कि हमारी भारतीय रसोई में उपयोग में आने वाले मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी करते हैं। इसलिए कहते हैं, मसालों में सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का राज भी छिपा है। हल्दी, इसमें मौजूद कर्क्यूमिन में एंटी इन्फ्लामेंट्री यानी सूजन कम करने वाले तत्व

और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। जीरा और धनिया, ये दोनों पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं तथा शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में भी सहायता करते हैं। काली मिर्च, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी तेज करती है और सर्दी जुकाम से भी राहत दिलाती है। लौंग और दालचीनी, इनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। इस प्रकार सखियों, हमारे किचन में यूज होने वाले मसाले बहुत काम के हैं, पर हम कई बार काम से बचने के लिए बाजार से पैकेट बंद मसालों का यूज़ करने लग गए हैं जो कि हानिकारक केमिकल और आर्टिफिशियल रंग मिलाकर तैयार होते हैं। इसलिए सखियों, आप सब्जियों की सुंदरता की बजाय उसके स्वाद को बढ़ाने की कोशिश करते हुए थोड़ी मेहनत करके घर में पिसे हुए शुद्ध मसालों से अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए और परिवारजन और आने वाले सभी को खिलाइए ताकि सब सेहतमंद रहें, खुश रहें। और इसी के साथ सखियों, आप आने वाले त्योहारों का आनंद लेते हुए अपनी सखी निरंजना को दीजिए विदा लेने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा, ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे बलराम सिंह डांगी के गाए लोकगीत।

0: बलराम सिंह दांगी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।

0: फिर से घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए गीत।

स्वाति पाराशर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है अर्थ फिल्म से, आवाज़ जगजीत सिंह की, कैफी आज़मी का गीत और जगजीत सिंह का ही संगीत।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा बाजार फिल्म से आवाज़ भूपिंदर की, गीत वश्र नवाज का और संगीत खयाम का।

इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है।

0: थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ज्ञान मनुष्य को विवेक और समृद्धि प्रदान करता है और समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि ज्ञान से विवेक और समृद्धि मिलती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का विशेष अभियान चलाएगी। श्री नवीन ने कहा कि पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा की शुरुआत की थी और अब 25 साल पूरे कर रहे हैं। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री की सेवा, विकास और राष्ट्र निर्माण से जुड़े उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने कहा,
2: जो आम लोगों के जीवन में लाने का उनका प्रयास रहा है, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प। एक समय जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला तो पूरे देश में एक निराशा, एक अंधकार का माहौल था। पॉलिसी पैरालिसिस हम कह सकते हैं, हमारे इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे के तीसरे दिन प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ 1-to-1 बैठकें कर ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा, AI डेटा सेंटर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं, औद्योगिक जमीन, लॉजिस्टिक्स और नीतिगत सहयोग उपलब्ध है। उन्होंने जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को शामिल होने का न्योता भी दिया। प्रदेश में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर यह अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में बच्चों के पोषण, संतुलित आहार, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल और शुरुआती बाल विकास पर खास जोर रहेगा। 11 सितंबर से बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई मापकर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। साथ ही गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का 100% लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स पिछले 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में कमला पार्क के पास बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है और रास्ते को 1-वे किया गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आज दोपहर 12 बजे तक OPD बंद रही, हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने मरीजों को देखा। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी भारी या अति बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर 12 सितंबर से प्रदेश में दिख सकता है। 12 सितंबर को छतरपुर, पन्ना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व के वनरक्षक नवीन चंद्र मिश्रा को वन्य जीव एवं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित WWF अवार्ड 2024 के लिए चयनित किया गया है। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले के करेरा अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम बगेदरी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। कटनी के विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र में वैन का दरवाजा अचानक खुलने से 10 वर्षीय मासूम छात्र सड़क पर गिर गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

0: वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का, अपने बजट का पैसा आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे

0: वहां प्राप्त करते हैं।
1: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
2: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी।

0: आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है कामचोर फिल्म के इस गीत के लिए, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। इंदिवर का गीत और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट। गोला बाजार बक्सर से शधानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

अगली फरमाइश भेजी है जरूर वरुण महाराष्ट्र से, बाबा साहेब पाड़ोदे, मीनाक्षी, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल वर्मा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर रमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, बालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। आप सबने सुनना चाहा है महान फिल्म का ये नगमा, किशोर कुमार की आवाज़ में, अनजान का गीत और आर डी बर्मन का संगीत।

0: अगली फरमाइश भेजी है शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, हिना कौसर और सरदा रानी। छाबड़ा ज़िला बारा से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सब ने पसंद किया है महेंद्र कपूर का गाया हुआ निकाह फिल्म का ये गीत। हसन कमाल के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है रवि ने।
1: न जाने कहां फिर मुलाकात हो क्योंकि

0: ये अर्पण फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ों में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हर्षित वंश बत्ता और 40 गांव जिला जलगांव महाराष्ट्र से पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, आरती, नीरज ठाकुर, नव्या ठाकुर, तुषार, गोविंद ठाकुर, ध्यान ठाकुर, श्याम ठाकुर, मनकर्णा ठाकुर, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी।
1: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
2: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था।
0: और साथ ही फरमाइश भेजी है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी धोनी गवाणकर परी ने।
1: तो बर्फ पिघल कर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं?

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए प्रेम रोग फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। संतोष आनंद के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, ज़िला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां, जरीना, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोज़मीन, तैमूर भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजू भाई तड़वी, सनी बाबू, परूब तड़वी एवं समस्त तड़वी परिवार, वृंदावन नगर मलकापुर से कैलाश निम्बालकर, राधे, मोहिनी निम्बालकर, दिनकर निम्बालकर, राहुल निम्बालकर, सरला निम्बालकर, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ज्ञान मनुष्य को विवेक और समृद्धि प्रदान करता है और समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि ज्ञान से विवेक और समृद्धि मिलती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का विशेष अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे के तीसरे दिन प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्योग समूह के साथ 1-to-1 बैठकें कर निवेश पर चर्चा की। प्रदेश में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर यह अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में बच्चों के पोषण, संतुलित आहार, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल और शुरुआती बाल विकास पर खास जोर रहेगा। प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स पिछले 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में कमला पार्क के पास बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 186.32 मीटर, साथी डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर, यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 और रात 8:15। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

का शाम 6 बजे 7:21 का समय कार्यक्रम ग्राम सभा का होगा, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर देवेंद्र पाटिल से ली गई भेंटवार्ता। विषय है रबी सब्जी वर्गीय फसलों की रोपणी कैसे तैयारी करें। 8 बजे सुनिएगा सुर्खियों में चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे सुनिएगा लेखक अजीमुद्दीन का लिखा नाटक भोर का सूरज, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे हाफिज अहमद खान का ख्याल गायन, राग होगा सिंदूरा और तिलक कामोद। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे बलराम सिंह डांगी के गाए लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। डीटीएच पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। सुगम संगीत में सुनिए स्वाति पाराशर के गाए गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

स्वाति पाराशर के गाए इस नगमे के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। हम आकाशवाणी डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत आखिर क्यों फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर, अमित कुमार और साथियों की, इंदिवर का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

आशा भोसले और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में सुनिए लावा फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आपके साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे के तीसरे दिन प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्योग समूह के साथ 1-to-1 बैठकें कर निवेश पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ज्यादा व्यस्त रहने वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। इनमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली के प्रोजेक्ट शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 1 महीने का विशेष अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि सहकारिता से भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और लाखों पशुपालक किसानों के जीवन में समृद्धि का नया अध्याय लिखने में डॉ. कुरियन का योगदान अविस्मरणीय है। और प्रदेश में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर यह अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में बच्चों के पोषण, संतुलित आहार, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल और शुरुआती बाल विकास पर खास जोर रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल, लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां। आज का ये कार्यक्रम कव्वालियों पर आधारित है, महफिले समा।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में महफिल समा सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे सूफ़ी रिवायत में मोहब्बत, अमन और भाईचारे की, और साथ ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की कव्वालियों से। अज़ीज़ दोस्तों, तसव्वुफ़ कहता है कि खुदा एक है, उसकी नज़र में उसके सारे बंदे एक हैं। परवरदिगार से मोहब्बत ही इंसानी ज़िंदगी का मकसद है और मोहब्बत ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इंसान इस मोहब्बत को पा लेता है उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत

दोस्तों, अभी आप गुलूकार माजिद शोला की जादुई आवाज़ में कव्वाली समात फरमा रहे थे। सामईन, हमारी बातचीत का मौजू था सूफी रिवायत में मोहब्बत, अमन और भाईचारा। इंसानी समाज और जंगल राज में ये वाज़े फ़र्क है कि इंसानी समाज का एक दस्तूर होता है, जबकि जंगल में कोई कानून नहीं चलता। हर ताकतवर जानवर कमज़ोर जानवर को खा जाता है, मगर इंसानी माशरे में ऐसा नहीं चल सकता। इंसान को बकाए बाहम के दस्तूर पर चलना होता है और जियो और जीने दो के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ये हक पूरे मुहज्जब समाज का है, इसके बगैर को

अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां, ये DTH पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए धारावाहिक जमुनिया की 22वीं कड़ी संग्रहालय के अंतर्गत।

जमुनिया पढ़ लिख कर गाँव की सरपंच हो गई है और गाँव में जरूरी सभी साधन जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सड़क इत्यादि सुविधाओं के लिए रात दिन एक करके उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। और अब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, गाँव में साफ सफाई, इन सब के पीछे लगी हुई है। आज गाँव में ये सारी सुविधाएं आ गई हैं। अब आगे

0: जमुनिया भाभी, जमुनिया भाभी, प्रणाम प्रणाम जमुनिया भाभी।
1: हाँ करण, कहो।
0: भाभी भाभी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: संकोच की कोई बात नहीं, कहो।
0: भाभी, आज सालों हो गए आपको घर छोड़े हुए, जो सारी मेरी गलती थी, पर अब मैंने उस घर को आपके रहने लायक बना दिया है, और वो खेत जो भी आप बना गए थे उसमें मैंने बहुत अच्छी फसल तैयार की है। आपकी देवरानी भी बहुत खुश है। हम दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि अब आप अपने घर चलिए, उसे संभालिए, और इस नादान को दिल से माफ कर दीजिए भाभी।
2: हाँ जमुनिया बहन, ये सही कह रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए।
0: चलिए भाभी।
1: देखो, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, रही बात घर आने की, तो ये पूरा गांव ही मेरा घर है। मैं कभी भी आ सकती हूँ, उसकी चिंता तुम मत करो। अच्छे आदमी बनो और मेरी देवरानी को प्यार से रखो। मैं जरूर आऊंगी किसी दिन।
0: ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। आओ।
2: नमस्ते जमुनिया बहन।
1: नमस्ते
3: जमुनिया। तुम्हें पता है
1: क्या,
3: गोलू कलेक्टर हो गया है और चिरैया डॉक्टर।
1: मुझे तो बहुत दिन हो गए पता हुए, पर आज आप ये इस तरह क्यों कह रहे हैं?
3: कई बार जब सच्ची घटना पर यकीन नहीं होता तो हम अपने बदन पर चकोटी काट कर उसे सत्यापित करते हैं। हाँ, ठीक उसी तरह गोलू और चिरैया यानी तेजस्व और उपस तुम्हारी सोच के परिणाम है, और मैं नहीं समझता कि इसमें तुमने कोई ख्वाब देखा और या कोई उम्मीद बनाई है। तुमने तो बस अपना सबसे अच्छा जीवन को दिया और जीवन ने प्रतिफल में तुम्हें ये सब हासिल कराया, और सोच सोच कर मुझे खुद पर भी नाज होता है कि मैंने तुम्हारे साथ जीवन जीने की इच्छा की और आज उसे पूरी भी की।
1: पर लगता तो सपने जैसा ही है ना?
3: हाँ, वो तो है।
2: देखो भैया, सरकार हमारे लिए कितना कुछ करती है और हम हैं कि उसको कोसते ही रहते हैं।
4: ठीक कह रही हो बहन, बिल्कुल सही कहा तुमने। हम लोग कितना कुछ सरकार को कोसते रहते हैं, ये तो कितनी नाइंसाफी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
2: सही कहा बहन आपने।
4: जमुनिया के बच्चों ने कितनी तरक्की कर ली।
2: हाँ ये तो है।
4: अब गांव आएगी तो डॉक्टर बन के आएगी।
2: हाँ।
4: और कितने लोगों का इलाज करेगी वो।
2: सही कहा बहन आपने। अब देखो कहाँ जाती है, क्या करती है, सुनी है कि आने वाली है।
4: हाँ,
2: पता नहीं कैसे दिखती होगी अब वो, अब बड़ी भी हो गई होगी ना।
4: हाँ सही कह रही हो।
1: बाबा क्या कर रहे हो?
5: अरे बेटा, करना क्या है, बस आने वाले समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब अपने बच्चे यहाँ आएंगे और गांव को बताएंगे कि वे क्या बन गए हैं, अरे मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जब मेरा पोता इस गांव का कलेक्टर बनकर आएगा और हम सबको प्रणाम करेगा। हाँ
1: बाबा। हाँ। इतनी सी बात नहीं है, हमारी सोच में ये भी होना चाहिए कि ये केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे गांव की उपलब्धि है और हम सबको उन पर नाज है।
5: हाँ बेटा ठीक है, चल मैं जरा हाथ होके आता हूँ बिटिया।
1: हाँ बाबा ठीक है।

0: हासिल किया है। हाँ, और हम सब ने उसे हासिल करते हुए देखा भी है। मेहनत करो तो सब कुछ।
1: नहीं, सही बात है, बहुत मेहनत करी,
0: मेहनत करी बात है।
1: और अभी जयंत बाबू भी आए हैं, दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं।
0: मेहनत कर रहे हैं, गांव की तो सूरत ही बदल।
1: अरे बिल्कुल, दोनों के।

0: जमुनिया, क्या सोच रही हो? क्या कोई समस्या आ गई है?
1: नहीं, कोई समस्या नहीं है। बात इतनी सी है कि बच्चे पढ़ लिख गए, अब इनकी शादी ब्याह का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग क्या करेंगे?
0: अरे हमें क्या करना है, बच्चे खुद कर लेंगे। हमने किसी से पूछा था क्या?
1: आप पीना।

0: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम बेटा, क्या बात है जवनिया, अचानक तुम्हारे अंदर फिर से पढ़ने की इच्छा तो नहीं जाग गई?
0: इच्छा सोई ही कब थी गुरुजी, ये तो इतने सारे काम फैले थे कि इस इच्छा को रोकना ही पड़ रहा था। आज थोड़ा समय मिला तो मन हुआ कि गुरुजी को जाकर फिर से प्रणाम करें और उनसे कुछ सबक लें।
1: अरे अब तो सारा गांव तुझसे सबक ले रहा है बेटा, तूने थोड़े ही समय में इस गांव की किस्मत बदल दी। जिस स्कूल में बैठा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसके लिए सरकार ने कुछ अलग से तो किया नहीं, पर उसी सरकार की दी हुई योजना को पूरा करके बेटा तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा नेक काम किया है। आज ही इतने बच्चे कल के उदयमान सितारे हैं बेटा, और इस गांव के आने वाले समय की तकदीर। बताओ बताओ भला आज क्या पढ़ना चाहती है तू
0: गुरुजी?
1: हाँ,
0: आपको याद है जब आपने शुरू शुरू में मुझे पढ़ाया था, तब मैंने आपसे पूछा था ये तनाव कितनी बुरी चीज है। तब आपने मुझसे संकेतों में समझाया था कि तनाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन यदि नियंत्रण में हो तो जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। मैंने तब आपसे और स्पष्ट करने को कहा था, तभी आपने कहा था कि समय आएगा तो किसी दिन वो भी समझाऊंगा। उसके बाद लंबा समय बीत गया, मैं गांव को लेकर व्यस्त रही और आप बच्चों को पढ़ाते रहे। गुरुजी, क्या आज आप बताएंगे?
1: अच्छा अच्छा तो चलो आज इस विषय को स्पष्ट कर ही देते हैं बेटा। देखो, तनाव जब बहुत बढ़ जाता है तो चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, खुद से नियंत्रण खत्म हो जाता है, और अगर तनाव ना हो तो हमारे काम करने की, आगे बढ़ने की इच्छा भी कम हो जाती है। इसीलिए एक जरूरी तनाव तो होना ही चाहिए। उदाहरण धनुष का ही ले लेते हैं। अगर धनुष ढीला है, तनाव नहीं है, तो फिर उससे तीर छूटेगा ही नहीं और तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और यदि तनाव बहुत ज्यादा है तो तीर खींचते ही धनुष टूट जाएगा।
0: तो फिर
1: संतुलित तनाव ही इसका हल है। धनुष पर आवश्यक तनाव ही बाण को चलाने में सहायक होता है, और अगर ऐसा हो तो ही आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे।
0: वाह गुरुजी, तनाव का आज

0: इतना अच्छा प्रयोग और स्पष्टीकरण पहली बार समझ में आया। जीवन में तनाव ना हो या बेहद तनाव हो, दोनों ही खतरनाक है। संतुलित तनाव से ही जीवन आगे बढ़ता है। वाह,
1: और कुछ?
0: अब गुरुजी, ये सवाल मेरे दिल में बहुत दिनों बाद फिर आया था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। इसके अलावा यदि आप कुछ मुझे सीख देना चाहें, समझाना चाहें, तो बताइए, मैं सीखने को तैयार हूं।
1: भाई एक काम करते हैं जमुनिया, के अभी मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना है
0: जी,
1: इसलिए तुम्हारे लिए एक दिन किसी छुट्टी के रोज एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे हैं।
0: हाँ गुरुजी।
1: और तब जीवन के कुछ दूसरे पहलुओं पर तुमसे बात करेंगे।
0: बिल्कुल अच्छा।
1: ठीक है,
0: ठीक, मैं चलती हूँ। अच्छा गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी
1: प्रणाम। प्रणाम।

0: अरे भैया, इस अस्पताल में अभी कितने मरीज हैं और उनके लिए कोई इलाज वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं?
1: कल शाम शहर से डॉक्टर आई है मैडम, रात भर मरीजों को देखा और आज सुबह ही शहर चली गई। अब ज्यादा नहीं, यहाँ तो केवल 3 मरीज हैं। और हाँ, वे एम्बुलेंस आने वाली है, उनको शहर लेके जाएगी।
0: ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: राम राम पोस्ट मास्टर साहब, कैसे हैं?
1: राम राम जमुने जी, अच्छे हैं।
0: हमसे कुछ चाहिए तो नहीं? कोई परेशानी हो तो बतलाइएगा। खाता खोलने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेंडिंग तो नहीं है?
1: नहीं नहीं जमुनिया जी, कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। और जहाँ तक ज़रूरत का सवाल है, वो तो हमारे कहने से पहले ही आप पूरी कर देती हैं।
0: ये सब हम लोगों का अपना ही काम तो है। चलती हूँ। राम राम।
1: राम राम।

0: राम राम मैनेजर साहब।
1: नमस्कार नमस्कार जमुनिया जी।
0: बैंक का कामकाज तो ठीक से चल रहा है
1: जी? हमारा तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, आप सुनाइए पंचायत की।
0: नहीं सब बढ़िया है वहाँ पर भी। राम राम मैनेजर साहब।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: बैंक का कामकाज तो ठीक से चल रहा है ना?
1: जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, और चिंता की तो कोई ऐसी बात है नहीं।
0: और कोई जरूरत हो तो बताइएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
1: जी जी।
0: और जो खाते के प्रार्थना पत्र हैं
1: जी,
0: उन सब पर खाता खुल गया या कुछ बाकी है?
1: नहीं नहीं, खाता तो कोई बाकी नहीं है, सब ठीक चल रहा है और अब हमें किसी तरह की कठिनाई भी नहीं है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो मैं चलती हूँ
1: जी।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: भाई, एक चाय पिला दे।
1: अरे आओ भाई साहब, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। मैं अभी अभी दे दूँ गरम गरम
0: हाँ
1: चाय भाई
0: भैया,
1: साहब।
0: अदरक डाल देना
1: आओ
0: थोड़ा।
1: अभी लगो।
0: और सुना, क्या हाल चाल है?
1: हाँ सब ठीक है भाई, सब तुम्हारी मेहरबानी है। देखो कितना सब बहुत बढ़िया होगा सब।
0: एक बात तो बताओ भैया,
1: हाँ पूछो।
0: ये जो एक बस यहाँ से सुबह शहर जाती है और
1: हाँ
0: दोपहर को आकर फिर लौट जाती है,
1: हाँ
0: और वही शाम को आकर यहाँ रुकती है, वो ठीक ठाक चल तो रही है ना?
1: अरे भाई बस वही ठीक चलती तो क्या बात थी, वही की तो परेशानी है।
0: क्या?
1: अरे बड़ी बड़ी लेट आते हैं भैया, कभी
0: हाँ
1: आए भी नहीं, कभी नहीं आए तो फिर वापस ही नहीं आए। तो ना लोग सवारी इंतजार कर रहे थे, परेशान हो रहे थे भाई, बहुत परेशानी हो रही है उससे। तो उसको कुछ करो भाई।
0: काय, क्या तुम लोगों ने पूछा नहीं, पता नहीं किया?
1: पूछा कितनी बार पूछो हैं, जब पूछो कभी ये बहाना बना दे तो कभी वो बहाना बना दे। अरे बहुत टाला बुटूली करे वो।
0: देखना पड़ेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ,
1: अरे तो
0: देखती हूँ क्या कर सकते हैं ना।
1: चाय तो पी जाओ।
0: आज चाय तो पी रही हूँ ना
1: हाँ
0: भैया।
1: हाँ हाँ अच्छा भाई चलो।
0: ये लो आपके चाय के पैसे।
1: अरे पैसा नहीं, पैसा नहीं लेंगे भैया, ये मत करो भाई।
0: अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आओ आओ
0: राम राम।
1: फिर आओ, आना फिर भैया।
0: हाँ।

0: क्यों जयंत बाबू, शहर वहर नहीं जाएंगे क्या?
1: हाँ, कोई काम तो है नहीं। हाँ, पर अगर तुम कोई काम दो तो जाकर करने में कोई संकोच नहीं है।
0: ये जो एक बस हम लोगों ने गांव से शहर के लिए लगाई है और ये सड़क उसी काम आती है। सुना है पिछले कुछ दिनों से एक आध फेरा मिस करने लगी है, वो पता लगाना है।
1: हाँ ठीक है, तो मैं शहर जाकर पता लगाता हूँ क्या गड़बड़ है और उसे नियमित करवाता हूँ।
0: ठीक।
2: नदियाँ बहते बहते कहती रुक न सके ये धारा।
3: जमुनिया बिटिया, सोच के कितनी हैरत होती है कि एक दिन तुम इसी घर के सामने बारिश में चिड़िया को लेकर बेहोश पड़ी थी, और अगर बिजली न चमकती तो कोई देख भी नहीं पाता कि इसमें जमुनिया और चिड़िया है। वही गांव, वही घर साफ सुथरा, अब कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वहां खटंजा लग गया है। अरे चारों तरफ जगह जगह अच्छे साफ पानी के हैंड पंप लगे हैं, और रात को एक बत्ती कनेक्शन हमारे झोपड़ों में उजाला लेकर आए हैं। अब तो बिटिया, हम रात को भी अब डलिया बना सकते हैं बिटिया।
0: हाँ बाबा, सोचकर तो मैं भी चकित हो जाती हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी कहाँ पता था कि क्या क्या और कैसे कैसे होता है। बस मैं तो समय की बहती हुई धारा में कूद पड़ी थी, और धीरे धीरे घाट दर घाट जीवन बीतता गया और गांव की तरक्की रंग लेती रही। आज तो मन सोचने लगा है कि और क्या क्या किया जा सकता है।
3: बहुत कुछ किया जा सकता है बिटिया अभी भी।
0: जैसे?
3: जैसे तुमने इस गांव में पापड़, अगरबत्ती, हर इस सिलाई के छोटे छोटे सेंटर बनाए, वैसे ही ये जो डलिया पंखे हम लोग बनाते हैं ना,
0: हाँ,
3: इनका भी एक, वो क्या कहते हैं उसको, वो कॉपरेटिव बन सकता है, जिसे हम शहर के किसी बड़ी दुकान के मार्फत बेच भी सकते हैं बिटिया।
0: अच्छा
3: है?
1: देखा जमुनिया, बाबा कितने बड़े काम की बात कर रहे हैं। जमुनिया, तुम कुछ लोगों को मिलाकर बांस के जो इस तरह की चीजें बनती है ना, थोड़ा और साफ सफाई के साथ बनाकर तैयार करो।
0: अच्छा
1: हाँ, और मैं शहर के किसी कॉपरेटिव स्टोर से बात करता हूँ,
0: ठीक,
1: ताकि इन चीजों के अच्छे पैसे मिल सके और हमारा सामान दूर दूर तक जा सके।
0: बिल्कुल जयंत जी, ऐसा ही होना चाहिए।
1: बाबा,
3: हाँ बोलो बेटा,
1: आपके मन में ये कॉपरेटिव का विचार कहाँ से आया?
3: अरे कुछ नहीं, बस एक दिन मैं किसी को बात करते सुन रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, तभी से सोच रहा हूं कि तुमसे बात करूं मैं।
1: हाँ, पर मुझे हैरत हो रही है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई।
0: चलिए कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा।
1: हाँ

0: हाँ भाई आ गए तुम लोग।
1: हाँ मालिक।
0: चलो सुनो हमारी बात भाई।
2: हाँ भाई।
1: हाँ मालिक।
0: भाई तुम लोगों ने अब तक हमारा बहुत साथ दिया।
1: हाँ मालिक।
0: जैसा कहा जब कहा किया तुम लोगों ने भैया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे अरे धन्यवाद कैसा मालिक है नहीं।
0: पर भैया सच बात तो ये है कि समय आ गया है कि अब तुम लोग हमारा साथ छोड़ दो। सही कह रहे भैया। सुनो तो कायदे से इतने लोगों की अब इसे हवेली

0: जरूरत नहीं है ना।
1: आप
0: नहीं नहीं जाने के जिस काम के लिए तुम लोगों को अभी तक रखा था उसे तो जमुनिया ने खत्म ही कर दिया भाई। सच बात तो यही है, सच बात ये है कि अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है।
2: पर मालिक इतना सारा काम,
0: सुनो
1: और हम कहते जाएं फिर मालिक
0: ने बता रहे ना भैया, तुम लोग ऐसा करो
1: काम भी कोई नहीं दे हमको।
0: अरे रे रे जाओ,
1: नाम बदनाम होगा।
0: जो भट्टा है ना भट्टा, भट्टे पे जाकर काम से लगो और ना हो तो एक और भट्टा खोल देते हैं।
1: हाँ जी ऐसे तो होता
0: है, ठीक है ना। तो सुनो ये तय हुआ कि इस हवेली पर बहुत हुआ तो एक या दो लोग ही रहेंगे, ठीक।
2: पर मालिक इतना सारा काम तो जहाँ है एक आदमी से कैसे होगा।
0: अरे भैया यार देखो भैया वो देखना हमारा काम है, बस कहीं ना एक दो लोग रुको यहाँ, बाकी भट्टे पर जाके लगो।
1: सही बात है,
0: और भट्टे का नया साइट भी देख लो, हम भी कोई इंतजाम कर देंगे ना। अरे कम से कम कुछ आमदनी बढ़े भैया।
1: हाँ जे तो है।
0: सच्ची बात ये है कि फालतू के कामों में लगने से कोई फायदा नहीं होता, ससुरी नाक बेवजह करती है।
2: हाँ जे भी है।
0: हाँ भाई लोगों अब हमारी समझ में आ गया कि ये सब गड़बड़ हमारे सोच में ही थी। अरे हम सोचते थे कि डरा कर दुनिया पर अपनी धौंस कायम रखेंगे, पर सच्ची ईमानदार और मेहनती जमुनिया ने हमारी सारी चालों का काट निकाल दिया। हाँ भैया सही कह रहे हैं, इसलिए अब अकलमंदी इसी में है कि हम भी कमा धमा कर अपने आप को व्यस्त भी रखें और संपन्न भी बनाएं। काय ठीक है ना,
2: जैसी आपकी इच्छा मालिक।
0: तो पर ठीक है, शाबाश, जाओ जाके भट्टा संभालो और घर के काम के लिए दो ही लोग बहुत, ठीक।
2: जी तो मालिक मैं इतना ही रुकूंगा।
0: अरे ठीक है तू यहाँ रुक जा। हाँ
3: मालिक हम चले मालिक। राम राम मालिक।
0: राम राम भैया राम, जाओ सुखी रहो।
4: तुझको चलना है, तुझको चलना है, तुझको चलना है।
5: घर में जमुनिया भी नहीं है, झुल्लन बाबा भी नहीं, कहाँ चले गए सब सुबह सुबह। चलो आज खुद ही चाय बनाता हूँ।
6: अरे अरे रहने दीजिए जयंत बाबू।
5: अरे जमुनिया
6: चाय भाई आपके बस की बात नहीं है, मैं बना देती हूँ, आप बैठिए।
5: पर ये बताओ आप सब लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए थे।
7: अरे जरा मंदिर चले गए थे बेटा। हाँ बहुत दिन हो गए थे ना हम लोग मंदिर नहीं गए थे, थोड़ा सा सुबह जाने से मन को बड़ा अच्छा लगता है और आत्मा को बल भी मिलता है, इसलिए हुआ है बेटा हम लोग।
5: अच्छा क्या हा? बाबा पर और कोई खास बात।
6: मानो तो खास ही है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आपको तो पता ही है कि आज गोलू और चिरैया गांव लौट कर आ रहे हैं।
5: हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है।
7: मैं तो सोचकर ही प्रसन्न हूँ। हाँ कितना अच्छा लग रहा है कि गोलू और चिरैया, उसका क्या तो नाम दिया था वो जयंत बाबू, वो गुरुजी ने क्या क्या नाम दिया था,
5: तेजस और रूपस।
7: हाँ लगता ही नहीं है ये अपने गोलू और चिरैया का नाम है।
6: बात तो सही है बाबा, पर अब तो वो भी अपने आप को तेजस और रूपस ही समझते होंगे। गोलू और चिरैया हमारे लिए हैं। ये लीजिए जयंत बाबू चाय, और बाबा
7: हाँ
6: ये आपकी,
5: और तुम भी लो जमुनिया, एक साथ पीते हैं हम लोग, आओ बैठो।
6: अच्छा आती हूँ। हाँ
5: चाय तो आज तुमने बहुत अच्छी बनाई जमुनिया।
6: अच्छा अच्छी तो हम रोज ही बनाते हैं, पर आप ध्यान ही नहीं देते।
5: नहीं रोज इतनी अच्छी चाय नहीं बनती।
6: अच्छा
7: अच्छा आप लोग लड़ो मत बेटा। हाँ बिल्कुल।
5: अरे बाबा लड़ कौन रहा है, हम लोग तो खाली आपस की नोक झोंक का मजा ले रहे हैं। अब बूढ़े जो चले हैं।
6: अच्छा फिर बूढ़ा कहाँ, मुझे बाबा देखो ना।
7: नहीं नहीं लड़ो मत हम लोग।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 22वीं कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की ये खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनकी कुल लागत 10,783 करोड़ रुपए है। इनमें खड़गपुर झार सुगुंडा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसा नायके से मुलाकात की और दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। 3 दिन से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों की सरकार से सहमति बन गई है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अब इंटर्न डॉक्टर को 21,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, यानी सरकार ने करीब 50% बढ़ोतरी की है। भारत इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। और प्रदेश में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर यह अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में बच्चों के पोषण, संतुलित आहार, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल और शुरुआती बाल विकास पर खास जोर रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के अपने कार्यक्रम युववाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंशिका शर्मा और आज फिर हाजिर हूं एक ऐसी चर्चा के साथ जो शायद आज के हर युवा के कमरे में, हर कॉलेज की कैंटीन में, हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी के मन में और हर माता पिता की बातचीत में कहीं ना कहीं मौजूद है। एक सवाल, आखिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक अच्छी सी डिग्री या एक बेहतरीन हुनर? कभी कहा जाता था दोस्तों, बेटा पहले पढ़ाई पूरी करो, अच्छी डिग्री लो, फिर नौकरी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन आज का युवा शायद पूछ रहा है, डिग्री तो ले ली लेकिन अब आगे क्या? आज कंपनियां कहती हैं हमें डिग्री से ज़्यादा स्किल चाहिए और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था भी हमें यही समझाती है कि पहले डिग्री हासिल करो क्योंकि वही तुम्हारी शैक्षणिक पहचान है। दोस्तों, तो फिर सवाल यही है, क्या डिग्री पुरानी हो गई है या हुनर ही आज की नई डिग्री है? असली सफलता इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा इसी सवाल की तलाश से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, आज की चर्चा को हम किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं देखेंगे कि डिग्री जीतेगी या हुनर, क्योंकि ज़िंदगी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ सिर्फ एक उत्तर सही होता है। कई बार ज़िंदगी में सही उत्तर होता है दोनों। डिग्री आपको दरवाजे तक पहुंचा सकती है और हुनर उस दरवाजे के अंदर आपकी जगह बना सकता है। तो आइए दोस्तों, इसी खूबसूरत विचार के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की विशेष चर्चा, हुनर बनाम डिग्री आज के समय में ज़्यादा क्या ज़रूरी। और इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसे गीत से क्यों ना हो दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि मंजिल सिर्फ सामने दिखाई देने वाली चीज़ नहीं होती, बल्कि उसे पाने के लिए रास्ते पर चलना भी ज़रूरी है।

डिग्री आखिर क्या है दोस्तों? डिग्री केवल कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे कई सालों की पढ़ाई होती है, कई परीक्षाएं होती हैं, कई बार असफल होने के बाद फिर से कोशिश होती है, कभी सुबह जल्दी उठना, कभी देर रात तक पढ़ना, कभी परिवार की उम्मीदें और कभी खुद से किए हुए वादे। इसलिए किसी की डिग्री को सिर्फ एक कागज़ कह देना भी सही नहीं होगा। डिग्री यह बताती है कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष विषय को एक निर्धारित स्तर तक पढ़ा है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है और किसी विशेष पेशे में जाना चाहता है, तो कई क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा और डिग्री बेहद ज़रूरी होती है। इसलिए दोस्तों, यह कहना कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी तरह सही बात नहीं है। लेकिन आज की दुनिया ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों, क्या सिर्फ डिग्री पर्याप्त है? और इसका जवाब है शायद नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हुनर की। हुनर यानी स्किल। हुनर वह क्षमता है जिससे आप अपने ज्ञान को वास्तविक काम में बदल पाते हैं। किसी ने कम्युनिकेशन

बहुत अच्छी तरह सीखी है, किसी को कोडिंग आती है, किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, कोई शानदार राइटर है, कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर है, कई लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाता है, कोई लीडरशिप में अच्छा है, किसी को एडिटिंग आती है, किसी को सिंगिंग आती है, किसी को एक्टिंग आती है। और कई बार दोस्तों, किसी इंसान का हुनर उसकी डिग्री से बिल्कुल अलग क्षेत्र में होता है। यही तो आज के समय की खूबसूरती है दोस्तों। पहले करियर का रास्ता बहुत सीधा माना जाता था, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, डिग्री, नौकरी। लेकिन आज रास्ते थोड़े ज़्यादा खुले हैं दोस्तों। अब कोई व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलैंसिंग कर सकता है, कोई अपने हुनर के माध्यम से छोटा सा काम शुरू कर सकता है, कोई कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, कोई अपनी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकता है। यानी आज अवसर केवल एक रास्ते से नहीं आते। लेकिन क्या डिग्री बेकार है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। और यहाँ हमें एक बात ज़रूरी समझना होगा, डिग्री और हुनर एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, असल में दोनों एक दूसरे के साथी हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके पास एक शानदार नक्शा है, लेकिन चलने के लिए क्षमता नहीं। तो नक्शा कितना भी अच्छा हो, आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ आपके पास बहुत ताकत है, आप बहुत तेज चल सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो आपकी मेहनत भी सही दिशा में नहीं जाएगी। कुछ ऐसा ही रिश्ता है, डिग्री दिशा दे सकती है और हुनर गति। डिग्री आपको ज्ञान का आधार दे सकती है, हुनर उस ज्ञान को इस्तेमाल करना सिखा सकता है। डिग्री आपको यह बता सकती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, हुनर आपको सिखाता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। एक छोटी सी कल्पना कीजिए दोस्तों, मान लीजिए दो युवा हैं। पहले युवा के पास शानदार डिग्री है, उसके अच्छे नंबर प्राप्त हुए हैं, उसकी मार्कशीट बहुत अच्छी है, लेकिन जब उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है अपने बारे में बताइए, तो वह घबरा जाता है। जब उससे कहा जाता है इस समस्या का समाधान बताइए, तो वह किताबों में पढ़ा हुआ उत्तर तो बता देता है, लेकिन उसे रियल लाइफ सिचुएशन में लागू नहीं कर पाता। दूसरी तरफ दूसरा युवा है, उसके पास शायद उतनी बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उसने अपने क्षेत्र में खूब अभ्यास किया है, प्रोजेक्ट्स किए हैं, गलतियाँ की हैं, लोगों से बात की है और काम किया है और सीखा है। और जब उसे रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है, तो वह कहता है मैं कोशिश करता हूँ, आप बताइए किसे अवसर मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। यहीं पर हुनर अपनी जगह बनाता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यह तुलना डिग्री को छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझाने के लिए है कि आज की दुनिया में सिर्फ यह बताना पर्याप्त नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है। कई बार आपको यह भी दिखाना पड़ता है दोस्तों कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब इस एक चर्चा का बेहद भावनात्मक पहलू है, हमारे समाज में आज भी एक युवा के अक्सर पूछा जाता है क्या पढ़ रहे हो, कितने प्रतिशत आए, कौन सी डिग्री कर रहे हो, नौकरी कब लगेगी। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हारा हुनर क्या है। और शायद इससे भी कम लोग पूछते हैं तुम खुश हो। लेकिन एक युवा की ज़िंदगी केवल एक CV और रेज्यूमे नहीं है। हर युवा की अपनी रुचि, गति, क्षमता और कहानी है। किसी को गणित पसंद है, किसी को कविता, तो किसी को मशीनें, किसी को कैमरे के पीछे रहना पसंद है, किसी को मंच पर बोलना पसंद है, और किसी को शायद अभी तक यह पता नहीं कि उसका असली हुनर क्या है। और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक गीत जो उम्मीद की बात करता है, क्योंकि करियर की यात्रा में कभी रास्ता साफ होगा, कभी मुश्किल, कभी लोग आपका साथ देंगे, कभी लोग आपकी मेहनत पर सवाल भी उठाएंगे, लेकिन उम्मीद हमेशा रास्ता दिखाती है।

दोस्तों, इस चर्चा में माता पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, और वाकई में दोस्तों, उनकी चिंता गलत नहीं है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित भविष्य पाए, इसलिए वे कहते हैं, अच्छी डिग्री लो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, कोई स्थिर करियर चुनो। इन बातों के पीछे प्रेम होता है, लेकिन समय बदल रहा है, इसलिए शायद आज माता पिता और बच्चों को एक दूसरे से एक नया सवाल पूछना चाहिए। माता पिता बच्चे से पूछें, तुम्हें किस काम में आनंद मिलता है? और युवा माता पिता से कहे, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, मैं बस अपने रास्ते को थोड़ा बेहतर समझना चाहता हूँ। दोस्तों, हमें एक और गलती नहीं करनी चाहिए। हमें यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन सा हुनर बड़ा है और कौन सा छोटा। अगर कोई काम को ईमानदारी से करता है तो यह भी हुनर है, क्योंकि आखिरकार हुनर केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं है, हुनर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा भी है। कई युवा अपने हुनर को सिर्फ इसलिए आजमाते नहीं क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। हर सफल व्यक्ति की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वह शायद दिखाना नहीं चाहता। असफल प्रयास, गलत फैसले, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, खराब इंटरव्यूज, अधूरे प्रोजेक्ट्स, लेकिन इन्हीं अनुभवों से स्किल मजबूत होती है। अगर पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि आप में हुनर नहीं है। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, आपको थोड़ा और अभ्यास चाहिए। अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, हुनर बनाम डिग्री आज के समय में क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे एक वाक्य में जवाब देना हो तो मैं कहूँगी, डिग्री ज़रूरी हो सकती है लेकिन हुनर आपको सक्षम बनाता है, और दोनों साथ हों तो आपकी संभावनाएं कहीं ज़्यादा मजबूत होती हैं। डिग्री आपको क्वालिफिकेशन दे सकती है दोस्तों, हुनर आपको कैपेबिलिटी देता है। डिग्री बता सकती है कि आपने क्या पढ़ा, हुनर दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं, और अनुभव बताता है कि आपने वास्तव में कितना सीखा। दोस्तों, आज की इस चर्चा से 5 बातें अपने साथ लेकर ज़रूर जाइए। डिग्री को कम मत समझिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ उसे पूरी मेहनत से हासिल कीजिए। केवल डिग्री पर निर्भर मत रहिए, अपने क्षेत्र

से जुड़े हुनर विकसित कीजिए। कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी सॉफ्ट स्किल्स को नज़रअंदाज मत कीजिए। दूसरों से तुलना कम और खुद से सवाल ज़्यादा कीजिए। सबसे ज़रूरी, सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में शायद सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। मैं अभी सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। और अब हमारी चर्चा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन समाप्त होने से पहले एक ऐसा गीत सुनते हैं जो ज़िंदगी को एक सफ़र की तरह देखने की खूबसूरत याद दिलाता है। क्योंकि करियर हो या ज़िंदगी, मंजिल ज़रूरी है, लेकिन रास्ते भी कम खूबसूरत नहीं होते।

नाम डिग्री आज के समय में क्या ज़्यादा ज़रूरी, को यहीं विराम देते हैं। मैं हूँ अंशिका शर्मा और आप सुन रहे थे युववाणी। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। हो सकता है आपकी मंजिल अभी आपको दिखाई ना दे, लेकिन आपका अगला कदम आपके हाथ में ज़रूर है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने हुनर को निखारते रहिए और सबसे ज़रूरी, एक अच्छे इंसान बनते रहिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच और नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:30 होने को हैं। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

0: है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय हो रहा है शाम के 5:33। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो

श्रेया घोषाल की आवाज़ में। ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुष्पा 2 द रूल से। रकीब आलम के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था देवीश्री प्रसाद ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाज़ों में। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, सचिन जिगर का।

वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाज़ों में इंद्रनील का लिखा यह गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। धुन बनाई थी सचिन चिगर ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म स्त्री 2 का ये गीत। विशाल मिश्रानी की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म मुंजिया से, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और सचिन जिगर का संगीत।

0: मिस्टर एंड मिसेस माही। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद फैज़ की आवाज़ में, जानी और समीर अनजान के बोल, साथ ही जानी और आदेश श्रीवास्तव का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: प्यार होता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10,700 करोड़ रुपए से

अधिक लागत के 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में फैली है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष सांची बोध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय मंगूभाई पटेल ने पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विमलेंद्र कुमार को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। सरकार ने आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों की वर्तमान स्टाइपेंड में 50% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब इंटर्न डॉक्टरों को 21,500 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। सरकार के फैसले के बाद इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। प्रदेश में मॉनसून की अच्छी बारिश का मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की जल विद्युत इकाइयों को सीधा लाभ मिला है। कंपनी के जल विद्युत गृह ने अगस्त में निर्धारित 339 मिलियन यूनिट के मुकाबले 380.90 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लक्ष्य से करीब 42 मिलियन यूनिट अधिक उत्पादन दर्ज किया। देश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी भारी अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी

दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी। उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
8: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
7: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
8: हाँ, अब बन गई रेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
8: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
9: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
8: हाँ, दादाजी ये ठीक रहेगा।
9: चलो
6: रेल चली भाई रेल चली,
9: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
7: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
9: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
7: अच्छा
9: अच्छा, अब ये बताओ तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
8: दादाजी मैंने देखी है।
9: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
8: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
9: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
7: अरे वाह।
9: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
7: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
9: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
10: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
9: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
10: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
9: बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है। उतरो उतरो।
8: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
9: हाँ हाँ उतरो बेटी।
5: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
7: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
9: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा। कुछ जाने वाले हैं।

0: ये बात है।
1: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
3: ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
0: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
3: अच्छा।
0: अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
0: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
2: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। कुकू कुकू कुकू कुकू कुकू सीटी बजाती है। कुकू कुकू कुकू कुकू कुकू सीटी बजाती है। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो सब

सीटी बजाती है, इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत। समीर की शब्द रचना, अनु मलिक का संगीत और इस गीत में आप आवाज़ें सुनेंगे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जयदीप सहानी ने, संगीत है विशाल शेखर का और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सलाम नमस्ते से।

से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

शंकर महादेवन, सौम्या रॉय और लॉय मेंडोंसा की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बंटी और बबली से। गुलजार ने इस गीत को शब्द दिए और संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म काल से। कुणाल गांजावाला, रवि खोटे, कैरा लीसा और सलीम की आवाज़ें हैं। सलीम सुलेमान का संगीत और शब्बीर अहमद की शब्द रचना। आइए सुनते हैं।

फिल्म कल हो ना हो का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को गाया था वसुंधरा दास, के शान और लॉय मेंडोज़ा ने, जावेद अख्तर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने

कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने दो और लोगों को जबरन गायब कर दिया है।

0: कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अजीमुद्दीन का लिखा नाटक भोर का सूरज। प्रस्तुति होगी जितेंद्र स्वरूप राजन की। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर सुनिए हाफिज अहमद खान का ख्याल गायन। राग होगा सिंधुरा और तिलक का मोहत। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी गुरुवार 10 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 9:02 पर आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे अरविंद कुमार टांक की गायी गजलें। तबले पर संगत देंगे मोहम्मद समी और वायलिन पर होंगे पंडित महेश मलिक। नौ बजकर 30 मिनट पर सुनिए डॉक्टर हामिद हुसैन का लिखा और राकेश ढोंडियाल द्वारा प्रस्तुत रेडियो नाटक लालच का बंदा। सुबह 10:05 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत सागर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 23वां अंक आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर के योगदान से प्रसारित होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण शाम 7:30 पर किया जाएगा। और रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। श्रोताओं, ये थे कल यानी 10 सितंबर 2026 गुरुवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी। भारत मंडपम में 12-13 सितंबर को होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से की मुलाकात। और प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्टाइपेंड बढ़ाकर 21,500 रुपये किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज 10,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में 656 किलोमीटर से ज्यादा रेल नेटवर्क बढ़ाएंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इनसे रेल संचालन सुचारू होगा और भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के 4 राज्यों में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि सरकार 7 हाई डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। श्री वैष्णव ने बताया,
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। भारत की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। शनिवार को ब्रिक्स देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत इनोवेट्स एग्जीबिशन भी देखेंगे। वहीं रविवार को साझेदार और आमंत्रित देशों के नेता सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वैश्विक विकास, आर्थिक सहयोग और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन होगा। सम्मेलन के दौरान व्यापार, वित्त, तकनीक, ऊर्जा, सुरक्षा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 साल पूरे करेंगे। उन्होंने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ अपनी सेवा यात्रा को आगे बढ़ाया है। अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों से होगी और 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी। सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें अलग अलग सेवा गतिविधियां जनभागीदारी के साथ आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर यह अभियान 8 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान में बच्चों के पोषण, संतुलित आहार, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल और शुरुआती बाल विकास पर खास जोर रहेगा। 11 सितंबर से बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई मापकर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। साथ ही गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का 100% लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब वक्त समाचारों में एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल के मुताबिक बंडा क्षेत्र में हुई इस घटना में 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर

0: कार्रवाई की गई है और अवैध शराब के नेटवर्क की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का 6 से 8 सितंबर तक का दुबई दौरा प्रदेश के लिए निवेश के लिहाज से अहम रहा। दौरे में प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस रहा और 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री ने डीपी वर्ल्ड, जेम्स एजुकेशन, शराफ ग्रुप, राणा होल्डिंग्स समेत कई बड़ी कंपनियों से निवेश और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा की। यूएई का प्रतिनिधिमंडल पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी निवेश की संभावनाएं तलाशने प्रदेश आएगा। वहीं विश्व बैंक ने एआई और डिजिटल गवर्नेंस में सहयोग में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का न्योता देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब निवेश के साथ तकनीक, बाजार, रोजगार और ग्लोबल सप्लाई चेन को जोड़ने पर काम कर रहा है। 3 दिन से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों की सरकार से सहमति बन गई है। देश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अब इंटर्न डॉक्टरों को 21,500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, यानी सरकार ने करीब 50% बढ़ोतरी की है। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है और जांच की टीम बनाई गई है। श्री शुक्ल ने कहा,
1: और इस चर्चा में एमटीए जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जो बातचीत कर रहे थे उसका समाधान बहुत ही अच्छा निकला है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी और इनके स्टाइपेंड को 50% बढ़ाने का निर्णय हमने किया है और सारे छात्रों में काफी संतोष है और हर्ष का माहौल है, ये आप देख सकते हैं।
0: प्रदेश सरकार 11 और 12 सितम्बर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट आयोजित करने जा रही है। समिट में विशेषज्ञों और निजी ऑपरेटरों के साथ प्रदेश की परिवहन व्यवस्था का रोडमैप तैयार करने पर चर्चा होगी। इसमें 75% ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। भोपाल में आज विश्व ईवी दिवस के मौके पर विशाल इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली निकाली गई। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मैनेट के तकनीकी सहयोग से इस रैली का आयोजन किया। खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने गणेश उत्सव के दौरान लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव आस्था और परंपरा का पर्व है जिसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि मिट्टी की प्रतिमाएं जल स्रोतों के प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं।
2: हम प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक मिट्टी के गणेश का ही उपयोग करें। पीओपी से बनने वाली जो मूर्तियां पर्यावरण के लिए ये बहुत ही हानिकारक है, ना केवल उससे हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है बल्कि जो हमारी एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ है, हमारी मछलियां हैं, उनको भी बहुत क्षति पहुंचती है। दूसरा, ये पीओपी की मूर्तियों पे उपयोग होने वाले हार्मफुल टॉक्सिकल केमिकल्स जो होते हैं उनका भी हमारे मानव जीवन पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है।
0: अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 11 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी भारी अति बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जिसका असर 12 सितंबर से प्रदेश में दिख सकता है। 12 सितंबर को छतरपुर, पन्ना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा, नलखेड़ा और सुसनेर न्यायालय परिसर में 12 सितंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नीमच जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध जिला आबकारी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सघन कार्रवाई की गई। रायसेन जिले में टिकोदा के पास रायसेन से गैरतगंज जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कटनी जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुरैना में संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण की मां तुझे प्रणाम योजना वर्ष 2026-27 के तहत जिले के युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले के बदरवास विकासखंड मुख्यालय में संचालित 2 अवैध क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को सील कर दिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले हमारे सभी भैया हरन को भौजी बिन्ना हरन को आरती की राम राम। और भैया हरो कैसे का हाल चाल है आप औरन के? अब देखो भैया हरे, बरसात की बात करें तो तनक थमसी गई है और अब तो भैया देखो हम सबको अपने काम धंधा में फिर से लग जाने हैं। तो भैया जो सितंबर को जो महीना जो चल रहा है तो भैया वो अपनी खरीफ फसलें जो अपन ने बोई है तो उन पे जा टाइम पे अपन को ध्यान रखने हैं कि भैया वहाँ में कौनो रोग राय तो नहीं लग गया है। और फसलन में अगर है भी रोग भैया तो भाई अपन उपचार बाको करें, कोशिश करें कि जैविक कीटनाशी दवा जो है बाको उपयोग में लाएँ। और हमारे कछु कछु किसान भैया रहते देखो क्या कर रहे कि तोरिया और सरसों की बुआई, अगैती सरसों की बुआई और बाकी खेत की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम तो यही कहें कि भैया जो समय सबसे सही समय है कि आप 15 से 20 सितंबर के बीच तोरिया और अगेती सरसों की उत्तम किस्मों की बुआई कर सकत हो। लेकिन जब बात को भैया जरूर ध्यान में रखने हैं कि बोनी से पहले जो अपन जो बीज है जो बीज बो रहे हैं वह बीज को अपन कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से या फिर अपन ट्राइकोडर्मा दवा ले रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अपन को अपने बीज को उपचारित करने हैं जिसे बामे उकठा और जड़ सड़न से जो रोग है वो ना लगे और हम अपनी फसलन को उसे बचा सकें। और भैया देखो जिन खेतन में आप अक्टूबर महीना में चना मसूर या गेहूं की बुआई करवे जा रहे हो तो भैया उतने खरीफ की कटाई के बाद हम तो यही कहें कि तुरते ही अपनों ने जुताई करके बाकी बखराई कर दें, उसे बामे पाटा जरूरी लगाएं। इसे कहा है कि ज़मीन में नमी बनी रहे। और हमारे कई भैया हरन ने खेतन में धान लगाए हुए तो भैया जा टाइम पे फसलन में जो बारी निकरन लगत है नया निकर विवाद तो भैया यही समय है कि रोज़ अपन खेतन में जाएं और देखें कि धान में कौनो रोग व्याधि तो नहीं लगो है या अगर खरपतवार है तो वह खरपतवार को हटा दें। और अगर भैया देखो रोग व्याधि लगी है तो तुरंत ही उपचार शुरू करने हैं। और भैया खेतन में कहीं कहीं सब्जी भी हमारे भैया हरन ने लगा रखी है तो हम तो यही कहें अच्छे से तुड़ाई करके बाजार में पहुँचावे की वहाँ में व्यवस्था करें जिसे अपन का आमदनी अच्छी मिले। तो भैया अतिरिक्त आमदनी के लाने फसलों के संगे संगे अगर अपन सब्जी लगाते भैया और उन्हें बाजार में बेच के हम अच्छो लाभ भी वासे ले सकते तो वासे अपन का पैसा अच्छे मिले हैं। और भैया देखो जब अपना अपन का आमदनी अच्छी मिलत है अच्छी आमदनी होते है तो अपनी जो रोज की ज़रूरतें हैं भैया वो भी तो पूरी होते हैं। तो भैया यारो हम तो यही कहें कि आप और अपनों काम करत रहें, जैसे सब्जी की अगर खेती कर रहे हैं तो भैया जा वक्त आप अपने खेतन में फूल गोभी पत्ता गोभी टमाटर मिर्च के पौध की रोपाई कर सकते हैं, संगे ही गाजर मूली पालक और धनिया की बुवाई भी कर सकते हैं। और भैया रो देखो हम सब जानते हैं कि आप और इतेक मेहनती हो धरती में से जो सोना उपजाओ तो और हम सभी को पेट आप और भरत हो। लेकिन भैया हमारे कछु भैया ऐसे हैं जौन के पास जमीन जगह नहीं है लेकिन भैया पढ़े लिखे हैं तो हम तो यही कहें कि शासन काम कछु नहीं है तो भैया आप जो अगर बेरोजगार हैं तो शासन द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे वहाँ में प्रधानमंत्री युवा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, विश्वकर्मा योजना है। तो भैया ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं तो उनके बारे में जानकारी लो और भैया वासे बाद योजना को उपयोग करके वासे लाभ उठाओ और स्वयं को कौनो काम धंधा शुरू करके अपने गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलाओ। भैया हरो कहते हैं ना कि जब मन में विचार तभी आउत है जब आसपास अच्छो वातावरण होते है ना, स्वच्छता होते साफ सफाई होते। तो भैया हरो जितने गंदगी होते हैं रोग राय उतने हजार परेशानी भी होते है ना, हारी बीमारी भी होते। तो भैया सबसे पहले अपने घर और बाहर अपन अच्छे से साफ सफाई रखें, साफ सफाई को विशेष ख्याल रखें। अब हमारे कछु कछु भैया रे साफ सफाई को लेके इतने सजग रहते हैं कि उनके गलियारे से कुरिया से निकल जाओ तो गंदगी ढूंढे नहीं मिलती है ना। और अपने आसपास की ही नहीं भैया रे

रास्ता में कहूँ भी पानी भरो दिख जाए, गंदगी दिख जाए, तो भैया भी बड़े सजग रहते, भी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था कर रहे थे। अब अपने हरगोविंद भैया की हम बात कर लें, हम उन्हीं की बात आपको बता रहे थे, उन्हीं को उदाहरण देवे जा रहे थे। हरगोविंद भैया ने कहा है कि 2-3 दिन लगातार पानी बरसो तो उनके घर के पिछवाड़े में भी पानी भर गया, और दूसरे नाली जो हती उनके घर के आगे जो नाली बह रही थी वो भी रुक गई, उसे जो पानी हतो गंदो पानी वो सड़क पर बहन लगो। सो हमने देखी हरगोविंद दद्दा सवेरे सवेरे हाथ में फावड़ा ले चले आ रहे। सो हमने उन्हें टोक दो कि काय दद्दा पानी बरस रहो है और जो फावड़ा लेके कितने जा रहे। सो वे कहने लगे कि का बताएं जी, रात भर पानी बरसो, सुबह से घर के पीछे की तरफ खूब पानी भर गया है और नालियन को गंदो पानी जो गली में बह रहा है। सो भाई नाली हम खुल भी जा रहे हैं। तो हमने उनसे कही दद्दा एक बात तो है कि जब बरसात को मौसम जितनों नौनो लगाते हैं उतनी ही अगर हम अपने आसपास ध्यान नहीं दें, साफ सफाई के प्रति सजग नहीं रहें, तो भैया देखो गंदगी रहते और वो बीमारी की जड़ भी बनत है। और जरा सी लापरवाही हमने दिखाई नहीं कि मलेरिया डेंगू पेट की बीमारी हमें घेर लेते हैं। भैया हरो, जे बरसात के मौसम में जे मच्छरा जो है वो ऐसा उपद्रव मचा होते हैं कि संजा होते ही वे चैन ही नहीं लेंदे हैं, कान पे भनर भनर करत रहते हैं, और वे इतने छोटे होते हैं कि वे दिखता ही नहीं है ना, कि कबे कबे काट खा ले पतो भी नहीं पड़त। तो हमने उनसे कही दद्दा मछरा पन पे ही नहीं जी के लाने, हम सबको मिलके प्रयास करना चाहिए। सुबह कह रहे हाँ जी, तुम तो सही सांची कह रही, बात तो सही है। अब देखो हम तो अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं, सो हम तो प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन हम तो यही कहें कि सबको मिलके साफ सफाई करना चाहिए। भैया बरसात को पानी है इकट्ठा हो रहा है, भाई में जो मछरा जो है बीमारी फैलावे वाले मछरा भी पनपत है, तो बरसाती पानी हम चाहे वो टूटो डब्बा होए, रबड़ टायर होए, कूलर होए, इकट्ठो बरसाती पानी कहूँ भी जमा नहीं रहते हैं ना, मट्टी मटका होए अगर कहूँ ऐसे पानी इकट्ठो हो रहे तो भैया बाको निकाल के और औंधो करके बाहर धर दे। और अपने घर के आसपास अगर मान लो कहूँ कीचड़ है, पानी इकट्ठो जमा हो रहा है, तो भैया वहाँ में अपन मट्टी को तेल डाल दे, उसे कहा है कि जो मच्छरन के जो डिम्ब है वे मर जाए हैं। तो भैया रो नालियन में भी कूड़ा कचड़ा पन्नी फेंके, अगर नाली साफ नहीं रहे तो भैया देखो पानी रुके, और जब पानी रुके है पानी सड़े है, तो देखो भैया वो बीमारी की जड़ होते। तो भैया नालियन के किनारे और घूरा के आसपास अपन साफ सफाई स्वच्छता को ख्याल तो रखें, संगे संगे एक काम अपन भैया जो भी कर सकते हैं कि अपन चूना या ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव करते रहे, उसे कहा है कि जो गंदगी है जो बीमारी फैलावे वाले जो कीड़ा मकोड़ा है वे पनपे हैं नहीं, वे मर जाएं। और दूसरे भैया बरसात के दिनन में पानी स्वच्छ पानी भी एक बड़ी समस्या हो जाता है कि साफ पानी नहीं मिलता ही। तो भैया बरसात के दिनों में अपन क्या करें कि कुआं हैंडपम्प में लाल दवाई डाल दे, उसे कहा है कि जौन पानी में कीड़ा मकोड़ा अगर हो रहे हैं तो भैया वे भी ख़त्म हो जाए हैं, मर जाए हैं। और दूसरे भैया अपन कोशिश करें कि पानी को उबाल के छान के पिए है ना, या फिर अपन क्या करें पानी में फिटकरी घोल के और फिर पानी को छान के फिर पानी को उपयोग में लाएँ। तो अगर हम पानी पे स्वच्छ पानी पे ध्यान दें हैं तो भैया उसे भी अपन बीमारी से बचे रहें। और संगे संगे एक बात और भैया कहें कि कचड़ा हमेशा अपन को कचड़ेदान में ही डालने हैं, घर के पास बने घूरा का जो गड्ढा है उसमें अपन कचड़ा डालें, उसे कहा है कि वो खाद बन जाए। तो भैया हरो हम सब तो यही कहें कि अगर हम अपने आसपास साफ सफाई स्वच्छता को ख्याल रखें तो देखो बीमार होवे से बचे रहें, और जब हमारे स्वस्थ रहें तो काम काज पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएं। तो भैया हरो काम काज में मन लगे जी के लाने मनोरंजन भी तो जरूरी है ना। तो आज है बुधवार, तो काहे ना हमने सोची कि काहे ना हम आपको गणेश जी को सुमिर ले, गणेश जी को भजन सुनवा दें। तो चलो बादाम सिंह और साथियों के स्वर में हम सब मिलके सुनाते हैं ये गणेश वंदना।

भैया देखो, आज सवेरे सवेरे जब फूल सिंह दद्दा आ गए, बड़े परेशान से दिख रहे, सो हमने उनसे पूछी का बात है दद्दा, का हो गओ? सो वे कहने लगे, अरे बिटिया तनक पहले चाय पिवाओ, खुपड़िया बड़ी भारी भारी सी हो रही है। सो हमने कही का हो गओ दद्दा, कछू सब कछू ठीक ठाक तो है घर में, सब कछू कुशल मंगल तो है? तो वे कहने लगे कि अरे का बताएं, घर में दद्दा की शुगर की बीपी की दवा चल रही है, और जो दवा महीना भर की जो 1000-1500 तक की आवत है, अब इतने अल्ले तल्ले तो है नहीं है, हैं और खेती किसानी में भी ऐसा कौन सो रोज़ रोज़ रुपया तो आत नहीं है, तो जब दवा को खर्च उठात उठात तो हमारी कमर ही टूटी जा रही। सो हमने कही काय दद्दा, खोपड़िया तुम्हारी भारी हो रही और कमर टूटी तुम्हारी जा रही, ऐसी कौन सी भैया दद्दा बात है? तनक हमें भी हंसी सी आ गई। सो हमने कही दद्दा परेश

0: परेशान काय हो रहे, जब शासन ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चला रखी है तो काहे तुम बाजार की महंगी दवा के चक्कर में पड़ रहे। शासन ने हम सब के लाने देखो जन औषधि केंद्र खोले हैं, इतने सब प्रकार की जेनरिक दवा मिलते हैं जो बाजार की ब्रांडेड दवा से भैया 80-90% तक सस्ती होते हैं। तो जो दवा आप और बाजार से ले सक, जो जन औषधि केंद्र है उतने से ले सका तो, और जौन दवा तुम बाजार से 100 रुपया की लाओ तो जन औषधि केंद्र में वो भैया आपको 10-20 रुपया में मिल जाते। और जो दवा की अगर बात करें कि ये असर करते कि नहीं, तो भैया आपको बता दें कि ये दवा पूर्ण रूप से असर करते है ना, और क्वालिटी में कोनो कमी नहीं होती। तो जन औषधि केंद्र पे बीपी, शुगर, गठिया, बुखार, पेट दर्द से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों तक की लाने दवा उतने ही मिल जाते। और भैया ये जन औषधि केंद्र जो हैं वो अपने सरकारी अस्पताल के आसपास तो होते ही हैं, संगे संगे बाजार में जहाँ जन औषधि केंद्र को बोर्ड लगो हो भैया उतने से आप और जो दवा ले सका तो है ना। तो दवा के लाने आपको परेशान नहीं होने हैं कि हाय दवा कैसे लाएँ इतने महंगी, अब तो देखो जन औषधि केंद्र खुल गए हैं तो उतने दवा उचित और सस्ती दामन पे मिल जाते हैं, और जो दवा भी पूरा असर कराते हैं तो भैया आप इतने से दवा ले सका तो, और अपने जौन घर में जौन बड़े बुजुर्ग बीमार हैं उनके लाने दवा लेके भैया अच्छे से स्वस्थ सुखी जीवन जी सका तो। और भैया देखो अब चर्चा अपनी आगे हुई है ही, अपने भैयारे इंतजार कर रहे हुए हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पे मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह की। तो चलो भैया चलते हैं अपन डॉक्टर हरवेंद्र सिंह के पास और लेते हैं उनसे जानकारी, और ये भैया रिकॉर्डिंग जो है हमने फ़ोन पे करी है तो चलो हम आपको सुनवाते हैं।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मैं डॉक्टर हरविंद सिंह। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्यक्रम चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले किसान भाई, आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 4.8 से लेकर 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, एवं आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 86 से 93 और शाम को 68 से 79% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यम कालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में मध्यम से घने बादल रहने तथा छुटपुट यानी बहुत ही हल्की वर्षा होने की संभावना है तथा हवा लगभग 4 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 33.8 से 35.2

0: देखते हुए कुछ कार्यों को रोका गया था, तो इस समय हम संभावित मौसम को देखते हुए फसलों और सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण एवं नत्रजन की मात्रा को देख सकते हैं। आगामी मौसम को देखते हुए किसान भाई इस समय सब्जियों में कीट व्याधि का नियंत्रण भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही चुटपुट बरसात बरसात न होने की संभावना है। फसलों की बात करें किसान भाई, तो इस समय अरहर की फसल जो आपकी 25 से 30 दिन की अवस्था में है, तो उसमें अब इस समय खरपतवार नियंत्रण करें, जिसके लिए इमेजा थायपर प्लस इमेजा मार्क 70 ग्राम दवा 500 से 600 पानी में घोल बनाकर इसका जो आपकी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो उसमें करें। दोबारा बनना चाहूंगा, इमेजा थायपर प्लस इमेजा मार्क 70 ग्राम दवा 500 से 600 पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान वो तो मूंग की बात कर रहे हैं, जो देरी से ऊपर मूंग बोली गई है वो उसमें फुलन अवस्था में आने की संभावना है, तो उर्दू मूंग में इस समय पत्ती धब्बा रोग की संभावना हो सकती है, अतः सतर्क निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मेनको जेब 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान तिल की बात करें, तो तिल इस समय वृद्धि अवस्था में है, तो तिल में पत्ती धब्बा और काली गंजी रोग की संभावना हो सकती है, दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मेनको जेब 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान धान की बात करें, तो संभावित मौसम में क्योंकि बरसात नहीं होने की संभावना है और इसमें धान की फसल कल्ले की अवस्था में कल्ला निकलने की अवस्था में है, तो इस समय उसमें जो नत्रजन की मात्रा है उसको दें और साथ ही खरपतवार नियंत्रण करें। साथ ही किसान सोयाबीन की बात करें, तो सोयाबीन की फसल जो देरी से बोई गई है उसमें इस समय चक्रभंगक सेमी लूपर कीट की संभावना हो सकती है, दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइओफास 750 से 800 ml दवा 500 से 600 पानी में घोल बनाकर इसका प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई सब्जियों की बात करें, तो इस समय भिंडी की बात करें, तो भिंडी फलन अवस्था में है, तो इसमें फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः सतत निगरानी रखें और दिखाई अगर आपको फल छेदक कीट दिखाई देता है तो उसके नियंत्रण हेतु टाइम 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 या 3 छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई आपकी फूल गोभी या बैंगन टमाटर की जो आपने पौध लगाई गई है और पौध रोपी जा चुकी है, उसमें इस समय क्योंकि मौसम साफ है तो खरपतवार नियंत्रण करें और नत्रजन की मात्रा को दें। साथ ही किसान मिर्च की बात करें, जो इस समय फलन अवस्था में है, तो उसमें छोटा मोटा रोग की संभावना हो सकती है, अगर दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाग्जाम 25 WG/100 ग्राम दवा 500 से 600 पानी घोल बनाकर इसका प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई बैंगन की बात करें, तो इस समय बैंगन टमाटरों में तना छेदक क्योंकि अभी वृद्धि अवस्था में है, तो तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः सतर्क निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु न्यूवाक्लोन 1 लीटर दवा 500 से 600 पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई अभी आपने नवरोपित फल वृक्ष लगाए हैं, तो उनके इस समय थालों की निराई गुड़ाई करें और साथ ही उसमें जो उर्वरक की मात्रा है उसको भी आवश्यकता अनुसार दें। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें, तो संभावित मौसम में इस समय पशुओं की नाक पशुशाला की नियमित सफाई करें, नाद की और पशुशाला की एवं प्रतिदिन पशुशाला की सफाई के बाद में 5 ml फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका फर्श पर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई संभावित मौसम में पशुओं को संक्रामक रोग होने की संभावना हो सकती है, अतः पशुओं को संक्रामक रोग से बचाव हेतु दूषित दाना चारा और गंदे तालाब का पानी न पिलाएं। साथ ही किसान भाई पशुओं को इस समय अधिक मात्रा में हरा चारा इस समय उपलब्ध रहता है, तो हरा चारा पशु अधिक मात्रा में खाते हैं, तो इसमें अफरा रोग की संभावना रहती है, अतः अफरा रोग की रोकथाम के लिए टिम्पाल या ग्लोटोसिल दवा 200 ml प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से मैं डॉक्टर हरविंद।
1: तो भैया देखो, अभी हमारे सुन रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पे मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह, और जानकारी दे रहे थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरवीन सिंह। और भैया हरो देखो, उनने जो अपन को जानकारी दी, तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप सभी ने जो जानकारी अपन खां डॉक्टर साहब ने दी है, तो आप उनसे जानकारी से लाभ उठाओ और बाकी अनुसार अपने खेती के कृषि कार्य करो, तो भैया आपको जरूरी वहाँ से फायदा भी हुई है। और भैया अब अपन लेते हैं एक अल्प विराम और सुनते हैं ये विज्ञापन।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: और आइए अब अपन सुनते हैं दिनेश कुमार अहिरवार के स्वर में ये लोकगीत।

तो भैया यार देखो, अबे हम और सुन रहे हते दिनेश सिंह अहिरवार के स्वर में ये लोक भजन। और अब चर्चा कर ले तो भैया देखो, आज बुधवार है तो हम आपको हर बुधवार एक सफल कृषक व्यवसायी से मिलवाते हैं, उनकी जो प्रेरणा रहते हैं उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं अपने मध्य प्रदेश के सफल कृषक भैया रहे, जिनको नाम है अमित जैन। तो भैया यार, अमित जैन एक प्रगतिशील किसान है और आज अपनी खेती किसानी और कृषि व्यवसाय से हर साल 7 से 8 करोड़ की आमदनी उनकी हो रही है। और भैया उनकी सफलता की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सभी के लाने एक प्रेरणा स्रोत भी हैं कि कैसे एक किसान अपनी मेहनत के दम पे नई नई योजना और नवाचार के माध्यम से अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पे ले जा सकते। भैया यारो, अमित जैन के इतने खेती तो देखो पहले से ही हो रही थी, लेकिन सन 2004 से उनने खेती के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लाने नए कदम उठाए। और उनके घर है देखो पहले से ही ट्रैक्टर और मोटर को व्यवसाय तो होता ही है, तो लेकिन उनने का करो जब व्यवसाय को बढ़ावे के लाने कृषि सामग्री की दुकान भी खोली, जितने भी खाद बीज और फसल की सुरक्षा से जुड़े जितने उत्पादन थे वे भी बेचने लगे। तो उसे देखो अमित जैन की सफलता और बड़ी, और उनकी सफलता की बड़ी वजह रही उनको कृषि को काम, कृषि को व्यवसाय और संगे संगे उनकी खेती। तो भैया उनने देखो टमाटर की खेती करी और अपने अनुभव और व्यवसायिक समझ के साथ टमाटर की खेती पे उनने ज़्यादा जोर दाओ। आज उनके पास 20 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। जी मैं 20 बीघा में वे टमाटर की खेती कर रहे हैं। भैया यारो, वे कहते हैं कि देखो टमाटर की खेती वो जो है जून के प्रथम सप्ताह से ही शुरू कर देते हैं और अगस्त के महीने तक वे करते हैं। उनको कहना है कि अगर हर 15 दिन के अंतराल पर टमाटर की खेती करी जाए तो भैया उपज एक साथ नहीं आती, बल्कि वह समय समय पर पंखा मिलत रहते हैं। इसके कारण वह पूरे सीजन में अपनी उपज को आसानी से लेके और बाय बेच सकते हैं। और जब तरीकों को पालन करते हुए मार्च तक वो टमाटर की उपज लेते हैं, बाकी बाद वे और दूसरी फसलन की बुआई करते हैं। और वो अपनी खेती में नई नई उन्नत किस्मों का चयन भी करते हैं, हाइब्रिड के टमाटर की खेती करते हैं जो ज़्यादा उपज देते हैं और आसानी से बाय बेच भी सकते हैं। और वो कहते हैं कि हम अपने टमाटर की खेती मल्चिंग विधि से करते हैं, जिससे भारी बारिश के कारण फसल को नुकसान भी नहीं होता ही, संगे संगे मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहते हैं और पानी के बहाव को आसानी से वो नियंत्रित भी कर सकते हैं। वो अपनी खुद की नर्सरी में पौधा तैयार करते हैं, बुआई के समय जैविक खाद का उपयोग करते हैं, अपनी फसलों में पोषक तत्व मिलत रहे जी के लाने। देखो भैया देखो, कहा है कि वे जब पौधे बड़े हो जाते तो DAP नैनो जैसे तरल

उर्वरक को उपयोग करते हैं जिससे पौधन को अतिरिक्त पोषण भी मिले। अमित जैन कहते हैं कि भैया एक बीघा में टमाटर की खेती करवे पे उन्हें 50,000 से 70,000 कोई लागत लेकिन आत है, पर उन्हें 2 से 3 लाख को मुनाफा भी होते हैं और उनको जो तरीका उन्हें फ़ायदा भी देते हैं। और संगे संगे अपने अनुभव जो अपने आसपास के जो किसान भैया आ रहे हैं उनसे वो अपने अनुभव साझा करते हैं, उन्हें समझाइश देते हैं कि अपने कृषि व्यवसाय को विस्तार से बढ़ावे के लाने में और का का काम करें, तो ये तरीका जो है उन्हें वो फ़ायदा पहुँचाते। तो भैया देखो अब उनके तरीका ने जिस तरह से उन्होंने खेती करी, खेती की शुरुआत करी, तो हम तो यही कहें कि ऐसे ही हम भी उनके अनुभव को सीखें और वासे लाभ उठाएं और अपनी खेती में वा को उपयोग करके हम भी अच्छे सफल व्यवसायी, सफल उद्यमी बने, सफल कृषक व्यवसायी बने। और भैया देखो चलते चलते एक लोकगीत और हो जाए, तो चलो हम आपको सुनवाते देवकी नंदन के केवट के स्वर में ये लो दादरा।

0: जावे की बेरा हो रही, हमें आज्ञा दे सभी को आरती की। राम राम, जय जवान जय किसान।
1: प्रदेश है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व और मध्य रेलवे विभाग के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: ललित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार।
3: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हैं। इनमें 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर भी शामिल हैं। इन कॉरिडोरों को चौगुना और 4 लाइन बनाने के साथ कई अन्य कॉरिडोर पर भी काम किया जा रहा है।
4: रेलवे के जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है, 11,000 किलोमीटर के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर, उनको अगर हम देखें, जैसे आप कल्पना करो, श्रद्धेय अटल जी ने स्वर्ण चतुर्भुज बनाया था हाईवे का, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
3: ललित जी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय लिए गए हैं, इनमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर करीब 20,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं और इतना धन खर्च किया जाता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव करने के प्रयास किए जा रहे हैं रेलवे के नेटवर्क में, कैसे परिवर्तन हमें आगे चलकर देखने को मिलेंगे?
5: ये आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कैबिनेट के निर्णय के बाद, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक ये बड़ा अहम हिस्सा है। इस बार का जो ये अनाउंसमेंट हुआ है, इसकी खास बात यह है कि इसमें दक्षिण भारत के राज्यों को ऊपर केंद्रित है, क्योंकि इस बीच में वहां पर कई ऑटोमोबाइल हब आ गए हैं, तिरुपति जैसे मंदिर बने हुए हैं, कई कोलार माइंस और कई जगह टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, और पूरा दक्षिण भारतीय क्षेत्र बहुत तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये जो हमारे रेलवे के ट्रैक थे उसमें कंजेशन की समस्या बहुत आ रही थी। इस बार एक अच्छा काम कैबिनेट ने ये किया है कि इसके टारगेट डेट भी अभी से निर्धारित कर दी गई है। अधिकतर शुरुआत की डेट दी जाती थी, टारगेट डेट नहीं दी जाती थी। इस बार कैबिनेट ने एक टारगेट डेट भी दी है 29-30 की, और जो एक मेरा आकलन है करीब 2,121 गांव
3: जी
5: और 17 जिले इससे लाभान्वित होंगे, और करीब 47 मिलियन टन हम ज्यादा माल का दोहन कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एक रेलवे की खासियत है, रेलवे से जब कोई माल ढोया जाता है तो उसमें रोड के कंपैरिजन में सड़क मार्ग के तुलना में 1/8 हमारा एनर्जी खर्च होती है। तो इससे एक आकलन ये भी है कि करीब 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी, और जो एक पॉल्यूशन होता है उसको एक CO2 में नापा जाता है आजकल का स्केल है, तो 42 करोड़ kg कम हम पर्यावरण में CO2 छोड़ेंगे
3: जी। ललित जी, अभी आपने कंजेशन की बात की थी, तो करीब 1,196 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़ेंगे जिससे रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा यात्रियों और मालगाड़ियों के संचालन को मिलेगा। और आपने एक बात बोली कि 2029-30 तक की टाइमलाइन निर्धारित की गई है जब ये सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि इससे यात्री अनुभव और माल ढुलाई में किस तरह के परिवर्तन आगे चलकर हमारे सामने होंगे?
5: देखिए निखिल जी, इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पूरा जो 540 किलोमीटर है इसके 5 हिस्से हैं। एक जैसे है अराकोनम से रेनुगुंटा, ये जगह ऐसी है जहां पर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति लोकेटेड है
3: जी।
5: और वहीं पर हमारे कई सारी इंडस्ट्रीज भी लोकेटेड हैं। जैसे अराकोनम से रेनुगुंटा की जो 77 किलोमीटर लंबी लाइन है, इससे जो यात्री लोग ज्यादा ट्रेन है तिरुपति मंदिर के लिए चाहते हैं, और साउथ और वहां पर एक ऑटोमोबाइल का भी बहुत बड़ा हब है श्री सेंटर करके एक जगह है नजदीक में चेन्नई के उत्तर में, तो उन सभी जगहों को यातायात की सुविधा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर ये दूसरा इन्होंने एक व्हाइट फील्ड टू बंगारपेट 4th लाइन है
3: जी।
5: अभी इस बीच में क्या हो गया, बेंगलोर से चेन्नई के बीच में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इसमें जो बैंगलोर से जो चेन्नई की तरफ ट्रैफिक जाएगा, तमिलनाडु की तरफ ट्रैफिक जाएगा, उसमें ये बहुत बड़ा कैपेसिटी क्रिएशन हुआ है, एक नई क्षमता बढ़ी है ज्यादा ट्रेनें ले जाने की। फिर एक होसूर से ओमालूर डबलिंग है, ये 147 किलोमीटर का है, ये हमारी बैंगलोर होसूर सलेम एक्सिस, आप समझिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग का हब है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, कंटेनर्स, इंडस्ट्रियल ट्रैफिक और काफी सारी जो हमारे औद्योगिक जगत की इकाइयां हैं यहाँ पर स्थित हैं, उन सबको मुश्किल आ रही थी कि वो ट्रेन से माल भेज नहीं पा रहे थे, और ट्रेन से माल भेजने से माल की लागत बहुत कम हो जाती है। इस बैंगलोर होसूर सलेम एक्सिस में जितनी भी हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको अपनी भार वाहन क्षमता में जो उनकी पैसा लगता था उसमें बहुत कमी महसूस होगी।
3: ललित जी, आपने जैसे यहाँ पर बताया कि माल ढुलाई की आपने बात की है, तो हमने देखा कि इन रूटों पर कोयला, सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकतम ढुलाई की जाती है, तो जो अब नई क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं, इससे उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचने और तैयार उत्पाद आम लोगों तक पहुंचाने में कितनी मदद मिलेगी?
5: इसमें जो अभी आकलन है कि करीब 47 मिलियन टन हम ज्यादा माल भेज पाएंगे। और एक बात और होती है, माल वाहन के अलावा हमारे देश की समस्या है कि वो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रेन में चलती है, क्योंकि एक ही ट्रैक है, तो उसी से हमको मालगाड़ी भी चलानी पड़ती है, उसी से हमें पैसेंजर ट्रेन भी चलानी पड़ती है। तो इसकी वजह से हम लोग, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग होती है, मालगाड़ी 40-50 किलोमीटर पर चलती है और मेल एक्सप्रेस ट्रेन 110 किलोमीटर पर चलती है, दो डिफरेंट गति की ट्रेनें एक ही रूट से चलाई जाती हैं, तो उस हम लोग उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। जब मल्टी ट्रैकिंग हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ ट्रैक हो जाएगा, तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस वाली लाइन से मालगाड़ियां चलेंगी और इस वाली लाइन से मेल एक्सप्रेस कोचिंग ट्रेन चलेंगी, तो उससे हम ज्यादा दोहन कर सकते हैं अपनी आधारभूत क्षमताओं का। और दूसरा ये कि मेंटेनेंस के लिए, हमको आज की तारीख में इतना ज्यादा ट्रेन चलती थी कि मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलता, तो उसमें मेंटेनेंस भी हम ट्रैक की अच्छे से कर सकेंगे, जिससे कि हमारी सुरक्षा को भी एक नया आयाम मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा कई जगहों में, कई सेक्शंस में, आपने रोड में भी देखा होगा कि ट्रैफिक ऐसा होता है कि सुबेरे एक तरफ जाता है, शाम को एक तरफ आता है, तो इक्वल नहीं रहता। हमारी मल्टी ट्रैकिंग होती है तो हम ये कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ज्यादा ट्रैफिक है उसमें तीन लाइन खोल दी, जिसमें कम ट्रैफिक है उसमें कम लाइन करी, तो उससे ट्रैफिक की बैलेंसिंग करने में भी हमें बहुत सुविधा मिलती है।
3: ये जो परियोजनाएं अब यहां से शुरू की जा रही हैं, तो देखा ये भी जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थल जो हैं वहां तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसका फर्क इन बातों में भी पड़ेगा कि पर्यटन बेहतर होगा, स्थानीय कारोबार को मौके मिलेंगे और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
5: इसमें देखिए कई तरह से फायदे होते हैं। पहले तो पंक्चुअलिटी जो ट्रेन की होती है, अभी क्या अगर मान लो बड़ा सघन ट्रैफिक चल रहा है किसी सेक्शन में, तो उसमें आप चाहे ना चाहे ट्रेनें अपने टाइम से चल नहीं पाती, इसलिए नहीं कि वो चल नहीं सकती ज्यादा स्पीड से, क्योंकि उनको चलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो अब इससे पंक्चुअलिटी में सुधार होगा, ट्रेनें समय पर चलेंगी और टाइम टेबल में एडिशनल ट्रेन का प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर मान लो ये कुछ गड़बड़ हो भी जाती है कभी ट्रैक में, कभी कुछ विघ्न बाधा आ जाती है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी कोई कैटल ट्रैक के ऊपर आ जाता है, कभी कोई बोल्डर आ जाता है, कई तरह की बाधाएं आती हैं, उसमें ट्रैफिक एकदम थम सा जाता है। अगर आपके पास एडिशनल कैपेसिटी होगी तो वो एक कुशन की तरह काम करती है और आपको बाधाओं के होने के बावजूद समयबद्ध तरीके से आपकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ियां अक्षित स्थान तक पहुंच जाती हैं।
3: ललित जी, अभी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि ट्रेनों की समयबद्धता में अधिकतम सुधार हो, ट्रेन संचालन बेहतर हो, सफाई की जो बात है वो बेहतर हो और यात्रियों को जो अनुभव है उसको और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास किया जाए। तो मौजूदा परियोजनाएं जो रेलवे के लिए शुरू की जा रही है, आपको लगता है कि जो हमारा बढ़ता हुआ रेलवे का ट्रैफिक है उसमें ये काफी मददगार साबित होगा?
5: बिल्कुल अवश्य, चाहे समयबद्धता हो, चाहे संरक्षा हो, चाहे साफ सफाई हो, ट्रेन की साफ सफाई के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आपको एक टाइम देना है जिससे कि आपके पास टर्मिनल्स में ज्यादा समय मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए हो और यात्री के अनुभव में एक बढ़ोतरी हो, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा यात्री को आवश्यकता होती है उसकी ट्रेन समय से चले और समय से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, रस्ते में जहां पर उसको पानी भरना है ट्रेन में पानी भरे, जिससे कि उसको रस्ते में पानी की कोई समस्या ना हो, और जो कैटरिंग हॉल्स होते हैं जहां पर यात्रियों को समय पर खाना देना है, अगर जिस जगह पे खाना लोड होता है ट्रेन में उस जगह पे ट्रेन को सही टाइम पर पहुंचना जरूरी होता है, जब एक कैपेसिटी इनहांसमेंट होता है तो वो सब फायदे हो जाते हैं और इन सभी चीजों की आपूर्ति कर पाते हैं। और जिस एरिया में ये हो रहा है दक्षिण भारत के, उसमें करीब 52 लाख लोग रहते हैं, तो उन 52 लाख और जो 121 गांव हैं उनको तो डायरेक्ट इसका फायदा मिलेगा। उनको न सिर्फ ये फायदे मिलेंगे बल्कि ये जो हम नया कंस्ट्रक्शन होगा, जॉब के अवसर बढ़ेंगे, कई ठेके दिए जाएंगे इसमें टी के, ट्रैक के, स्लीपर के, सिग्नलिंग के, तो इससे पूरी जो एक इकोनॉमिक गतिविधि होती है जो वहाँ की, उन लोगों के जीवन स्तर में भी फर्क आएगा क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन के दौरान ही काफी सारे चीजें ऐसी होती है जिससे कि आम जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है।
3: बिल्कुल, अभी अगर दो बातें हम एक साथ लेकर के चलें, पहली ये कि आज रेलवे से करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं, हजारों गांवों के लोग उनसे यात्रा करते हैं।

0: हैं, शहरों के लोग यात्रा करते हैं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के जो लोग होते हैं प्रेफर करते हैं कि रेलवे से ही अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। वहीं दूसरी ओर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। अगर दोनों को समन्वय करके हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि बीते कुछ वर्षों में या एक दशक की हम बात करें, किस तरह से बदलाव हम देख पा रहे हैं रेलवे में?
1: रेलवे में सबसे बड़ा बदलाव, मैंने तो काफ़ी पूरी अपनी लाइफ टाइम रेलवे में ही निकाला है,
0: जी
1: तो जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने पिछले एक दशक में देखा, एक तो इस पीरियड में फंड की जो होती है, जो निधि उपलब्धता होती है, अब इंजीनियर्स लोग प्रोजेक्ट्स को तभी बढ़ा पाएंगे जब उसके लिए पैसा हो।
0: बिल्कुल
1: तो इस पूरे पीरियड में पैसे के, जैसे बोलते हैं, नल खोल दिया है, खासकर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसमें हमने ये पाया कि अब कोई भी प्रोजेक्ट रेलवे का जो महत्वपूर्ण होता है वो इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं है। दूसरा, ये सेंक्शन, अब जैसे हम लोग हर साल, पहले ऐसा होता था कि जब नया बजट आएगा तब वो नए प्रोजेक्ट सेंक्शन होंगे, तब उसके ऊपर काम होगा। अब इस दशक में हम लोग उस एनुअल इवेंट, जो वार्षिक एक आयोजन होता था बजट का, उसके बाद ही सारी, तब तक सारी गतिविधि हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो खत्म हो गया है। अब
0: जी
1: देखिए, ये सितंबर का महीना है, अभी बजट बहुत दूर है, लेकिन हमको जो भी जमीनी स्तर पे काम करने वाले अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, स्टाफ हैं, उनको अभी से पता है कि ये ट्रेनें बनानी है और उसका जो निश्चित अवधि में खत्म करना है वो भी इसमें दिया गया है। तो अब जो इतनी क्लैरिटी आ गई है, आपको फंड की उपलब्धता है, आपके जो नीतिगत कई सारे आदेश जारी किए गए जिससे कि जो फील्ड का जो ऑफिसर्स हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनकी डीआरएम्स की, जीएम्स की पावर बहुत बढ़ा दी गई है। जैसे कई डिसीजन जिसके के लिए पहले हर बार रेलवे बोर्ड जाना पड़ता था, दिल्ली में रेल मंत्रालय जाना पड़ता था, एक बहुत बड़ा तबका रेलवे का महकमा दिल्ली और अपने क्षेत्र के बीच में यात्राओं, फाइलों को घुमाने में लगा रहता था, अब वो सब खत्म हो गया है।
0: जी
1: अब आपको जिन निर्णयों के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था वो आप चेन्नई में ले सकते हैं, गुवाहाटी में ले सकते हैं, अहमदाबाद में ले सकते हैं। दिल्ली की तरफ से बस एक ही दबाव रहता है, जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं उनको जल्दी खत्म किया जाए।
0: जी जिस तरह से आपने बताया कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके अलावा सरकार इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रही है कि यात्रियों को नई ट्रेनों में यात्रा करने का मौका मिले। नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, रैपिड रेल की हम बात करते हैं, या फिर इससे भी कहीं आगे जाने की भी बातें हो रही हैं। जहां एक और पहले इंजन बनाना और रेलवे कोच बनाना बहुत बड़ा काम माना जाता है, आज वो काम आसानी से किया जा रहा है। वहीं एक चीज ये भी है कि सरकार का पूरा फोकस इस बात पर भी है कि माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाया जाए। तो मैं आपसे ललित जी ये पूछना चाहूंगा कि रेलवे के फ्रेट बिजनेस का क्या महत्व है, खासतौर पे इकोनॉमी के लिए, और वस्तुओं की ढुलाई से जो पैसा आता है रेलवे उसको इस्तेमाल करता है उन सारी चीजों को ठीक करने में।
1: आपने बिल्कुल सही बोला, हमें जो पैसा मिलता है वो माल की ढुलाई से ही मिलता है, और उसके लिए सबसे जरूरी है रोलिंग स्टॉक जिसे बोलते हैं, वैगन,
0: जी
1: इंजिन्स और कोचेस, ये हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अब आपको बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले तक, एक दशक पहले तक, पूरे देश में 400-500 इंजिन्स का प्रतिवर्ष निर्माण होता था। आज हम लोग करीब करीब 1,500 इंजिन हर साल बना रहे हैं, और ये
0: जी
1: जो इंजन बना रहे हैं इनकी जो क्षमता है, इनकी हॉर्स पावर जो है, पुराने जमाने के इंजनों से बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे देश की यह रही है, जिसका कि अभी जो पश्चिम एशिया में तेल का संकट आया उसमें का पता चला है, कि हमारे देश में पूरा संपूर्ण 70,000 के लगभग जो हमारा रूट किलोमीटर है, पूरा ब्रॉडगेज का जो नेटवर्क है, वो पहाड़ी, जो हिल स्टेशन की ट्रेन छोड़ दीजिए, उनको छोड़ के जहां से माल यातायात वाहन होता है वो पूरा इलेक्ट्रिफाइड है।
0: जी
1: तो हमें अपना माल एक जगह से, और जो बिजली बनती है हमारे देश में तो कोयला जला के बनती है, कोयले का उत्पादन हमारे देश में ही होता है। तो आज रेलवे का ट्रांसपोर्ट वेस्ट एशिया या विश्व की किसी भी जगह के तेल के आपूर्ति पर निर्भर नहीं है, और तेल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो, रेलवे अपनी उसी गति से चलती रहेगी, क्योंकि हम लोग ट्रेन चलाते हैं बिजली से, तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है। दूसरा, ट्रेनों की लंबाई, हमने अब जो इंजन अधिक गति से ट्रेन चलाने के लिए हमें
0: जी
1: पावरफुल इंजन की जरूरत होती है। अभी जो आपके मधेपुरा में हमारे WAG-12 इंजन बन रहे हैं, उसमें एक इंजन की पावर 12,000 हॉर्स पावर है।
0: जी
1: जो अभी सीमेंस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गुजरात के दाहोद में, उसका निर्माण होगा, वो तो उससे ही पावरफुल है। उसमें उतनी जगह में ट्विन इंजन अगर करें तो उसका 18,000 हॉर्स पावर निकलेगा, क्योंकि
0: जी
1: उसमें मधेपुरा का ट्विन इंजन है, यहाँ का सिंगल इंजन है। तो यहाँ पे भी दो इंजन लगा दो, यहाँ का एक एक इंजन 9,000 हॉर्स पावर का है, जो कि समूचे विश्व में उतनी कैपेसिटी का हॉर्स पावर का इंजन है ही नहीं।
0: जी ललित जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व और मध्य रेलवे विभाग के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। सुर्खियों

0: में।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में ये गीत फिल्म याराना से, अनजान के लिखे बोल और राजेश रोशन का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत में आप आवाज़ें सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंजीर से।

बॉम्बे टू गोवा इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना और आरडी बर्मन का संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। राहुल देव बर्मन का गाया गीत आइए सुनते हैं फिल्म शोले से, आनंद बख्शी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जवानी दीवानी से।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिखा था गुलजार ने, संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम था घर। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा

0: सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 4th लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके

0: हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
2: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
1: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
1: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें।

0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाज़ों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
2: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi.

0: मौसमियात की एजेंसी ने अगले 2 से 3 दिन में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मजीद 2 अफराद पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हो गए हैं, जिसे बलूच अफराद की गुमशुदगी और मुतासर खानदानों को दस्तियाब मालूमात को लेकर तश्वीश एक बार फिर नुमाया हो गई है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक 23 अगस्त को रात तकरीबन 3 बजे पाकिस्तानी फोर्सेज ने मस्तूंग में अली बलोच को मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद अली बलोच का कोई पता नहीं चल सका। एक दूसरे वाकये में शकील बलोच के अफराद खानदान ने कहा कि उसे क्वेटा के किल्ली गौहराबाद से 16 अप्रैल की आधी रात उसके मकान से उठा लिया गया। उसके कुंबे ने पाकिस्तानी ISI और इंसदाद दहशतगर्दी महकमे CTD पर उसकी गुमशुदगी का इल्जाम आयद किया है। भारत ने आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले में आखिरी दिन 2 सोने और 4 कांसे के तमगे जीतकर अपनी मुहिम खत्म कर दी। पैरालंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाले हरविंदर सिंह और मौजूदा आलमी चैंपियन और आलमी नंबर 1 शीतल देवी ने भारत के तमगों की मुहिम की क्यादत की। शीतल देवी ने खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की आयदा सैदान को एक सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त देकर यह तमगा हासिल किया है। हरविंदर सिंह ने भावना के साथ मिलकर रिकर्व मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के लियांग क्विरोंग और जियाई ली को 6-0 से शिकस्त दी। भावना एक और कांस्य का तमगा भी जीती हैं। उन्होंने खवातीन के पैरा रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में अपनी हरीफ राजश्री राठौड़ को 6-0 से शिकस्त दी है। उन्होंने मुकाबले में एक दूसरा मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने इससे कबल कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में तोमन कुमार के साथ कांसे का तमगा जीता था। भारत की सरिता ने खवातीन पैरा कंपाउंड इनफरादी इवेंट में एक दूसरा कांसे का तमगा हासिल किया है। इस नतीजे के साथ अहमदाबाद में भारत की मुहिम का अख्तिताम मजबूत और शानदार अंदाज में हुआ है। मर्दों की भारतीय जूनियर हॉकी टीम चीन के शहर मोकी में जारी जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 5 मरतबे के चैंपियन भारत ने आज चीनी ताइपे को 15-0 से शिकस्त देकर पूल ए में पहली पोजीशन हासिल की है। भारत ने 3 कामयाबियों और 1 ड्रॉ के जरिए 10 पॉइंट हासिल किए हैं। कप्तान अनमोल एक्का मैच के हीरो रहे और उन्होंने 6 गोल किए और ये तमाम गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए। अरियान जेस ने हैट्रिक की जबकि हरपाल ने 2 गोल किए। प्रभदीप सिंह, गुरुसेवक सिंह, अर्जुन संतोष हरगुदे और अजीत यादव ने 1-1 गोल किया। भारतीय खवातीन की टीम ने अपने आखिरी इलीट पूल मैच में चीन के खिलाफ बगैर गोल के ड्रॉ खेला और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भारतीय खवातीन की टीम अगले मरहले में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने 9 रियासतों में कनेक्टिविटी को फरोग देने की खातिर 20,800 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के रेलवे के 8 तौसी प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दिफाई इश्तराक से मुतालिक मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका ने यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन का कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब पर यमन के हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि इन हमलों से आबनाए बाबुल मंदेब में आजादाना जहाज रानी को खतरा लाहा होगा। भारत ने अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के अख्ताम तक कुल 15 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4 तमगे शामिल हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत की मर्दों की टीम चीनी ताइपे पर 15-0 से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खवातीन की भारतीय टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाई।

0: भाटिया कॉल कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
3: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल युक्त पदार्थ हैं जिनमें कि प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
1: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
4: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी, मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स. बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ

0: सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउसहोल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है।
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए, जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है।
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम, माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं, वो उसको नहीं पिलाने देती हैं, वो बच्चा ले जाती हैं, वो चाय पिलाएंगी, घुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है, शहद पिलाना है, क्योंकि रस्में पूरे करना

0: मीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है. तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ. तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दे कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है इसको हटाना बहुत जरूरी है. और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन्स बनेंगे. और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की आईक्यू पॉइंट्स तो कम होते ही हैं. एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की आईक्यू बहुत बढ़िया हो, नीट जेई निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं. अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके आईक्यू पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है. तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है.
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी. डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है. सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है. और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है. और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है. और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं, मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है. अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है. तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए, और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है. सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन दिया जा सकता है.
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है. अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है. नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट. इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है. एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए. हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए. तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग ऑल्सो. जो RUTF की जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है. मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ, नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप

0: पढ़ने जाते थे तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक ओपीडी के बाहर जो छतरी के नीचे लगता था. तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे. तो RUTFP वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है. रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया. RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को. आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है. और RUTF बहुत गाढ़ा होता है तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनवाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक ओपीडी होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए. जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का. बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं. क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स ज्यादा खाते हैं. तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है. और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए. बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा. तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से.
1: जी बिल्कुल. पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है. डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? चूंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है.
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है. जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ. और जैसा आपने कहा कि अब हम 9वां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं. इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है. पर स्थायी रूप से डाइट और फूड की हैबिट्स को चेंज करने के लिए जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, सभी की रोल है. और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है. और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं. तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद. तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.25 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है, उसमें ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं, उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके. जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं। तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी।
1: जी
0: तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसीज होती है। लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशियंसीज है स्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना।
1: जी
0: जब मैं एमडी कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए, तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे ही। एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है। बीमार बच्चा मैल न्यूरिस्ट हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिस्ट हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिस्ट हुआ। ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है। एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें। अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें, बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं।
1: जी
0: तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है।
1: जी डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
2: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है। और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है और इसको कैसे ठीक

0: से इस्तेमाल करना है, वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5 से 10% के बीच में है। तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा। पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे। इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू।
1: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
2: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपके मन में शंका होती है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें। एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओ को लगता है कि हाँ उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम ये जो यंग मदर्स हैं, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी,
1: जी
2: उसके बाद तो सब कुछ
1: बिल्कुल
2: पजल
1: ठीक
2: की
1: कह रही
2: तरह
1: हैं।
2: फिट हो जाएगा।
1: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है, और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू आनंद जी,
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है रेडियो नाटक भोर का सूरज। इसके लेखक हैं अजीमुद्दीन और प्रस्तुति है जितेंद्र स्वरूप राजन की।
1: प्रस्तुत है देह व्यापार में लिप्त जातियों की समस्या पर केंद्रित नाटक भोर का सूरज। लेखक हैं अजीमुद्दीन और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: कांता, कांता क्या हुआ? क्या हुआ कांता? अरे बोलो क्या हुआ? अरे तू चीखी क्यों? कांता?
1: नहीं।
0: क्या हुआ कांता? कांता, कांता होश में आओ।

0: सो जाओ कांता, सो जाओ, बहुत रात हो गई है।
1: नींद नहीं आ रही है मुसाफिर। मैं अपने माजी को भूलना चाहती हूँ।
0: कांता, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहता।
1: मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी मुसाफिर।
0: नहीं कांता, मैं कुछ नहीं जानना चाहता।
1: मुसाफिर, क्या तुमने घर के आंगन में नन्हे नन्हे पौधों को देखा है?
0: हाँ देखा है कांता।
1: मेरे पड़ोस में भी एक नन्हा सा पौधा था, मैंने उसे उजड़ते हुए देखा है मुसाफिर, उजड़ते हुए।
0: ये आवाजें सुन रही हो? ये तेज हवाएं और बरसात आज शायद चैन से सोने भी नहीं देंगी, क्यों है ना कांता?
1: मुसाफिर, क्या तुम मेरा ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हो?
0: कांता, तुम हमेशा मेरी चोरी पकड़ लेती हो। सच में तुम एक अनभूझ पहेली हो।
1: नहीं मुसाफिर, मैं कोई पहेली नहीं हूँ, और तुम्हारे आगे तो मैं एक खुली किताब होना चाहती हूँ। तुम्हारी आंखों में मैं अपनी जिंदगी की इबारत लिख देखना चाहती हूँ मुसाफिर।
0: कांता अच्छा, तुम किसी पौधे का जिक्र कर रही थी ना?
1: हाँ, पौधा, आंगन का नन्हा सा पौधा। मुसाफिर, तुम जानते हो जब कभी हम किश्ती में बैठते हैं तो दिल चाहता है नाव खूब तेज तेज चले, मगर अब न जाने क्यों तुम्हें पाने के बाद दिल चाहता है मुसाफिर किश्ती हौले हौले बहे, मैं और तुम।
0: ओ कांता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरा प्रेम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ की तरह अपने अंदर ऊष्मा की तपन संजोए है। मेरा प्यार भावनाओं और पवित्रता की तांच में तपकर निकलता हुआ कुंदन है कांता।
1: मत बोलो इस तरह से मुसाफिर, मुझे डर लगता है कहीं मैं अपनी जीवनी के पृष्ठ तुम्हारे सामने खोलने से रुक ना जाऊं।
0: सुनो कांता, मैं सच में ही चाहता हूं कि तुम अपने माफी अपने अतीत को अपनी खामोशी में समो लो कांता।
1: मुसाफिर, मैं जानती हूँ और अपनी आत्मा की गहराई से भी मानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम कर।

0: जाने दो, यहाँ कोई कांता नहीं है मुसाफिर, मुझे रोक लो, मुझे जाने मत देना।
1: कांता क्या कर रही तू? कांता होश में आओ, कांता, कांता, कांता होश में आओ। कांता सुनो, अरे तांगा तो कभी का चला गया।
0: क्या क्या वो रुका नहीं यहाँ?
1: नहीं नहीं कांता नहीं।
0: क्या उसने कांता के बारे में नहीं पूछा?
1: नहीं कांता नहीं, परंतु तुम तांगे की आवाज से इतना भयभीत क्यों हो गई थी? बोलो
0: मुसाफिर। हाँ। तांगे की आवाज से मेरे दिलो दिमाग में तूफान उठने लगते। मुझे चांद से चांदनी की जगह खून की बूंदें टपकती दिखाई देती है मुसाफिर। मुझे
1: तुम्हारा माफी तुम्हें बेचैन कर रहा है। जब तक तुम अपनी कहानी नहीं कहोगे, तुम यूं ही तिल तिल करके खुदते रहोगे, छटपटाती रहोगी कांता, छटपटाती रहोगी। बताओ बताओ कांता, क्या हुआ तुम्हारे उस नन्हे पौधे का?
0: मुसाफिर हाँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी।
1: बताओ कांता।
0: मेरे अतीत के जहरीले नाक मुझे डसते रहते, मैं बेहद जहरीली हो गई हूँ। जब तक मैं अपने साथ घटित एक एक हादसा सुना नहीं दूंगी तुम्हें, मेरे अंदर धधकता दावन आज शांत नहीं होगा मुसाफिर, शांत नहीं होगा।
1: बोलो।
0: हाँ तुम, मैं कह रही थी नन्हे पौधे के बारे में।
1: हाँ कांता बोलो।
0: वो नन्हा सा पौधा था,

0: जो मेरे साथ ही बड़ा हुआ था।
1: क्या हुआ था, क्या हुआ था उसके साथ?
0: क्या हुआ था उसके साथ?
1: हाँ बोलो।
0: मुसाफिर, मेरे शब्द कांप रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं कि मैं कुछ न कहूँ, परंतु मुसाफिर, अगर आज भी मैं तुम्हें कुछ न बता पाई तो ये बोझ मुझे एक दिन दबाकर मेरी सांस ही रोक देगा, और मैं अपने सबसे प्यारे इंसान को कुछ बताए बिना ही दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे मुझे रोकना, टोकना और चुप मत करना मुसाफिर। तुम सुन रहे हो ना?
1: कांता, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो तुम।
0: वो रात बहुत डरावनी थी, मगर चांद का देवता उस रात भी मुस्कुरा रहा था, कहकह लगा रहा था। उसी रात में मैंने पौधे को उजड़ते देखा था।

0: क्या नाम है तेरा?
1: शांति बाबूजी।
0: आओ आओ मेरे पास आओ,
1: नहीं।
0: मेरे आगोश में आओ।

0: कैसे जाने हृदय?
1: आ मेरे पास आओ
0: ले।
1: अरे कोई है, देखो भाग ले रहा पाए, लेके आओ उसे।
2: आ गई बेटी।
3: सर जी ने क्या बख्शीश दी?
0: पिताजी वो सेठ नहीं वैसी था, दरिंदा था, उसने मुझे लूटना। मैंने कुदरती से उसका सर फोड़ दिया।
1: बदतमीज, तूने क्या किया ये?
0: तुमने मुझे मारा पिताजी, मुझे शाबाशी नहीं दी कि मैं उस गरीब के घर से बच कर आ गई।
1: बड़ी आई सती सावित्री, अब पैसे कहाँ जाएंगे? 5,000 में सौदा तय हुआ था, चल चल अभी। माफी मांगना सेठ जी से, समझी?
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी।
1: देख देख टांगा फिर आ गया है, जा बैठ उसमें बैठ।

0: लगता है बरसात रुक रही है।
1: हाँ, बरसात तो रुक रही है, परंतु शांति की अगले दिन सांसें रुकी हुई लाश मिली थी। उसने आत्महत्या कर लेते मुसाफिर।
0: बस करो कांता, बस करो।
1: बहुत दिनों से तुम मुझे रोक रहे हो, परंतु आज मैं वो सब कुछ तुम्हें सुना देना चाहती हूँ जो मेरे दिलो दिमाग को एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं देता। मैं उन दस्तावेजों को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ मुसाफिर, जहाँ मुझे दस्तखत करने थे, परंतु वहाँ मैंने खाक लिख डाले थे।

0: अरे प्रभु ने मेरी सुन ली। तीन लड़कों के बाद लड़की पैदा हुई है।
1: शाम को दावत हो जाए।
0: अरे शाम, शाम कैसी है, किसने देखी है शाम? दावत तो अभी होगी।

0: जिस तरह घर से बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह हमारे झोंपड़े भी शहर से बाहर हैं। वहां ना सभ्यता की रोशनी है, ना माँ बाप का संरक्षण। उफ, माँ बाप, उन्हें माँ बाप इसलिए कह लो कि यही उनके नाम है। माँ और बाप की आत्मा उन्हें कभी थी ही नहीं। मुझे लालटेन बुझ गई है, माचिस लेना।
1: लो, वैसे अच्छा होता तुम सो जाती। रात बहुत हो गई है कांता।
0: आज अगर मैं अपनी बात नहीं कह पाई तो शायद कभी ना कह सकूंगी मुसाफिर। मेरी आत्मा में बसी कड़वाहट निकल जाने दो मुसाफिर। मैं एक नन्हा पौधा थी, देखते देखते मैंने जड़ें पकड़नी शुरू कर दी। मैं बढ़ रही थी और मेरे माँ बाप ललचाई नजरों से मुझे देख रहे थे। जिस तरह कसाई नजरों से जानवर का वजन तौल लेता है, मेरे माँ बाप की नजरें भी मुझे तौल रही थी।
2: कांता की अम्मा, अरे देख तो, बच्ची की काठी निकल आई है।
3: हाँ, अब तो हमारे दिन फिरने वाले हैं, लड़की जवान हो गई है ना।
2: अब मैं जी भर के पिया करूंगा।
3: हाँ, मैं भी अपनी सब इच्छाएं पूरी करूंगी।
4: किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी माँ।
3: क्या बकता है रे?
4: मैं बक नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ कांता वो सब काम नहीं करेगी जिसे तुम लोग खानदानी दस्तूर कहकर अपनी ही लड़कियों से करवाते हो।
2: ये सब नहीं करेगी तो क्या करेगी?
4: मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा करूंगा।
2: तो बड़ा आया पढ़ाने लिखाने वाला, पहले अपना तो पेट भर के दिखा।
4: मैं खुद खा कमा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। मैं अपनी बहन को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ।
2: अच्छा
4: माँ, बंद करो खानदानी दस्तूर के नाम पर लड़की पर अत्याचार।
3: बेटा, हमारे यहाँ का यही चलन है कि लड़की को अड्डे पर बिठाया जाए।
4: वो दिन चले गए माँ, जब लड़की को बिठाया जाता था। ये सब छोड़ना होगा माँ।
2: नाच गाना हमारा पैसा है, लड़की नाचेगी तो घर में खुशहाली आएगी।
3: बेटा, तू तो जानता है हमारा कुनबा शुरू से ही लड़कियों को नाच गाने के अड्डे पर बैठा कर रोजी रोटी कमाता आया है।
4: कितना बुरा लगता है स्कूल में अपने काम धंधे में जब कोई कहता है कि हमारे यहाँ लड़कियों से पैसा कराया जाता है। माँ, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। माँ, शर्म से झुक जाता है।
2: तेरा सिर इसलिए झुक जाता है कि तेरे पास पैसे नहीं है। कितना कमाता है? 15-20 रुपए रोज। अरे जरा सोच तो, जब कांता कमाएगी हम सबके पास पैसा होगा तो तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा।
4: पैसा पैसा पैसा, क्या सिर्फ यही एक जरिया है पैसा कमाने का? माँ,
3: बेटा, हमारे कुनबे में वही मालदार है जिसके यहाँ ज्यादा लड़कियां हैं। अब देख तू ही अपनी चाची को कितना कमा रही है।
4: सब मालूम है माँ मुझे, कितना कमा रही है और क्या कमा रही है। परंतु आपको नहीं मालूम माँ, उन्होंने एड्स कमाया है। माँ, एड्स की बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। माँ, सिर्फ

0: कर मर रहा है उनका परिवार।
1: अरे कुछ भी हो, कांता को कमाना है वो कमाएगी।
2: मैं भी देखूंगा पिताजी, आप कैसे उसे नर्क में ढकेलते हैं।
1: मुझसे झगड़ा करता है।
2: पिताजी, मैं कहता हूँ हाथ पर लगाना मत ढूंढे।
3: मुसाफिर, मैं अपने माँ बाप और भाई की बातें सुनती और सहन जाती थी। मैं लड़की थी और माँ बाप के मुताबिक पैसे कमाने की मशीन बन सकती थी। खेल को अपनी मंजिल मालूम है, परंतु एक दिन जब मैंने अपने बाप को एक आदमी से बातें करते सुना, तो मुझे लगा शायद अब मैं वो रेल बनने जा रही हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं है।
1: अरे भैया, पूरे 15 साल की हो गई है।
4: ठीक है, हमारे सेठ जी को भी तो नाचते हुए चूजे अच्छे लगते हैं।
1: मगर एडवांस पैसे होंगे।
4: पैसे तो मिल जाएंगे, और अगर सेठ जी खुश हो गए तो पैसे ही पैसे बरसेंगे।
1: कब लेने आओगे?
4: रात को आऊंगा, तैयार करके रखना।
1: ठीक है ठीक है।
5: बेटी ले, तू ये कपड़े पहन ले, और हाँ देख, सेठ जी को नाराज नहीं करना।
3: माँ, तुमने शर्म मानी कैसे मुझे देखते हुए?
5: बेटी, हमारे कुल्ले का यही दस्तूर है।
3: लानत है ऐसे दस्तूर पर, काश तू मुझे पैदा होते ही मार देती माँ, तो मेरी आत्मा तुझे दुआएं देती।
1: ज्यादा बक बक बक कर, तुझे जाना होगा, सवारी आ गई है।
4: इसे वापस भेज दो बापू।
1: है?
4: कांता कहीं नहीं जाएगी।
3: भैया,
1: जाएगी।
3: भैया मुझे बचा लो, मुझे मत जाने दे।
4: तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरा भाई आ गया है। अरे भाई जल्दी करो, सेठ जी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से कोई नहीं जाएगा।
6: अरे मेरा हाथ छोड़ो।
4: भागता है या दू एक हाथ?
1: ये क्या बक रहा है? हट जा यहाँ से। इतने दिन पाल पोस कर क्या इसीलिए बड़ा किया था कि जब हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं तो तू उन पर कालिक बल दे। चल चल चल
3: चल चल
4: बाबू, चल छोड़ दे उसे, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। बाबू
1: अपने बाप पर हाथ उठाएगा? भूख और गंदगी में पलने वाला कीड़ा अपने बाप पर हाथ उठाएगा?
4: उस आदमी पर हाथ उठाना पुण्य है पिताजी, जो अपनी बेटी का सौदा कर रहा हो। चल बहन, मेरे साथ चल। लव डे, मेरा एडवांस वापस करो।
1: अरे हाँ भैया, ले जा अपना एडवांस। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो तकदीर को क्या दोष दें। ले जा भैया, ले जा। आओ, ये मेरे दोस्त मोहन का घर है। आओ अंदर आओ।
7: नमस्ते मोहन।
8: नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए।
7: कैसे हो?
8: बढ़िया भैया, आइए।
7: ये मेरी बहन कांता है।
8: अच्छा,
7: इसे पढ़ना है।
8: आप कुछ पढ़ लिख लेती हैं?
3: जी हाँ, हमारे मोहल्ले में समाज सुधारक अंजू दीदी आती हैं।
8: अच्छा,
3: उन्हीं से कुछ पढ़ लिख लेते।
8: अच्छी बात है। देखिए, आजकल सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं
3: जी।
8: आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगी तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकती हैं।
7: मोहन, तुम ऐसा ही करो भाई, मेहनत करना कांता का काम है।
3: हाँ भैया, मैं तो बहुत मेहनत करूंगी।
8: शाबाश, तो आप कल से पढ़ने आ जाइए, और इसी साल प्राइवेट विद्यार्थी की तरह मैट्रिक की परीक्षा भी दीजिए।
7: और भाई पास होके भी बताना। हाँ
3: तो क्या फेल होने के लिए परीक्षा देनी है भैया?
7: ये भी खूब कही तुमने।

0: कांता
1: जी?
0: कांता मुबारक हो, तुम हाई स्कूल में पास हो गई हो।
1: सर ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है मोहन बाबू। मेरे मन में बहुत देखने की तमन्ना थी और ये इच्छा आपने पूरी कर दी मेरी।
0: कांता इतना सम्मान मुझे मत दो कि मैं उसे लौटाने का साहस न जुटा सकूं।
1: आप तो महापुरुष हैं, सम्मान तो आपको मिलना ही चाहिए।
0: नहीं कांता नहीं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा प्रेम चाहिए।
1: मोहन बाबू ये आप?
0: हाँ कांता, बहुत दिनों से मन में ये बात थी जो होठों तक आते आते खामोशी में गुम हो जाती थी, परंतु आज तुम्हारी सफलता ने दिल की बात जुबान पर ला दी। अब मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी।
1: मोहन बाबू मैं कमल के फूल की तरह हूँ जो खिलता तो है मगर उसकी खुशबू नहीं होती। मैं आईने में दिखने वाली छाया हूँ जिसका अपना कोई वजूद नहीं।
0: मैंने सिर्फ एक चेहरे को देखा है, भोर में जब मैं बेदार होता हूँ, दोपहर में जब मैं थक जाता हूँ, शाम को जब मैं उदास होता हूँ, और रात को जब इंतजार करते करते सोते में मेरी आंखें गीली हो जाती हैं, कांता तो जानती हो सपने में कौन सा चेहरा मुझे तसल्ली देता है?
1: कौन सा चेहरा?
0: तुम्हारा चेहरा कांता, तुम्हारा चेहरा।
1: मत दिखाइए मुझे सपने मोहन बाबू, मैं जाग रही हूँ, खुली आंखों से कोई सपने नहीं देखता, खुली आंखों से हकीकत देखी जाती है और मैं सिर्फ हकीकत देख रही हूँ मोहन बाबू, हकीकत।
0: मैं सपनों को हकीकत में बदल दूंगा, आखिर क्या कमी है मुझमें?
1: आप में कोई कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है।
0: क्या कमी है तुम्हें कांता, बताओ क्या कमी है? मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी कमी अपने प्रेम से पूरी कर दूंगा कांता, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
1: आपके ऊपर भरोसा था तभी तो मैं रोज पढ़ने आती थी, परंतु न जाने क्यों मुझे लगता है मोहन बाबू कि मेरी तकदीर के ये शब्द इतने सुनहरी नहीं होंगे।
0: कांता मैं आज तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा, तुम्हारी जिंदगी में फूल बिखेरना ही अब मेरा मकसद है। तुम्हारे भाई को तो कोई एतराज नहीं होगा ना, क्या पता है तुम्हारा?
1: पता नहीं बताऊंगी, आपको घर ले चलती हूँ। कई बार आपने पहले भी घर चलने की बात कही थी ना, परंतु मैं ही टालती रही थी। आज आपका इम्तहान है, आपकी मोहब्बत की परीक्षा है और मेरी किस्मत के लिए ये फैसले की घड़ी है मोहन बाबू, आइए चलिए मेरे साथ। मोहन बाबू मुझे बचा लो, वो मेरे सपनों के महल को कांच की तरह तोड़ डालेगा मोहन बाबू।
0: कांता कांता होश में आओ कांता,
1: वो आदमी
0: कौन कौन तोड़ डालेगा?
1: टांगे में आ रहा है, वो मुझे तुमसे छीन ले जाएगा। मोहन बाबू मुझे बचा लो।
2: क्यों रे, मैंने कमाने को कहा तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी और अब इस छोकरे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। चल मेरे साथ बैठ टांगे में, ज्यादा छीन चपड़ की तो टांगे तोड़ डालूंगा। हाँ
0: ए, कौन हो तुम? खबरदार जो लड़की को हाथ लगाया।
2: मैं कौन हूँ? मैं इसका बाप हूँ। और तू कौन है रे जो उसके साथ घूम रहा है? हम अड्डे वाले हैं छोकरे, गांव में पैसे हो तो चल तुम ही बैठ टांगे में और कर ले अपने मन की। चल।
0: क्या कहा, तुम अड्डे वाले हो?
2: और कांता ये भी अड्डे वाली है।
1: मोहन बाबू मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, आप मुझे बचा लो।
2: सच कहती है ये लड़की, सच कहती है, पवित्र है। पैसे हो तो छोरे तू डाल दे इसके सिर पर चुनरी।
1: मोहन बाबू आप चुप क्यों हैं? आप रो क्यों नहीं रहे? हाँ अरे कहाँ गई आपकी मोहब्बत और कहाँ गया आपका वादा? मेरे जीवन में फूल बिखेरने के शब्द क्यों खोखले हो गए हैं? अब क्यों तुम्हारे पैर जम हो गए हैं?

0: गए हैं आप? क्या यही मेरा कसूर है कि मैं अड्डे वाले की लड़की हूँ? हाँ, अब तुझे भोर में, दोपहर में, सांझ में और रात में कौन सा चेहरा तसल्ली देगा मोहन? अरे तू तो मिट्टी का शेर निकला, लानत है तुझ पर। अरे मैं तेरे ऊपर थूकती हूँ, जा जा तू भी जा। मुसाफिर मोहन आम आदमी ही था। लकीरों, पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं और बंधनों में बंधकर रहने वाले रात के अंधेरे में जिस्म तो टटोल सकते हैं, परंतु दिन के उजाले में आंख तक नहीं मिला सकते हम नाचने जाने वालों से। उसके बाद की कहानी तुम्हें मालूम है मुसाफिर। तुमने अपना यह हाथ देश की इज्जत बचाने में गंवाया है। जब तुम मेरी इज्जत बचाने आगे आए तो मैं समझ गई कि तुम ही मेरी रक्षा कर सकोगे। तुमने मेरे लाल सिबाक से खरीद कर मेरे सिर पर चुनरी नहीं डाली, बल्कि मेरी मांग में सिंदूर भर दिया है।
1: कांता, पहले मैं तुमसे मोहब्बत करता था, परंतु तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हारी पूजा करने को जी चाह रहा है।
0: पूजा की योगी तो तुम हो मुसाफिर।
1: अच्छा देखो तो, रात बीतने वाली है और बरसात भी रुक गई है।
0: हाँ, मेरे अंदर घुमरने वाला तूफान भी थम गया है।
1: अच्छा देखा कांता, अभी तांगा गुजरा और तुम्हें डर नहीं लगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अंधेरा जो छट गया है, भोर का सूरज निकल रहा है, अब मैं चैन से सोऊंगी।

0: भोर का सूरज। अभी आप सुन रहे थे ये नाटक। लेखक थे अजीमुद्दीन। भाग लेने वाले कलाकार थे बद्रुन्निसा, अशोक बुलानी, मकबूल हसन, तेज सिद्धू, चित्रेंद्र स्वरूप राजन, हिना शंभरकर, राजीव रजनीश, विकार हुसैन, आगा रिजवान हैदर और आनंद कमाविसदार। प्रस्तुति सहयोग अंजय मिश्रा और राकेश ढोंडियाल का, और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: अभी आप सुन रहे थे अजीमुद्दीन का लिखा नाटक भोर का सूरज, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे चितेंद्र स्वरूप राजन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं हाफिज अहमद खान का ख्याल गायन। आइए सुनते हैं पहला राग सिंधूरा।

da da da da ni da pa ma pa da da da da da re ni da pa ma pa ga re ma ma

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं हाफिज़ अहमद ख़ान का ख्याल गायन, जिसमें अभी आपने सुना राग सिंधूरा। आइए अब आपको सुनवाते हैं राग तिलक कामोद।

0: राग तिलक कामोद पर अभी आप सुन रहे थे हाफिज़ अहमद ख़ान का ख़याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रचनी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी।

श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।